ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के बाद आप जुड़ेंगे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से।

0: भेजने वाले हैं। अब सुनेंगे समाचार।
1: बड़ी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
2: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत मातु

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

वंदन वार सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, ऐसे जियो जैसे कल ही मरना हो और ऐसे सीखो जैसे हमेशा जीना हो। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

जब आराध्य हों भोले भंडारी तो कैसे ना उन पर हम जाएं वारी। यही तो है प्रभु का संदेश कि सरलता से बड़ा नहीं है कोई भेष।

विद्यार्थी पर सुनिए आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस, आज सुनिए 244वां भाग। छह 6:45 से संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला सुनिएगा शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। 9वीं कड़ी कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। भूले बिस्र गीत कार्यक्रम का समय सुबह 7 का है और 7:30 से हम है राही प्यार के। 8 से सुनिएगा समाचार प्रभात। 8:15 से त्रिवेणी के अंतर्गत त्रिवेणी सुन सकते हैं कार्यक्रम आप, और 8:30 से चित्रलोक। 9:30 से कार्यक्रम आज के फनकार, आज केंद्रित है फिल्मकार गुरुदत्त पर। 10 से सुनिए आज के मेहमान कार्यक्रम का पुनः प्रसारण, वरिष्ठ साहित्यकार समीक्षक लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की दूसरी कड़ी। रंग तरंग कार्यक्रम सुबह 11 से और 12 सुनिए हिंदी में समाचार। दोपहर 12:05 से यादों की महफिल, 1 का समय है कार्यक्रम सुरीला सफर का। 2 से त्रिवेणी और 2:15 से दोपहर समाचार।

दोपहर 2:30 से सदाबहार नगमे और 3 से सखी सहेली, 4 आपकी फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी हेलो फरमाइश कार्यक्रम के साथ, और 5 छाया गीत का पुनः प्रसारण। शाम 5:30 से तराने नए पुराने, 6 से हिंदी में समाचार और 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुन सकते हैं झरोखा के अंतर्गत शाम 6:30 से, 6:35 से संध्या रंजन, 6:45 से कार्यक्रम संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुनिएगा नवी कड़ी, कलाकार है बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। शाम 7 जय माला 7:45 से इनसे मिलिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज वर्षा सोलंकी से यूनुस खान की बातचीत। कचरे का मालिक ये हास्य नाटिका सुनिएगा हवा महल कार्यक्रम में रात 8 से, लेखन विनायक शंकर विनय का, निर्देशन रणजीत अहलूवालिया का, और रात 8:15 से चित्रलोक। से समाचार संध्या, 9 से कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेता संजीव कुमार पर और 10 बजे से छाया गीत। 10:30 से ढलती जाए रात और 11 बजे से सुन सकते हैं रंग तरंग का पुनः प्रसारण।

एक बार फिर बता दें, सुबह और शाम 6:45 पर सुन सकते हैं संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आज सुनेगा 9वीं कड़ी। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। झरोखा के अंतर्गत आप सुन रहे थे आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम रामचरितमानस में आज सुनिए 44वां भाग।

श्री राम, सीता और लक्ष्मण अत्रि ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। ऋषि ने भक्तिपूर्वक श्री राम की वंदना करके उनसे अपने चरणों में अटूट अनुराग देने की प्रार्थना की। शीलवती तथा विनम्र सीता जी ने ऋषि पत्नी अनुसुईया के चरणों में सिर नवाकर उनका आशीर्वाद मांगा। ऋषि पत्नी सीता जी की विनम्रता देख अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र तथा आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। अनुसुईया जी ने मधुर और कोमल वाणी में सीता जी के स्त्री धर्म पालन का बखान किया।

0: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। पंडित जी, फिल्मी दुनिया में बांसुरी की तान एक अलग पहचान बनाती है और आपने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाई है। हम ये जानना चाहते हैं, जो बांसुरी की दुनिया में आना चाहते हैं और फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, उनके लिए बताइए कि अमूमन कितने स्वर सप्तक की बांसुरी उनके पास होनी चाहिए और किस तरह की तैयारी होनी चाहिए।
2: कोई बांसुरी वादक अगर फिल्मों में जाना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले तो नोटेशन लिखना आना चाहिए
1: जी।
2: और मूर्छना भेद से भी आगे जाके सुपर मूर्छना मैं कहूंगा जानना चाहिए कि अगर सारे

0: पापा, तो पंचम से उसका क्या नोटेशन बनेगा, निषाद से क्या बनेगा, दैवत से क्या बनेगा, ये एकदम तैयारी पूरी होनी चाहिए। क्यों पता नहीं कौन सा पीस कैसे आ जाए सामने। ये सितार सरोद तो है नहीं कि आप बोल देंगे कि नहीं ये यहाँ से नहीं निकलता, आपको तो हाँ ही बोलना पड़ेगा। ये पहली तैयारी। और दूसरी तैयारी ये होनी चाहिए कि बड़े बांसुरी जितने हैं, सी शार्प काली एक जो है
1: जी,
0: वो बड़ी बांसुरी से लेके मिडिल बांसुरी जो 1.5 फीट तक की मान लीजिए आप
1: जी जी,
0: और उससे फिर छोटी मुरली जो एक फाउंटेन पेन की तरह है।
1: अच्छा।
0: इन सब में सोलो बजाना आना चाहिए।
1: क्या बात है।
0: मतलब ऐसी नहीं कि अचानक से मैंने छोटी फ्लूट ली तो उसमें हाथ नहीं चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं कदरी गोपाल नाथ जैसे महान सैक्सोफोन प्लेयर के साथ बजाता था तो मैं छोटी बांसुरी लेके पूरा प्रोग्राम बजा देता था।
1: जी जी जी,
0: वो फिल्म लाइन की देन है मुझे कि मैं अभी तक अटका नहीं कहीं।
1: अगर उसमें कुछ याद है आपको, कुछ ऐसे टुकड़े आप बजा के सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को?
0: हाँ, मैं एक तमिल फिल्म में बजा रहा था दलपति। दलपति में हीरो जो थे वो रजनीकांत थे
1: जी,
0: और म्यूजिक डायरेक्टर थे इलैयाराजा। तो एक पीस उन्होंने दिया जो कहीं से भी नहीं आ रहा था, और उसका जो फ्लूट प्लेयर मेरे साथ था उसका नाम था नेपोलियन
1: जी।
0: हम दोनों बांसुरी में थे
1: जी।
0: तब डबिंग का जमाना तो इतना नहीं था कि दो ट्रैक सिर्फ बांसुरी को दे दिया जाए, तो हम दोनों को बांसुरी में बुलाया गया। तो वो दलपति का जो पीस है मैं
1: जी,
0: वो पुरिया धनाश्री में था
1: जी, सुनाए प्लीज।
0: साने दाबा मागरे सा, ये हो गया पुरिया धनाश्री। और इसका नोटेशन मेरा क्या बना, मामा दानी सारे गामा मागा कोमल रे सा शुद्धनी शुद्ध दा तीव्र मध्यम शुद्ध मध्यम।
1: गजब।
0: ये है, यहां से मैंने पीस बजाया। पीस ऐसे था,

0: वाह,
1: नीचे के गा तक जाता है।
0: गजब।
1: तो ऐसा सा ढूंढ के निकाला मैंने। उसके पहले मैंने मध्यम से कभी पूरा धनाश्री बजाया नहीं था। अजीब मूर्छना है ये।
0: जी जी, तो इन सब की तैयारी, इन सब पे कमांड होना बहुत जरूरी है अगर फिल्मी दुनिया में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं हमारे कलाकार बांसुरी की दुनिया में। जो
1: इन सब की तैयारी किए बिना आप मत करिए।
0: पंडित जी, आपके पास कितनी तरह की बांसुरी है, कितने प्रकार की?
1: मेरे पास चाइनीज फ्लूट है और पैम फ्लूट है
0: जी,
1: जो ऐसे बजाते हैं जैसे कि बांसुरी को ऐसे पकड़ के। ये सुर जो है, ये कल्पेश मेरा जो शिष्य अभी आपके साथ स्टूडियो में बैठा है, ये खुद बहुत अच्छा फ्लूट मेकर भी है। इसने सोचा है कि पैन फ्लूट बनाऊं।
0: क्या बात है, वाह।
1: अगर ये यहाँ पे सा है तो ये इसमें रे बजेगा।
0: वाह,
1: रे, यहाँ से रे आ रहा है। तो नॉर्मली वहां से उस सुर को पकड़ के उसको पैन फ्लूट बनाना पड़ेगा
0: जी। तो कितनी बारीक जानकारियां आप दे रहे हैं जो कहीं उपलब्ध नहीं होंगी।
1: ये तो मेरी कम से कम नहीं तो भी 55 साल की तपस्या है।
0: जी जी,
1: 55-56 साल की तपस्या है।
0: तो अगर लोग फिल्मों में जाना चाहते हैं तो पहले इतनी तैयारी करें, रियाज करें पूरी तैयारी के साथ, तब जाएं। और यहाँ पर अब हमें याद आ रहा है वो गाना 1942 लव स्टोरी फिल्म का, कुछ ना कहो। इसमें आपकी बांसुरी है, पंचम दास से जुड़ी हुई यादों का खजाना है आपके पास। इस समय क्या बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: कहते हैं ना, जब कोई अपना चला जाता है छुड़ा के दामन, दिल के अरमानों पे एक तीर सी चल जाती है।
0: जी,
1: मैं यही कहूंगा कि पंचम दास ने इतना प्यार दिया मुझे, मेरे घर आते थे बोरीवली, तब मैं बोरीवली रहता था।
0: अच्छा।
1: फिर मैं मलाड चला गया, मगर अंत में कुछ ऐसा हुआ, 87-88 के बाद थोड़ा खराब दौर उनके ऊपर आ गया। महीने में एक आध दिन रिकॉर्डिंग होने लगा। एक व्यक्ति ऐसा था
0: जी,
1: विद्यु विनोद चोपड़ा ने कहा मैं तो पंचम को ही लूंगा।
0: जी,
1: 1942 ए लव स्टोरी।
0: जी जी,
1: तो गाना रिकॉर्ड हो रहा था, प्यार हुआ चुपके से, और मैं हूँ रियाजी आदमी, उधर पंचम दा और ये दोनों रिहर्सल कर रहे थे कविता कृष्णमूर्ति, और मैं अपना जैसे कल्पेश मेरे से जितना दूरी में बैठा है वहां बैठ के मैं अपना केदार राग रियाज कर रहा था। तो पंचम दा हारमोनियम रोके हाँ करके,

0: और बोले कमाल करते है तू, बंगला में बोले, हम लोग यहाँ झक मार रहे हैं क्या, हम इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं और तू अपना दूसरा
1: राग केदार बजा रहे
0: राग
1: हो।
0: केदार बजा रहा है, डिस्टर्ब नहीं होता है।
1: हम्म,
0: मैं एकदम डर गया, मैंने कहा दादा मुझे माफ करिए, एक्चुअली केदार इसमें बहुत मुश्किल है, तो उसको मैं जरा टेक्निकली देख रहा था, तो टेक्निकली मत देख, एक काम कर, वो जो तू डिस्टर्ब किया वो गाने को भी जरा वही
1: सुन
0: दे
1: लेता हूँ।
0: दे, तो अगर आप प्यार हुआ मैं
1: जी
0: एक शेर
1: जी
0: सुनाऊँ
1: जी
0: आपको,
1: बिल्कुल।

0: वाह, बहुत सुंदर मंत्रमुग्ध हो गए हम तो। और बांसुरी जब बजा रहे थे पंडित जी, तो हमें ये लग रहा था कि सांस की कैसे साधना करते हैं, सांस को कैसे होल्ड करते हैं, साधते कैसे।
1: अच्छा प्रश्न किया, मैं आपको बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये याद दिलाया मुझे। उनको प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल
1: जी, खास करके अनुलोम विलोम, उज्जयी, भस्त्रिका। जब आप उज्जयी करेंगे, आप अनूप जलोटा जी को देखिए, अनूप भैया को, वो करते हैं। सबसे ब्रेथलेस तो हमारे भीमसेन जोशी जी थे।
0: जी जी जी।
1: एक बार उन्होंने ऐसी तान मारी कि विलंबित का ठेका जो 64 का लय होता है, देन देन, ये लय में पहले मात्रे से आखिरी मात्रे तक गमक का तान करते गए, सांस छूटा ही नहीं। मुझे राजन मिश्रा ने बताया ये बात, पंडित राजन मिश्रा जी ने ये बात बताई, बोले कि अब बस कर भीमसेन, मेरी सांस चली जाएगी। किसने कहा? काशी नरेश ने कहा, काशी के जो राजा थे।
0: जी जी जी, सांस की साधना भी जरूरी है। तभी तो हम जब आपको देख रहे हैं, मतलब अपने श्रोताओं को बता दें कि पंडित जी जब जब बांसुरी बजा रहे थे तो हमने न जाने कितनी सांसें उस बीच ली होंगी, लेकिन आपकी सांस वहीं पर बांसुरी पे ही टिकी हुई
1: जी,
0: है।
1: जी जी जी।
0: तो ये अद्भुत बात है। और उसी फिल्म में 1942 लव स्टोरी में एक गाना और है, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो।
1: जी, इस गाने पे आ रहा हूं। विधु विनोद चोपड़ा ने उनको लिया
0: जी,
1: और विधु विनोद चोपड़ा इस गाने का रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो पंचम दा बोले कि रोंगीला रोंगीला रोंगीला रे रोंगीला, बंगाली गाना है
0: जी।
1: इसी को तू इंट्रो में बजा। और मुझे आके क्या बोले मालूम है, मेरा गाल में थोड़ा प्यार किया और बोले कि ये गाना जितना हिट होगा ना, उतना तेरा पीस भी हिट हो जाएगा। तो मैं ये गाना कल्पेश के साथ मिलके, वही अपना दादरा
0: जरूर सुनाए।

0: वाह, अद्भुत। अब इसके बाद सचमुच कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। अब कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, तो अब इस कड़ी को समेटते हैं और कल कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देवदर्शन ओवरसीज।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आर पार फिल्म का गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत। आज है जन्मदिन अभिनेता निर्माता निर्देशक गुरुदत्त का, उन्हीं पर केंद्रित है आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम।

0: हेमंत कुमार की आवाज में जाल फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

हेमंत कुमार की आवाज में प्यासा फिल्म का ये गीत आपने सुना। साहिल ध्यानवी ने इसे लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, बस अभी हाजिर होते हैं।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आज इस कार्यक्रम में अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त की फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: चलती ये बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का सा।
1: मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब यह प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
4: जी।
3: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: गीतादत्त की आवाज में बाजी फिल्म का गीत आपने सुना, साहिल ध्यानवी के बोल, सचिन देव बर्मन की धुन।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीज़ों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत, शकील बदायूनी की रचना, रवि का संगीत, फिल्म 14वीं का चांद।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में आंधी फिल्म का ये गीत आपने सुना, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम हम है राही प्यार के, आप सुन रहे विविध भारती पर। और आज के इस कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं अभिनेता संजीव कुमार पर केंद्रित गीत, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन।
1: ठंडे ठंडे पानी से

0: लगता है कोई आया।
1: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

0: पति पत्नी और वो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। महेंद्र कपूर, आशा भोसले और सुषमा श्रेष्ठा की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, रविंद्र जैन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर और ये कार्यक्रम है हम है राही प्यार के।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीज़ों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: जा गले ए लग जा गले दुनिया जले छम छम छम छम छ छम छ छम ए गण हम तुम पे दिल निसार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है ए गण तुम काहे को इनकार करता है।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में खिलौना फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम हम है राही प्यार के अगले गीत एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: सीता और गीता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं अभिनेता संजीव कुमार पर केंद्रित गीत, क्योंकि आज होता है उनका जन्मदिन। और कार्यक्रम का अगला गीत आपको इस संदेश के बाद सुनवाते हैं।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
3: जी।
2: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

अपने रंग हजार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, अनजान के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं, गुलजार के बोल मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें। मौसम फिल्म से सुनिए ये गीत।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया।

0: दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, AI, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: धन्यवाद।

0: मुनीष, देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोकसत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है गांव और खेत पर। गांव और खेत एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर गांव शरीर है तो खेत उसकी आत्मा है। अगर गांव एक गीत है तो खेत उसकी मधुर धुन है। दोनों का संबंध उतना ही गहरा है जितना धरती और आकाश का, नदी और किनारों का, या बीज और वृक्ष का। गांव की पहचान उसके खेतों से होती है और खेतों की जीवंतता गांव के खेतों से। सुबह की पहली किरण जब खेतों पर उतरती है तो ऐसा लगता है मानो सूर्य स्वयं धरती के माथे पर स्वर्णिम तिलक लगा रहे हों और दोनों हाथों से अपना सारा चमचमाता सोना धरती पर लुटा रहे हों। ओस की बूंदें पत्तियों पर मोतियों की तरह चमकती हैं और हल्की हल्की चलती ठंडी हवा फसलों के साथ मिलकर एक मधुर राग छेड़ देती है। दूर तक फैली हरियाली आंखों को ही नहीं मन को भी ठंडक भरा सुकून दे जाती है।

हैं खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी सब।

खेत केवल अन्न उगाने की भूमि भर नहीं होते, वो तो किसान के सपनों की पाठशाला भी होते हैं। हर बीज में एक आशा छिपी होती है, हर अंकुर में एक भविष्य और हर फसल में अनगिनत परिश्रम की कहानियां आकार ले रही होती हैं। किसान जब मिट्टी में बीज डालता है, उस समय वो केवल खेती नहीं करता बल्कि विश्वास बोता है कि समय आने पर ये धरती उसकी मेहनत को फल में बदल देगी। गांव की पगडंडियां खेतों तक पहुंचती हैं और खेतों की मेड़ें जीवन के संघर्ष और सफलता की कथा कहती हैं। बैलों की धीमी चाल, हल्की रेखाएं, फसलों की लहराती बालियां और किसानों के माथे पर चमकता पसीना, ये सभी मिलकर परिश्रम का एक ऐसा महाकाव्य रचते हैं जिसे पढ़ने के लिए किसी पुस्तक की जरूरत नहीं होती।

ऋतुओं का सबसे सुंदर रूप गांव और खेतों में ही दिखाई देता है। बसंत आता है तो सरसों के पीले फूल धरती को सुनहरा परिधान पहना देते हैं। वर्षा की बूंदें खेतों पर पड़कर जीवन का संगीत रचती हैं। शरद ऋतु में पकती फसलें ऐसे झूमती हैं मानो प्रकृति अपनी सफलता का उत्सव मना रही हो। हर मौसम अपने साथ एक नया रंग, नया भाव और नई कहानी लेकर आता है। गांव और खेत हमें सिखाते हैं कि जीवन की वास्तविकता समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि श्रम, संतोष और प्रकृति के प्रति सम्मान में समाहित है। ये हमें बताते हैं कि धैर्य, परिश्रम और विश्वास से ही सपने साकार होते हैं।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बांट।
3: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बांट नहीं है,
2: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
3: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
4: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बांट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
5: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
6: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली। प्रायोजक हैं देवदर्शन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

हैप्पी एंडिंग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। पापॉन स्मिता जैन और विधि मेहता की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, सचिन जिगर का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और हमारा मन हमेशा अपने मन की करना चाहता है, खासतौर से जब बात हो स्वास्थ्य की, तो सभी का मन होता है कि कोई भी परेशानी अगर होती है तो अपने आप ही सुलझ जाए और ना तो इसका कोई इलाज करवाना पड़े, ना कोई परहेज करना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े। जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं उसी तरह से जीते रहें और अपने आप साइड में सब ठीक हो जाए और पहले की तरह सब चलता रहे और हमें अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता रहे। तो क्या आपके मन का भी यही विचार है?

0: अरमान मलिक और अमाल मलिक की आवाजों में कपूर एंड सन्स फिल्म का गीत आपने सुना। अभिरुचि चंद ने इसे लिखा और अमाल मलिक का संगीत।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

अमित त्रिवेदी की आवाज में अंधाधुन फिल्म का गीत आपने सुना, जयदेव साहनी के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। और नैना का तो कोई कसूर नहीं है भाई, क्योंकि जो भी चीजें हम देखते हैं हमारा मन तो उसी ओर जाने के लिए करता है, लेकिन बचपन की बात और है और लंबे समय तक अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना एक अलग बात है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अनुशासन भी बनाए रखना पड़ता है, जैसे सही समय पर उचित भोजन करना, व्यायाम करना या आराम करना, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल नियम पालन करना ही पड़ता है। और एक ख़ास उम्र तक पहुंचने के बाद तो ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, अगर हम इसका पालन ना करें तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम में तो अभी वक्त है एक छोटे सा अंतराल का, अंतराल के बाद बस अभी लौटते हैं।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

अल्तमश फरीदी और साथियों की आवाज़ में मुदस्सर अजीज के बोल आप सुन रहे थे। सुहेल सेन का संगीत फिल्म हैप्पी भाग जाएगी और हम भी भागते हैं जब बारी आती है परहेज की, क्योंकि एक बार परहेज की नौबत आ जाती है तो शुरू होती है असली कवायद और इलाज भी जब शुरू हो आता है तो ऐसा लगता है कि जो जो नहीं खाना है, जो जो मना है, मन तो उसी ओर भागता है। तरह तरह के बहाने, तमाशे और ढेर सारी बातें बनाना तो हमें मंजूर होता है, लेकिन मजाल है कि परहेज़ के लिए हम मान जाएं। हालांकि जो लोग उन्हें मनाते होते हैं कि परहेज़ कर लेना चाहिए, इलाज करना चाहिए, इस तरह से जो परिवार के बाकी सदस्य मनाते रहते हैं, उन पर भी अगर ये बात आ जाए और ऐसा मौका आ जाए कि उन्हें परहेज़ करना है तो बिल्कुल वही के वही बन जाते हैं जिन्हें समझा रहे हैं।

मनोज मुंतशिर के बोल आप सुन रहे थे। इस शान की आवाज में सनम रे फिल्म का ये गीत जीत गांगुली ने संगीत से सजाया। और कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य और परहेज की, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई बार तो परहेज करना ही पड़ता है, मन को बनाना पड़ता है। और कई बार ऐसी व्याधियां भी हमें हो जाती हैं जिनके लिए एक लंबा इलाज और परहेज आवश्यक है। और कुछ ऐसी व्याधियां भी हैं जो हमें जीवन भर इलाज और परहेज का हमें पालन करना पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग सही मार्गदर्शन से शुरुआत में इलाज और परहेज करते करते एक दिन अचानक बगावत पर आ जाते हैं और उन्हें फिर संभालना बड़ा मुश्किल होता है। क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है?

0: राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से आप सुन रहे थे चित्रलोक। ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है, FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। कहा, पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आवागमन के माध्यम के साथ ही राजस्थान के लिए विकास का आधार बनेगा। राजस्थान ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बना और प्रदेश में मॉनसून के अगले 2-3 दिन सक्रिय रहने के आसार। आज कोटा और भरतपुर संभाग में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: सीईओ फोरम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक रोडमैप व्यापार कार्यक्रम को भी संबोधित किया, जिसमें दोनों पक्षों के 200 से अधिक सीईओ उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोटा क्षेत्र के लिए अनेक नई सड़क परियोजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से मुकंदरा वन्यजीव अभयारण्य को बाईपास करते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक

0: संपर्क मार्ग बनाया जाएगा। इसके अलावा कोटा को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 21 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड संपर्क मार्ग भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोटा से इटावा तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का नाम अब अटल एक्सप्रेसवे होगा। कोटा में आयोजित कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का माध्यम नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास का आधार बनेगा।
1: ये हाईवे केवल जाने आने के लिए नहीं है, ये जहां जहां से जाता है वहां के पिछड़े हुए जनता को विकास का मार्ग दिखाने वाला हाईवे है। इस हाईवे के कारण इंडस्ट्री आएगी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, लॉजिस्टिक पार्क आएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आएगी, मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, किसानों के माल फसल के आधार पर आधारित उद्योग आएंगे और यहां का चौफेर विकास होगा। यही हाईवे बनाने के पीछे हमारे सरकार की इच्छा है।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें राष्ट्रीय एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड समारोह में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और स्वस्थ फसलों का उत्पादन संभव होगा। राज्यपाल ने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला है और बड़ी आबादी की आजीविका इससे जुड़ी है। उन्होंने कम पानी में अधिक उत्पादन वाली फसलों तथा आधुनिक तकनीक आधारित कृषि को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य की बड़ी उपलब्धि है। कल जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में राज्य सरकार और ISA के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत राज्य में सौर ऊर्जा के विस्तार, प्रसारण और वितरण के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी। ऊर्जा क्षेत्र में AI और डिजिटल तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे बिजली की मांग का बेहतर आकलन और उपभोक्ताओं को अधिक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और अन्य ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। जयपुर शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए नई पहल की गई है। इसके लिए झालाना में 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाले आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसका लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये स्टेशन शहर में कचरा संग्रहण, प्रबंधन और परिवहन को तेज, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाएगा।
2: वो टेम्पो यहाँ कर कचरे खाली करेंगे और उसके बाद यहाँ से बड़े वाहन में लगकर वो प्रोसेसिंग प्लांट तक जाएगा, जिसमें से हमारे यहाँ दहलवास प्लांट में जिस प्रकार हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, कुछ जगह गैस उत्पन्न करने का विचार है और कुछ जगह अब एक नई तकनीकी हो रही है कि उस कचरे को भी रिसाइकल करे, किसी न किसी प्रकार का कोई उपयोगी सामान निर्मित किया जाए।
0: कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने सवाईमाधोपुर में पांचना बांध और नहरी जल प्रवाह को लेकर किसानों और आमजन से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी किसान शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें तथा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहें। डॉ. मीणा ने सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक और भड़काऊ संदेशों से सावधान रहने तथा केवल प्रशासन की अधिकृत सूचनाओं पर विश्वास करने का आग्रह किया है।
3: भी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, हिंसा किसी समस्या का समाधान कतई नहीं है, इसलिए हिंसा का सहारा नहीं लें और सोशल मीडिया पर जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं उन पर गौर करने की जरूरत नहीं है। तो विशेषकर कमांड एरिया के किसानों को मैं कहना चाहूंगा, आपके लिए मैं सदा आपके साथ खड़ा रहा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। सबके लिए, कैचमेंट एरिया के लिए भी मैं हूं, सभी किसानों को कोई भेद नहीं करना चाहता।
0: मॉनसून के प्रदेश में अगले

0: दो तीन दिन सक्रिय रहने के आसार हैं। 11 जुलाई से एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। आज कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है, कहीं कहीं तेज बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने बारां, भरतपुर, डीग, धौलपुर और झालावाड़ में बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और फलौदी को छोड़कर सभी जिलों में बरसात का येलो अलर्ट है। इस बीच पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 22.9 मिलीमीटर बरसात उदयपुर के डबोक में रिकॉर्ड की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना लिस्ट जारी कर दी है। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट से अपनी पर्ची डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भाग लिया। कहा, पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आवागमन के साथ ही राजस्थान के लिए विकास का आधार बनेगा। राजस्थान ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बना। और प्रदेश में मॉनसून के अगले 2-3 दिन सक्रिय रहने के आसार। आज कोटा और भरतपुर संभाग में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रोग्राम FM रेडियो पिंक सिटी।

0: गुरुवार होता है सबसे निराला, जब खुलता है इंफोटेनमेंट का पिटारा और होती है एक खास मुलाकात खुद जयपुर की अपने जयपुर के साथ। सारे तेवर और सारे फ्लेवर, इट्स नाउ देन एंड फॉरएवर। ट्यून करिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: 9:12 और पूरे 2-3-4 सेकंड, 9 जुलाई गुरुवार की मुस्कुराती हुई सुबह, चल रही है ठंडी बयार और ऐसे में प्यार भरा नमस्कार। ट्यून आपने किया 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी, जहां साथ में हूं मैं आपकी बोली तू आज प्रिटी। गुड मॉर्निंग्स मेरे जयपुर, कहीं हाल चाल सब चोखो भाई। 11 से 12 चढ़े लो अपनी बोली रो रंग और 10 से 11 मेलोडीज के संग झूमेंगे हम। तो बस जी पूरे 12 बजे तक साथ रहेंगे आप और हम, करेंगे गल्ला शल्ला। तो साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, क्योंकि बहुत कुछ खास है और बहुत सारी बात है जो करनी भी है।

0: कुछ कहता है जयपुर, क्या कहता है जयपुर।
1: मैं जयगढ़ का किला हूँ, जयपुर के सबसे ऊंचे चील का टीला, पहाड़ पर सीना ताने खड़ी चट्टान पर रखा जीत का वो कदम हूँ जो अपनी आन बान और शान से एक इंच भी नहीं डिगा। मेरे भीतर दबे रहस्यों को जान पाना आज भी रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं शाही खजाना छुपा है मुझ में, मैं कहता हूँ हाँ खजाना तो है, लेकिन सिर्फ साहस और शौर्य का। मेरी तामीर से भी पहले तोपे ढला करती थी मुझ में, इसीलिए शाही शान और शौकत नहीं, एक सैनिक की सादगी है मुझ में। मेरे पानी के टांके की इंजीनियरिंग आज भी अच्छे अच्छों को हैरान कर देती है और मेरी खुफिया सुरंगों की थाह पाना आज भी आसान नहीं। जामिति पर बने मेरे मोखे से तीन तरफ गोले दागे जा सकते हैं। दुश्मन के दांत खट्टे करने का हुनर है मुझ में, जीत के लिए बना हूं मैं। मेरा नाम विजय की पक्की मोहर है, आमेर महल का रखवाला हूं मैं। दुश्मन के लिए महाकाल, बारूद की गंध के साथ पला हूं मैं। आपका अपना जयगढ़ किला हूं मैं, जयगढ़ किला हूं।
0: 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: तो खात है, कुछ तो बात है।
1: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। 9:18 और पूरे 51:53 सो वेल 9 जुलाई गुरुवार की सुबह। और बात करें अगर आज के खास दिन की, सो आज का दिन इम्पॉर्टेंट है बेहद हिस्ट्री में। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज स्पोर्ट्स से जुड़ी एक बेहद खास जो इवेंट है उसकी शुरुआत हुई थी। जी हाँ, पहली विंबलडन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी आज ही के दिन, यानी कि 9 जुलाई को, और साल था 1877। ये शुरुआत हुई थी लंदन में, और जो शुरुआत हुई थी इट वॉज ओनली जेंटलमैन सिंगल्स कॉम्पिटिशन, और इसमें 22 शौकिया खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। पर्पस जो था, ये एक पर्टिकुलर कोई क्लब था जिसने ये ऑर्गेनाइज किया था, और पर्पस ये था कि उस क्लब का जो लॉन था उसके लिए रोलर खरीदना था। और इसलिए ये जो फर्स्ट विंबलडन चैंपियनशिप है ये आयोजित हुई इन 1877 9 जुलाई को। अब इसके जो पहले विजेता बने थे वो थे स्पेंसर गोर, और टोटल मैचेस हुए थे 21। और आप सोच सकते हैं कि कितने दर्शक, कितने स्पेक्टेटर्स पहुंचे होंगे। वेल, उस वक्त जो पहला विंबलडन चैंपियनशिप हुई थी उसे देखने के लिए जो पहुंचे थे वो थे 200, यानी कि 200 स्पेक्टेटर्स। और गेम्स की बात कर रहे हैं तो देखिए, एक बेहद अच्छी जो शुरुआत है, एक खास प्रकृति से जुड़ी हुई शुरुआत, वो भी गेम्स के साथ हो रही है। वो ये क्योंकि 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो होंगे। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे इसमें जो भारतीय खिलाड़ी और जो भी अधिकारी पार्ट लेंगे, जो भी वहाँ जाएंगे, ये सारे लोग जूट और विस्कोस, ये दो जो मटेरियल हैं, नेचुरल जो मटेरियल्स हैं, इनसे मिले हुए आधिकारिक ड्रेस पहनेंगे। तो इनकी जो ऑफिशियल ड्रेसेस होंगी वो जूट से बनी हुई होंगी, और ये जो ड्रेस है ये 100% बायोडिग्रेडेबल ड्रेसेस होंगी। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो ड्रेसेस पहनी जाएंगी, जो ऑफिशियल्स जाएंगे उनके द्वारा भी, और जो हमारे एथलीट, जो स्पोर्ट्स पर्सन जाएंगे उनके द्वारा भी, वो 100% बायोडिग्रेडेबल जूट वाली ड्रेसेस होंगी। और ये पहला इस तरह का इंटरनेशनल मल्टीप्लेयर्स वाला गेम होगा जिसमें किसी भी देश का जो एक पूरा जो टीम जाएगी वो जूट के परिधान पहनेंगे। हमारी जो टीम जाएगा, जो भारतीय दल होगा, उसमें 124 सदस्य होंगे। और ये जो परिधान, ये जो ड्रेसेस हैं, ये राष्ट्रीय जूट बोर्ड, ग्लॉस्टर जूट मिल्स और NIFT ने मिलकर रेडी किया है। और मुझे लगता है कि इस तरह की पहल आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, और हम सबको भी रेडी होना होगा सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ के लिए, बिकॉज वो जो हमारी बहुत एक आदतें हो गई है ना कि हम कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हो गए। प्रकृति ने हम सबके लिए पर्याप्त दिया है, लेकिन वी आर कंज्यूमिंग मोर, हमारी जरूरत से ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं अपने शौक के लिए। और इसीलिए शायद कारण है कि कहीं पर बर्फ की कमी है, कहीं सूखा है। अगर हम बात करें, यूरोप इस वक्त हीट वेव से जूझ रहा है, कहीं भारी बारिश और भूस्खलन हो रहे हैं, तो ये जो इम्बेलेंस चल रहा है नेचर का, इसके लिए हमारे को सभी को संभलना होगा, क्योंकि दीज आर द अलार्मिंग साइंस। सो रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, आगे बताऊंगी आज के खास दिन से जुड़ी खास हस्तियों की बात। तो साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। गुड मॉर्निंग जयपुर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: गुलाबी शहर
2: शाम गुलाबी सहर गुलाबी पहर गुलाबी है गुलाबी ये शहर
1: गुलाबी चैनल
3: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया
1: गुलाबी हम और आप
4: .3 FM, Radio Pink City.
1: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: आप हैं आरजे प्रीति के साथ, प्रीति के साथ ओनली ऑन 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: 9:33 और पूरे 22:23 सेकेंड रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। और आज है 9 जुलाई, और 9 जुलाई यानी 9th of July बात करें अगर बॉलीवुड की तो इसके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज बर्थ एनिवर्सरी है हरिहर जेठालाल जरीवाला। अब आप सब कहेंगे कि भाई ये कौन है, हमने तो बॉलीवुड में ये नाम ही नहीं सुना है। तो चलिए, हम ये तो था इनका ओरिजिनल नेम, लेकिन

आपको इनका फिल्मी नाम बताते हैं और आप सब कहेंगे कि हाँ के कमाल के कलाकार थे। जी हाँ, आज बर्थ एनिवर्सरी है संजीव कुमार साहब की, जिनका ओरिजिनल नेम था हरिहर जेठालाल जरीवाला। भारतीय सिनेमा के सबसे महान और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक संजीव कुमार साहब 9 जुलाई 1938 को गुजरात में जन्मे। अपनी अद्भुत जो आपकी एबिलिटी थी एक्टिंग की, इसके अलावा आपकी गंभीर सी आवाज़, आपकी वो आँखें जो बिल्कुल भावपूर्ण और मिसपर्शी सी, इन सभी से आपने अपनी बेहतरीन फिल्मों के जरिए एक अमिट छाप छोड़ी थी। पहली फिल्म जो थी संजीव कुमार साहब की, वो थी 1960 में आई हम हिंदुस्तानी, और बतौर लीड एक्टर पहली फिल्म थी 1965 में आई निशान। लेकिन पहली बड़ी सफलता यानी कि जो पॉपुलैरिटी मिली, वो मिली फिल्म खिलौना से, जो रिलीज हुई थी 1970। बात करें अगर संजीव कुमार साहब की, तो अपनी 22 साल की उम्र में, जी हाँ सिर्फ महज 22 साल की उम्र में 60 साल के बूढ़े का किरदार भी आपने निभाया था। वहीं कल्ट क्लासिक फिल्म शोले, इसमें जो ठाकुर का रोल है, आपके अभिनय का कोई सानी नहीं था। नया दिन नई रात, इस फिल्म में आपने 9 अलग अलग तरह के रोल निभाए थे। जी हाँ, और वो अपने आप में बेमिसाल जो अदाकारी है उसका एक एग्जाम्पल है। आपने 2 नेशनल अवार्ड्स भी जीते अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए, 1971 में आई फिल्म दस्तक एंड 1973 में फिल्म कोशिश के लिए। खास फिल्मों की बात करूं, इनके अलावा नेशनल अवार्ड्स के अलावा भी कई अंतर्राष्ट्रीय और फिल्म फेयर अवार्ड से भी आप नवाजे गए। अपने पूरे करियर में आपने लगभग 170 से ज़्यादा फिल्मों में शानदार काम किया। खास फिल्में की बात करें तो उसमें है अंगूर, कोशिश, मौसम, आंधी, शोले, नमकीन, परिचय, दस्तक, अनामिका, खिलौना, सिलसिला, त्रिशूल, शतरंज के खिलाड़ी, पति पत्नी और वो, सीता और गीता जैसी बेहतरीन फिल्में। संजीव कुमार जैसा बेहतरीन अभिनेता सिर्फ 47 साल की एज में इस फानी दुनिया को अलविदा कह गया, और वो दिन था 6 नवंबर 1985। बट संजीव कुमार साहब अपनी बेहतरीन अदाकारी के जरिए, अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगे।

0: और बॉलीवुड में ऐसे कुछ कलाकार हुए हैं जिनके आने से सचमुच नूर ही आया बॉलीवुड में।
1: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
0: 9:47, 9:48 और पूरी 1-2-3 सेकेंड्स गुरुवार की सुबह और आज है 9 जुलाई। और अगर बात करें 9 जुलाई की तो देखिए आज का दिन बेहद खास है बॉलीवुड के लिए। संजीव कुमार साहब की बर्थ एनिवर्सरी है, साथ ही साथ एक और बेहतरीन नायाब कलाकार की भी बर्थ एनिवर्सरी है। देखिए हिंदी जो फिल्म जगत है इसकी बात करें तो कुछ ऐसे नायाब कलाकार हुए हैं जिन्हें हम सिनेमा का आधार मान सकते हैं और इन्हीं में शामिल है नाम वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण का। अब आप कहेंगे जी ये कौन है? वेल, ये हैं दिग्गज कलाकार गुरुदत्त साहब। गुरुदत्त साहब जिन्हें सिनेमा मेकिंग स्कूल की तरह देखा जाता है। गुरुदत्त जिन्होंने ऐसी फिल्में बनाई कि उनसे आज तक कलाकार कुछ ना कुछ सीख लेते रहते हैं और सिनेमा की

पढ़ाई करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनकी फिल्मों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में जन्मे गुरुदत्त साहब एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे, दिग्गज निर्देशक निर्माता भी थे। देखिए, बात अगर करें उनकी कुछ कालजयी फिल्मों की, तो उससे पहले हम बात करते हैं उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी। जन्म उनका हुआ कर्नाटक में, लेकिन उनका बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ कोलकाता में, और इसीलिए उन्होंने अपना नाम दत्त, जो सरनेम है बंगाली सरनेम, तो उन्होंने अपना नाम फिल्मी जो नाम है वो रखा गुरुदत्त। आपने अपने करियर की शुरुआत एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में की थी एंड डांसर के रूप में। उस वक्त एक मशहूर डांस ग्रुप था उदय शंकर का ग्रुप, उसी ग्रुप से आपने बतौर डांसर शुरुआत की थी, और फिल्मों में भी जो आपकी शुरुआत हुई थी वो बतौर डांस डायरेक्टर ही हुई थी। देन आपको प्रभात फिल्म कंपनी पुणे में काम करने का मौका मिला, जहां आपको आपका बेहतरीन दोस्त मिला जिसका नाम था सदाबहार अभिनेता देवानंद। एक निर्देशक के तौर पर आपकी पहली फिल्म थी बाजी, साल 1951 में ये फिल्म आई थी और एक बहुत बड़ी हिट थी। बात करें अगर आपकी फिल्मों की, तो गुरुदत्त साहब की जो फिल्में हैं उन्हें क्लासिक माना जाता है। इसमें खास है 1957 में आई प्यासा, जिसमें आपने एक असफल कवि की भूमिका निभाई थी और ये आपकी सबसे बेहतरीन और प्रसिद्ध फिल्मों में से एक है। देन 1959 में आई कागज के फूल, और कागज के फूल जो है ये भारतीय सिनेमा की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म जो थी वो भी थी। साहब बीवी और गुलाम जो आई थी 1962 में, 1955 में आई मिस्टर एंड मिसेस 55, और ये आपकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर और बड़ी जो कॉमर्शियल सक्सेस होती है उसमें से एक थी। 1954 में आई आर पार भी अपने बेहतरीन संगीत और ह्यूमर की वजह से आपकी फिल्में जो हैं वो अपनी शानदार सी सिनेमेटोग्राफी के लिए, बेहतरीन संगीत के लिए भी जानी जाती रही थी। और इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि गुरुदत्त साहब की दो फिल्में प्यासा और कागज के फूल, इन्हें दुनिया की 100 बेहतरीन फिल्मों में जगह दी गई है। तो गुरुदत्त साहब की ही बेहतरीन दो फिल्मों से, दो बेहतरीन से बैक टू बैक गाने।

रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। यस, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है।

0: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
3: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बांट।
4: पर भैया, ये जीवन नागजी के कांटे बांट नहीं है।
3: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
4: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
5: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बांट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
6: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
7: जिंदगी एक इत्तेफाक है, बस आपकी और हमारी मुलाकात है। चंद लम्हों का है ये सफर जिसमें रास्ते कई और मंजिल एक है। इन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ते हुए रोज करें हमसे मुलाकात, बनाए रखें इस रिश्ते को बहुत खास। 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। गीतों की लड़ियां,
8: सवालों की झड़ियां,
7: चटपटी सी बातें,
8: शख्सियतों से मुलाकातें।
9: नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन हूँ।
8: थोड़ी सी हंसी,
7: बहुत सी खुशी,
8: कहाँ पर
7: और कहाँ, सिर्फ 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी पर। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
10: आप हैं RJ प्रीति के साथ, ओनली ऑन 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
7: मेलोडी क्वेस्ट, ओनली ऑन 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
11: दस बजकर 2 मिनट और पूरे 33 सेकेंड। वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट। और मेलेडी क्वेस्ट में बात होती है कुछ खास मेलेडीज की जो बुनी गई होती हैं कुछ खास थीम के इर्द गिर्द। और आज मेलेडी क्वेस्ट की जो थीम है वो है बड़ी मुश्किल। वेल, आज मेलोडी क्वेस्ट की जो थीम है वो सचमुच मुश्किल है। देखिए, थीम मुश्किल नहीं है। आज जो थीम है, यानी कि जो वर्ड जिसके इर्द गिर्द बुने बेहतरीन से गाने हम आपके लिए लाए हैं, वो है वर्ड मुश्किल। मुश्किल शब्द जब, मतलब मैंने जब देखा, और इनफैक्ट जब मैंने गाने देखे तो मुझे लगा कि अरे वर्ड तो मुश्किल है लेकिन जो गाने हैं वो बहुत ही एवरग्रीन से और बड़े अच्छे मेलोडियस नंबर्स हैं जो इस मुश्किल शब्द के आसपास हैं। तो चलिए, आज मुश्किल शब्द के इर्द गिर्द बुने गए कुछ खास गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं जो आपको हैं बताने। तो सबसे पहले करना है क्या, मेलोडी क्वेस्ट की थीम मुश्किल वर्ड। यस, तो मुश्किल शब्द के इर्द गिर्द बुने गए गाने, और लगाना है ध्यान और साथ ही साथ लगाना है कान। तो ध्यान और कान दोनों लगा के सुनिए आज का पहला क्लू। और आज मेलोडी क्वेस्ट की थीम मुश्किल। वैली, देखिए गाने बताना मुश्किल नहीं होगा, बस जो थीम है वो मुश्किल है। एक गाना बिल्कुल मैं आप सबके लिए प्ले करूंगी।

और अब पहला क्लू, और जो पहला क्लू है वो बड़ा आसान है, मतलब जैसे ही मैं दूंगी ना आप सबको वो वाला गाना तुरंत से याद आ जाएगा, ठीक है। सो चलिए जी, शुरुआत बड़ी आसानी से की जाती है, तो मुश्किल शब्द वाला पहला गाना जो आप सबको मुझे है बताना। ये गाना पिक्चराइज्ड है माधुरी दीक्षित एंड शाहरुख खान पर, माधुरी दीक्षित एंड शाहरुख खान पर पिक्चराइज्ड मुश्किल शब्द वाला गाना आपको है मुझे बताना। और बताने के लिए जाने जाना आपके पास हमारी फ़ोन लाइंस 2200800। इसके अलावा हमारा FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, ये है हमारा FB पेज। इस पेज पर जाइए और जो वहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट है, यानी कि वो पोस्ट जिस पर मेलेडी क्वेस्ट प्रोग्राम की डिटेल्स दी हुई हैं, वहाँ जाकर कॉमेंट सेक्शन में गाने के बोल और फिल्म का नाम दोनों आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। और यस, आप उस पोस्ट को लाइक भी कर सकते हैं। सो मेलेडी क्वेस्ट का आज का पहला क्लू, मुश्किल शब्द वाला गाना जो पिक्चराइज्ड है माधुरी दीक्षित एंड शाहरुख खान पर, वो आपको है हमें बताना।

0: Melody Quest. Only on 100.3 FM Radio Pink City. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
1: 10:09 और पूरे 45, 46, 47 सेकेंड रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM. वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट. और आज मेलेडी क्वेस्ट में थीम हमने दी है मुश्किल. जी हाँ, शब्द है मुश्किल, लेकिन जो पहला सवाल था वो था वड्डा ही आसान. मुश्किल शब्द वाला गाना जो आपको था हमें बताना, वो था माधुरी और शाहरुख पर पिक्चराइज्ड एंड इट इज़ फ्रॉम द मूवी अंजाम. बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है. और ये गाना जिन्होंने है सही पहचाना, उनमें नाम शामिल होता है कौशल कुमार जी, बुधवाड़ा अजमेर से आपने दिया हमें बिल्कुल सही सही जवाब. देन प्रीति नितिन अग्रवाल फ्रॉम मालवी नगर, हरीश कुमार जी फ्रॉम बाईस गोदाम, सुनीता झालानी जी बरकत नगर एक्सटेंशन से, सीटू सैनी चौमू से, एंड शिखा गुप्ता, रामकिशन गुप्ता बैंक कॉलोनी महेश नगर से, एंड रोहिताश महावर, पंकज सिंह, शैलेंद्र सिंह निवाडू रोड से विद द राइट आंसर. देन वी हैव विष्णु गुप्ता. विष्णु गुप्ता जी आप हमसे जुड़े हैं मणिहारों का रास्ता से. एंड देन वी हैव अशोक कनौजिया फ्रॉम त्रिवेणी नगर, हनी भाटिया एंड सुनंदिनी गेव अस द राइट आंसर, संगीता अग्रवाल फ्रॉम गुजर की थड़ी, रेणू गोविल, प्रियांशी नवीन वैशाली नगर से, एंड मुमताज मलखान, श्रुति पारेक ने भी दिया है बिल्कुल सही जवाब, मोहम्मद तहजीम अंसारी, कुसुम चित्तौड़िया एंड मिथिलेश चित्तौड़िया आमेर से, विनोद मोरवाल, राजू मोरवाल, सीताराम मोरवाल, खेमचंद, गुलाबचंद, सुनील, दीपू कोठी कोलियान से, एंड मोहम्मद रियाज, सोनू, शफीक, अल्फेज जवाहर नगर से, प्रवीण चौहान जी विद द राइट आंसर, महबूब चौहान, महेश जांगिर जी झुटवाड़ा से, और अंजना जांगिर जी फ्रॉम कालवाड़ रोड जयपुर. और ओके, अंजना जी कहती हैं कि उनका जो रेडियो है वो ख़राब हो गया था तो आज वो काफ़ी दिनों बाद सुन रही हैं, सो वेलकम जी. मधु टहलियानी जी ने भी दिया है हमें बिल्कुल सही सही जवाब. एंड देन मिष्ठी जुड़ी हैं हमसे सही जवाब के साथ, अलका वर्मा गेव अस द राइट आंसर, और यस सुनीता झालानी जी कहती हैं कि आज जैसे ही उन्होंने एफएम ऑन किया तो उन्हें लगा कि आवाज़ बदल गई है और आज प्रीति जी की आवाज़ को क्या हुआ है, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता लगा कि उन्होंने चैनल ही चेंज कर दिया था. तो भाई देखिए, ये नहीं करना है, चैनल तो मतलब यही रखना है ना, सो कनेक्शन तो रहना चाहिए. मीनू सिंह पंजाबी आपने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब, विनोद दायमा जोबनेर से विद द राइट आंसर, पंकज अरोड़ा फ्रॉम जनता स्टोर, नरेश कुमार राज लाल कोठी से, घनश्याम हीरानी जी फ्रॉम हीरापुरा, देन अर्चना गुप्ता गेव अस द राइट आंसर, देन ममता लखोटिया रामनगर सोडाला से, शशि बेनीवाल जी फ्रॉम नाड़ी का फाटक, राधिका दीवान और हनी दीवान आप दोनों का जवाब बिल्कुल सही, एंड अभय जांगिड़ हमसे जुड़े सही जवाब के साथ, शंकर जैन फ्रॉम जौहरी बाजार, रोशनी भार्गव, अनु मिश्रा, रवि सिंघल, नवीन बंसल फ्रॉम जगतपुरा, हेमंत महावर जी गंगापोल से, अंकित विवेक विहार से, हरीश जी बाईस गोदाम से, रेखा कोहली जी बैनार रोड से, ज्योति जी चित्रकूट से जुड़ी हैं सही जवाब के साथ, एंड रचित गोस्वामी और अनुराधा गोस्वामी आप दोनों का जवाब है बिल्कुल ठीक. तो आई थिंक मैंने सभी के नाम ले दिए हैं और अब ये वाला गाना आप सबके लिए प्ले होगा, लेकिन अगला क्लू दे दिया जाए. सो करना क्या है मेरे जयपुर, लगाना है ध्यान और लगाने हैं कान. और आज मेलेडी क्वेस्ट की थीम है वर्ड मुश्किल. तो मुश्किल शब्द के इर्द गिर्द बुना गया ये गाना पिक्चराइज्ड है इरफान खान, दीपिका पादुकोण एंड अमिताभ बच्चन पर. इरफान खान, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज्ड मुश्किल शब्द वाला गाना आपको है हमें बताना. और बताने के लिए जाने जाना आपके पास है हमारी फोन लाइन्स 2200800. इसके अलावा हमारा एफबी पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, इस पेज पर जाइए और जो लेटेस्ट पोस्ट है वहां जाकर कमेंट सेक्शन

0: बड़ी आसान सी बात है जी, इसमें कोई मुश्किल नहीं कि रोएं या हंसे। बिल्कुल जी, हंसना ही है, रोना किस बात का।
1: Melody Quest. Only on 100.3 FM, Radio Pink City. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
0: वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट। और आज मेलेडी क्वेस्ट की थीम है मुश्किल शब्द के इर्द गिर्द बुने गए बेहतरीन से गाने। हमने आपसे पूछा था मुश्किल वर्ड वाला गाना जो पिक्चराइज्ड है इरफान खान, दीपिका पादुकोण एंड अमिताभ बच्चन पर, एंड इट इज द सॉन्ग फ्रॉम पीकू, धीरे चलना है मुश्किल। बिल्कुल जी, और ये वाला जो गाना है ना, ये बहुत स्पेशल इसलिए लगता है कि इसमें बीच में श्रेया घोषाल की आवाज़ में जो वो बंगाली में लिरिक्स आते हैं ना, इतना बेहतरीन एक अमेजिंग सा कॉम्बो लगता है। और इस वाले गाने को सुनकर लगता है कि अपनी जो मिट्टी होती है, अपनी भाषा होती है, अपनी जड़ों से जो जुड़ाव होता है, वो सचमुच कितना अच्छा लगता है और कितना गहरा होता है जब आप वो जुड़ाव, वो लगाव रखते हैं। सो ये वाला गाना आप सबके लिए प्ले होगा, लेकिन उससे पहले उनके नाम जिन्होंने दिए हैं सही जवाब। सुनीता झालानी जी बरकत नगर से, शिखा गुप्ता रामकिशन गुप्ता बैंक कॉलोनी महेश नगर से विथ राइट आंसर, शंकर जैन जी जौहरी बाजार से, एंड देन हर्षिल भाटिया एंड रिंकू भाटिया, आप दोनों का जवाब है बिल्कुल सही। एंड देन वी हैव विमला गुगलानी जी विथ द राइट आंसर, तेजिंदर अरोड़ा जी विथ द राइट आंसर, अमित कुमार नामा नर्सिंग कॉलोनी पुरानी बस्ती से आपने दिया सही जवाब, संगीता अग्रवाल जी फ्रॉम गुजर की थड़ी, रेणु गोविल प्रिया एंड नवीन वैशाली नगर से विथ राइट आंसर, हनी भाटिया जी गेव अस द राइट आंसर, एंड देन मुमताज मलखान, विनोद दायमा जोबनेर से, अक्की वेदान, अंकित जी श्याम नगर से विथ द राइट आंसर। वैसे अंकित जी आप कभी श्याम नगर में होते हैं और कभी आप विवेक विहार में होते हैं, सो हमें लगता है कि आपको अपना एक कंफर्म तो हमें बताना पड़ेगा कि आप किस जगह से बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब अंकित जी ने आंसर दिया तो अंकित जी विवेक विहार में थे और अभी अंकित जी ने जो जवाब दिया है ही इज़ फ्रॉम श्याम नगर। कुसुम चित्तौड़िया, मिथिलेश चित्तौड़िया आमिर से हमसे जुड़े हैं विथ द राइट आंसर, एंड देन वी हैव तेजिंदर अरोड़ा, ममता लखोटिया जी रामनगर सोडाला से, अरशाद खान गुलरेज और नईम अंसारी का जवाब, तीनों का ही जवाब है बिल्कुल ठीक, प्रवीण चौहान जी गिव अस द राइट आंसर, सुशीला दत्ता जी फ्रॉम बनीपार, नरेश कुमार राज लालकोठी से, प्रीति नितिन अग्रवाल फ्रॉम मालवी नगर, महेश जांगिड़ जी झोटवाड़ा से, विनोद मोरवाल, राजू मोरवाल, सीताराम मोरवाल, खेमचंद, गुलाबचंद, सुनील दीपू कोठी कोलियान से, राज छीपा, मोनू शर्मा, पवन सैनी, गोविंद सैनी, लोकेश प्रतीक नारगढ़ किले के नीचे छीपों की बगीची के पास से, इन सभी ने दिया सही जवाब, महबूब चौहान जी गेव अस द राइट आंसर, पंकज अरोड़ा फ्रॉम जनता स्टोर, पवन रामचंदानी बिंदायका से, अशोक कनौजिया जी त्रिवेणी नगर से, एंड शंकर चौधरी जी कालवाड़ रोड से आप जुड़े हैं सही जवाब के साथ, श्यामला नायर खुशबू तोपखाने के रास्ते से गेव अस द राइट आंसर, मयंक पुरोहित जी आपका जवाब है बिल्कुल ठीक, यश गंगवाल एंड हेमा गंगवाल सीस्किम से आप दोनों का जवाब है बिल्कुल ठीक, और सरदारनी गुरप्रीत कौर आपका जवाब बिल्कुल ठीक, वहीद भाई भट्टा बस्ती से हमसे जुड़े, किशोर दत्त एंड वीना दत्त आप दोनों का जवाब बिल्कुल ठीक, गुरुबख्श पठान जी गेव अस द राइट आंसर, हेमंत का जवाब है बिल्कुल ठीक, बंटी ने दिया हमको बिल्कुल सही सही जवाब, एंड एफबी पे तो कोई और नाम नहीं है, फोन लाइंस के जरिए जो और सही जवाब आए हैं इसमें है रोशनी भार्गव गिव अस द राइट आंसर, अनु मिश्रा जी आपका जवाब है बिल्कुल ठीक, एंड रचित गोस्वामी और अनुराधा गोस्वामी आप दोनों का जवाब है बिल्कुल ठीक। सो ये वाला गाना पीकू फिल्म से आप सभी के लिए प्ले होगा, लेकिन अगला सॉन्ग और अगला जो क्लू है ये भी बड़ा इजी है, बिल्कुल बिल्कुल जी बड़ा ही इजी है, मुश्किल शब्द वाला गाना अब जो आपको है मुझे बताना। इस गाने में नजर आई हैं, यस, इस गाने में दो एक्ट्रेस नजर

रही हैं। इस गाने में नजर आई हैं माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला। माधुरी दीक्षित एंड मनीषा कोइराला पर पिक्चराइज मुश्किल शब्द वाला गाना आपको है हमें बताना, और बताने के लिए जाने जाना आपके पास है हमारी फोन लाइन 2200800। इसके अलावा हमारा FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, इस पेज पर जाइए और जो लेटेस्ट पोस्ट है वहां जाकर कमेंट सेक्शन में गाने के बोल और फिल्म का नाम दोनों आप हमें लिख कर भेज दीजिए। तो आप हमें बता दीजिए वो गाना जो है मुश्किल शब्द पे इर्द गिर्द बुना हुआ और पिक्चराइज्ड है माधुरी दीक्षित एंड मनीषा कोइराला पर। और अभी पीकू फिल्म से जर्नी सॉन्ग।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जयपुर की है जान,
2: ओ मेरी जान।
1: जयपुर की है मुस्कान,
2: मुस्कुराने की वजह तुम हो।
1: आप सभी के दिलों में बसने वाला चैनल 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, ये रिश्ता है हमारी शान।

Melody Quest. Only on 100.3 FM, Radio Pink City. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है. 10:32 और पूरे 35 सेकेंड. वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट. और आज मेलेडी क्वेस्ट की थीम है मुश्किल शब्द के इर्द गिर्द बुने गए खास गाने. और हमने आपसे पूछा था मुश्किल वाला गाना जो पिक्चराइज्ड है माधुरी दीक्षित एंड मनीषा कोइराला पर. एंड द सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी लच्चा. बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल. और ये गाना जिन्होंने है सही पहचाना उसमें नाम शामिल होता है शकुंतला जी. हमसे जुड़ी हैं जनकपुरी से सही जवाब के साथ. अलका वर्मा ने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब. सुनंदिनी का जवाब बिल्कुल ठीक. नवीन बंसल फ्रॉम जगतपुरा. विष्णु गुप्ता जी का जवाब है बिल्कुल ठीक. रचित गोस्वामी एंड अनुराधा गोस्वामी जी विद द राइट आंसर. सुनीता झालानी जी फ्रॉम बरकतनगर. शिखा गुप्ता रामकिशन गुप्ता जी फ्रॉम बैंक कॉलोनी महेश नगर. मीनू सिंह पंजाबी गेव अस द राइट आंसर. सुशीला दत्ता जी फ्रॉम बनीपार. देन ममता लखोटिया रामनगर सोडाला से. वैष्णवी गुप्ता एंड मनन गुप्ता बोथ गेव अस द राइट आंसर. सुमन चौधरी जी आपका जवाब है बिल्कुल ठीक. लीना बिंजू भाकरोटा हैंगिंग गार्डन से आपने दिया सही जवाब. सिराजुद्दीन कमरी मोहसिन कमरी जैनुल आकिब आजिम कमरी रामदेव जी के मंदिर के पास से है आप सभी का जवाब बिल्कुल ठीक. एंड देन वी हैव शंकर जैन जौहरी बाजार से आपका जवाब है बिल्कुल ठीक. संगीता कंवर जी फ्रॉम वैशाली नगर. एंड अक्षय महेश नगर से हमसे जुड़े बिल्कुल सही जवाब के साथ. रोहिताश महावर उमेश भारद्वाज पंकज शैलेंद्र सिंह निवारू रोड से विथ द राइट आंसर. और और अंकित कहते हैं कि मैडम आप मेरा नाम से जान गए के पर आपने सॉन्ग का नाम तो सुना ही नहीं. मैंने मूवी का नाम बताकर रह गया था. अंकित विवेक विहार से. तो देखिए अंकित जी ने इससे पहले जो जवाब दिया था वो था श्यामनगर से. और

अंकित जी हैं विवेक विहार से. सो आई थिंक अंकित का थोड़ा डॉन की तरह हो रहा है, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं कि इनको ढूंढना मुश्किल हो रहा है. और लज्जा फिल्म का गाना जिन्होंने है सही पहचाना, इसमें नाम शामिल है अंजना जांगिड़ जी कालवाड़ रोड से, श्रुति श्रुति पारिक अक्षिता पारिक बरकत नगर से, मधुबाला पारिक, श्रुति पारिक एंड अक्षिता पारिक बरकत नगर से. एंड देन वी हैव नूतन पहला जानी एंड किरण पहला जानी विद द राइट आंसर, एंड शशि बेनीवाल जी नाड़ी का फाटक से विद द राइट आंसर, राशि कोटिया पोलो विक्ट्री से हमसे जुड़ी हैं सही जवाब के साथ, प्रिया गुप्ता जी का जवाब है बिल्कुल ठीक, विक्रम ओसवाल एंड कृति ओसवाल बोथ गेव अस द राइट आंसर, एंड देन वी हैव पवन कुमार रामचंदानी बिंदायका से विथ द राइट आंसर, एंड लेट मी चेक अंकित अंकित ने सिर्फ अपना नाम लिखा है यहाँ पे, एंड पंकज अरोड़ा जी जनता स्टोर से आपका जवाब है बिल्कुल ठीक, और अमित कुमार नामा नर्सिंग कॉलोनी पुरानी बस्ती से आपने दिया सही जवाब, और अमित जी कहते हैं कि गुरुवार को आप नहीं आती हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, सो थैंक यू सो मच जी. और नरेश कुमार राज फ्रॉम लालकोठी, महबूब चौहान जी ने दिया राइट सही जवाब, घनश्याम हीरानी जी हीरापुरा से, हरीश कुमार जी बाईस गोदाम से, एंड संगीता अग्रवाल जी गुजर की थड़ी से, प्रवीण चौहान जी का जवाब बिल्कुल ठीक, अशोक कनौजिया जी फ्रॉम त्रिवेणी नगर, महेश जांगिड़ जी झोटवाड़ा से, एंड कुसुम चित्तौड़िया मिथिलेश चित्तौड़िया जी आमेर से, विनोद दायमा फ्रॉम जोबनेर, मधु टहलियानी जी का जवाब बिल्कुल ठीक, प्रीति नितिन अग्रवाल फ्रॉम मालवी नगर, महेश मोरवाल विनोद मोरवाल राजू सीताराम खेमचंद गुलाबचंद मोरवाल सुनील दीपू कोठी कोलियान से, देन रेणु गोविल प्रिया एंड नवीन फ्रॉम वैशाली नगर, एंड देन वी हैव विद द राइट आंसर राज छीपा मोनू शर्मा पवन सैनी गोविंद सैनी लोकेश प्रतीक नाहरगढ़ किले के नीचे छीपों की बगीची के पास से, आप सभी का जवाब है बिल्कुल ठीक, और यस अंजाम यस लज्जा फिल्म का जो जवाब है सही जिन्होंने दिया, आई थिंक एफबी से सारे नाम मैं ले चुकी हूँ, इसके अलावा फोन लाइंस के जरिए जिन्होंने सही जवाब दिए उनमें और जिनके नाम शामिल हैं, हेमंत महावर गंगापोल से जुड़े हैं सही जवाब के साथ, एसपी शर्मा जी एंड मीनाक्षी शर्मा आपका जवाब बिल्कुल ठीक, खुशबू तोपखाने के रास्ते से, गरिमा भांबू का जवाब बिल्कुल ठीक, वहीद भाई हमसे जुड़े भट्टा बस्ती से सही जवाब के साथ, बंटी ने दिया हमें सही जवाब, गुरुबख्श पठान आपका जवाब बिल्कुल ठीक, अनीता मेदीरत्ता जी हमसे जुड़ी सही जवाब के साथ, वर्तिक ग्रेवाल ने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब, रेखा कोहली जी फ्रॉम बेनार्ड रोड, ज्योति जी फ्रॉम चित्रकूट, एंड देन रोशनी भार्गव आपका जवाब बिल्कुल ठीक, तो ये सभी लोग जिन्होंने दिया हमें सही जवाब थैंक यू सो मच. ये गाना आप सभी के लिए प्ले किया जाएगा और अगला क्लू आपको दे दिया जाए, तो सबसे पहले करना क्या है जयपुर, लगाने हैं ध्यान और लगाने हैं कान, तो ध्यान और कान लगा के सुनिए, देखिए मुश्किल शब्द वाला ये जो गाना है ये पिक्चर है परवीन बॉबी एंड शशि कपूर पर, शशि कपूर और परवीन बॉबी पर पिक्चराइज्ड ये गाना, आप देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि गाने के मतलब जो वर्ड्स हैं उन्हीं में आता है मुश्किल, लेकिन एकदम थोड़ा सा क्लिक नहीं करेगा, बट इट इज़ अ वेरी फेमस नंबर जब आप सुनेंगे. और चलिए एक क्लू और दे देती हूँ, परवीन बॉबी और शशि कपूर पर यह गाना पिक्चराइज्ड है और इस गाने में जो वॉइस है वो मेल वॉइस जो है वो शशि कपूर साहब की ही है, वो डायलॉग मतलब बोल रहे हैं बस इस तरीके से है, तो शशि कपूर साहब की ही मेल वॉइस है, और जो दूसरी वॉइस है यानी कि ये क्लू बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो मैं आपको नहीं दूंगी, आशा ताई की आवाज़ है और साथ ही शशि कपूर साहब की आवाज़ है, शशि कपूर और परवीन बॉबी पर पिक्चराइज्ड मुश्किल वाला गाना आपको है हमें बताना, और बताने के लिए जाने जाना आपके पास है हमारी फ़ोन लाइन्स 22200800, इसके अलावा हमारा एफपी पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, इस पेज पर जाइए और जो लेटेस्ट पोस्ट है वहां जाकर कमेंट सेक्शन में गाने के बोल और फिल्म का नाम दोनों हमें लिखकर भेज दीजिए, तो मुश्किल वाला गाना जो पिक्चराइज्ड है परवीन बॉबी एंड शशि कपूर पर

रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम शो चल रहा है मेलेडी क्वेस्ट, और मेलेडी क्वेस्ट में हमने आपसे पूछा था वो गाना जो मुश्किल शब्द के इर्द गिर्द बुना गया है और पिक्चराइज्ड है शशि कपूर और परवीन बाबी को, और सॉन्ग है सुहाग फिल्म से मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। वेल, देखिए मुझे लगता है वो भी एक ज़माना था कि इस तरह के गाने बन गए। ये वाली बात आजकल मजाक में भी आप नहीं कह सकते हैं, है ना। तो चलिए, ये वाला गाना आप सभी के लिए प्ले होगा, और साथ ही साथ उन सभी के नाम जिन्होंने ये गाना सही है पहचाना। कौशल कुमार जी बुधवाड़ा अजमेर से जुड़े विद द राइट आंसर, शिखा गुप्ता, रामकिशन गुप्ता फ्रॉम बैंक कॉलोनी महेश नगर, सुनीता झालानी जी बरकत नगर से, सुशीला दत्ता जी फ्रॉम बनीपान, शंकर जैन फ्रॉम जौहरी बाजार, और शंकर जी कहते हैं कि ये फिल्म और इसके गाने तो उन्हें बिल्कुल याद रहेंगे क्योंकि इस फिल्म को वो स्कूल से छुपकर मतलब दोस्तों के साथ बंक मारकर देखने गए थे, और जब गए थे तो उनकी पिटाई हुई थी अच्छी खासी अपने बड़े भाई साहब से। तो चलिए, वो भी कुछ दिन थे। और अशोक टेलर जड़ियों का रास्ता से, कौशल, मंजू, कविता, यामिनी, हेनू, शालू और इंदु जी भी जड़ियों का रास्ता से, आप सभी का जवाब है बिल्कुल ठीक। पवन कुमार रामचंदानी जी बिंदायका से हमसे जुड़े हैं विद द राइट आंसर, एंड देन वी हैव बाबुद्दीन कुरैशी विद द राइट आंसर, बाबू लक्ष्मीकांत शर्मा भिंडो के रास्ते से, नरेश कुमावत जी बगरू से, एंड देन वी हैव मोहसिन कमरी, सिराजुद्दीन कमरी, जैनुल, आकीब, सल्लू, आजिम, हाशिम, रामदेव जी के मंदिर के पास घाट गेट जयपुर से, मधु सिन्हा, स्मृति सिन्हा, सुशांत सिटी कालवाड रोड से, आपका जवाब बिल्कुल ठीक, लीना बिंजू फ्रॉम भाकरोटा हैंगिंग गार्डन्स, देन वी हैव रजत विश्नोई एंड निकिता विश्नोई, संजना बिष्ट आपने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब, संजय अग्रवाल एंड राधिका अग्रवाल जी आप दोनों का जवाब है बिल्कुल ठीक, और विथ द राइट आंसर सुहाग फिल्म का गाना जिन्होंने सही पहचाना, मीना शर्मा जी मानसरोवर से हमसे जुड़ी हैं सही जवाब के साथ, एंड देन शशि बेनीवाल जी नाड़ी का फाटक से, आपका जवाब है बिल्कुल ठीक, गोपाल खत्री जी सांगानेर से हमसे जुड़े हैं सही जवाब के साथ, अशोक कनौजिया जी हमसे जुड़े हैं विद द राइट आंसर त्रिवेणी नगर से, और अशोक कनौजिया जी कहते हैं कि आप इतनी शिद्दत से श्रोताओं की भागीदारी करते हैं इसलिए ये प्रोग्राम पसंद आता है, थैंक यू सो मच जी। अंजना जांगिड़ जी फ्रॉम कालवाड़ रोड, प्रवीण चौहान गेव अस द राइट आंसर, नरेश कुमार राज लालकोठी से, एंड मधुबाला पारेख, श्रुति पारेख एंड अक्षिता पारेख फ्रॉम बरकत नगर, कुसुम चित्तौड़िया, मिथिलेश चित्तौड़िया आमेर से, विनोद मोरवाल, महेश मोरवाल, राजू सीताराम, खेमचंद मोरवाल, गुलाबचंद, सुनील दीपू कोठी कोलियान से विद द राइट आंसर, पंकज अरोड़ा जी जनता स्टोर से, विनोद दायमा जोबनेर से, अशोक कन्होजिया जी त्रिवेणी नगर से, प्रीति नितिन अग्रवाल मालवी नगर से, महबूब चौहान जी विद द राइट आंसर, रेणु गोविल, प्रिया नवीन वैशाली नगर से, अमित कुमार नामा नर्सिंग कॉलोनी पुरानी बस्ती से, और मीनू सिंह पंजाबी विद द राइट आंसर, मीनू जी कहती हैं उन्होंने ये गाना कल ही

0: लक्ष्मी हैं। और महेश जी कहते हैं कि हमारी मैडम बोले, देन मधु टहलियानी जी ने दिया है सही जवाब। मधु जी कह रही हैं आज मेरे कमेंट्स शो नहीं हो रहे। देखिए ये वाला कमेंट तो हमें दिख गया है, लेकिन सही जवाब जो हैं वो थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं। और सुहाग फिल्म का गाना जिन्होंने है सही सही पहचाना, उसमें और जिनके नाम शामिल है, हीरेन बसवाल आपने दिया हमें बिल्कुल सही सही जवाब। प्रेम बिहारी जी ने दिया बिल्कुल सही जवाब। लोकेश कुमावत जी हमसे जुड़े सही जवाब के साथ। निधि नरूका आपका जवाब है बिल्कुल ठीक। संगीता कंवर जी फ्रॉम वैशाली नगर। देन गंगा सिंह ने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब। गुलरेज नईम अहमद फिरोज और सलीम अंसारी आप पांचों दोस्त झोटवाड़ा से हमसे जुड़े विथ द राइट आंसर। देन सुनंदिनी ने दिया हमें सही जवाब। अलका वर्मा जी का जवाब है बिल्कुल ठीक। राधिका दीवान और हनी दीवान आप दोनों का जवाब है बिल्कुल ठीक। श्यामला नायर जी हमसे जुड़ी हैं सही जवाब के साथ। अर्चना गुप्ता एंड विष्णु गुप्ता आप दोनों का जवाब है बिल्कुल ठीक। रवि सिंघल जी ने दिया बिल्कुल सही जवाब। एंड सुदीप मिश्रा हमसे जुड़े हैं सही जवाब के साथ। देन यस राज छीपा, मोनू शर्मा, पवन सैनी, गोविंद सैनी, लोकेश प्रतीक, नाहरगढ़ किले के नीचे छीपों की बगीची के पास से आपका जवाब है बिल्कुल ठीक। और यस अब और कोई नाम मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो आई होप कि मैं सबके नाम ले चुकी हूँ। इन केस अगर किसी का नाम रह जाएगा, यानी कि अभी मुझे शो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आपका नाम हमें दिखेगा बिल्कुल हम आपका जो नाम है वो बिल्कुल बोलेंगे। और अब ये वाला गाना आपके लिए प्ले किया जाएगा, लेकिन अगला जो क्लू है वो भी आपको दे दिया जाए। देखिए ये जो गाना है, ये गाना पिक्चराइज्ड है अक्षय कुमार एंड लारा दत्ता पर। अक्षय कुमार एंड लारा दत्ता पर पिक्चराइज्ड मुश्किल वाला गाना आपको है हमें बताना। और बताने के लिए जाने जाना आपके पास है हमारी फोन लाइंस 2200800। उसके अलावा हमारा एफबी पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, ये है हमारा एफबी पेज। इस पेज पर जाइए और जो लेटेस्ट पोस्ट है वहाँ कमेंट सेक्शन में जाकर गाने के बोल और फिल्म का नाम आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। सो मुश्किल वाला गाना जो पिक्चराइज्ड है अक्षय कुमार एंड लारा दत्ता पर आपको है हमें बताना।
1: अरे मोहन भाई काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
3: कुछ खूबसूरत सुरीले पल ओनली फॉर जयपुराइट्स विद

मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, सुहाग फिल्म का ये गाना। लेकिन ऐसी रिक्वेस्ट किसी से नहीं करनी है जाने जाना। वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट। और हमने आपसे पूछा था मुश्किल शब्द वाला गाना जो पिक्चराइज्ड है अक्षय कुमार एंड लारा दत्ता पर। और जो गाना हमने सेलेक्ट किया इट इज़ फ्रॉम द मूवी भागम भाग। तेरे बिन कहीं लगता ही नहीं दिल, क्या करूँ मैं क्या ना करूँ है मुश्किल। सो ये वाला गाना देखिए, और बहुत सारे लोगों ने इसके अलावा भी गाना जो है सही पहचाना जिसमें मुश्किल शब्द आता है, इट इज़ फ्रॉम द मूवी अंदाज। तो लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये जो गाना है, मतलब मुझे लगता है शायद लास्ट वाला जो क्लू है वो सबके लिए मुश्किल हो गया है, लेकिन एकदम सही जो भागम भाग फिल्म का गाना है वो जिन्होंने सबसे पहले सही पहचाना। उसमें नाम है सिराजुद्दीन कमरी, मोहसिन कमरी, जैनुल आकीब, सल्लू आजिम, रामदेव जी के मंदिर के पास घाट गेट जयपुर से, और अशोक कनौजिया जी त्रिवेणी नगर से, महेश जांगिर जी, सुमन जांगिर जी झोटवाड़ा से, देन पवन कुमार रामचंदानी जी बिंदायका से हमसे जुड़े और फोन लाइन्स के जरिए भी आपने सही जवाब दिया है, एंड पंकज अरोड़ा जी फ्रॉम जनता स्टोर, प्रवीण चौहान जी विद द राइट आंसर, कुसुम चित्तौड़िया, मिथिलेश चित्तौड़िया फ्रॉम आमेर, मधु सिन्हा, स्मृति सिन्हा सुशांत सिटी से, और मधु सिन्हा जी कहती हैं कि आपने आज हमारा नाम एक बार भी नहीं लिया। नहीं जी, बिल्कुल लिया है इससे पहले वाले में भी, क्योंकि जब मुझे आपके आंसर शो हुए हैं सुहाग फिल्म का जवाब जो है उसमें आपका नाम दिखा था, तो बिल्कुल हमने आपका नाम शामिल किया है और मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है नाम नहीं दिखे हों। एंड देन अंजना जांगिर जी हमसे जुड़ी हैं झोटवाड़ा से सही जवाब के साथ, श्रुति पारेख ने दिया बिल्कुल सही जवाब, घनश्याम हीरानी जी फ्रॉम हीरापुरा, अमित कुमार नामा नर्सिंग कॉलोनी पुरानी बस्ती से, महेश मोरवाल, विनोद मोरवाल, राजू मोरवाल, सीताराम खेमचंद, गुलाबचंद, सुनील दीपू कोठी कोलियान से, रेणु गोविल, प्रिया नवीन वैशाली नगर से, देन वी हैव महबूब चौहान जी विद द राइट आंसर, ममता लखोटिया जी रामनगर सोड़ाला से विद द राइट आंसर, और राशि अग्रवाल आपका जवाब है बिल्कुल ठीक, देन अक्षय महेश नगर से हमसे जुड़े

भी जवाब के साथ। प्रीति नितिन अग्रवाल मालवी नगर से, सीटू सैनी जी फ्रॉम चौमू, देन हरीश जी बाईस गोदाम से, बाबुद्दीन कुरैशी आपका जवाब है बिल्कुल ठीक, बनवारी लाल जांगिड़ फ्रॉम शिवाड़, एंड यस आई थिंक यही लोग हैं। और कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद हमारे कमेंट्स शो नहीं हो रहे। देखिए बिल्कुल, अगर आपका नाम नज़र नहीं आ रहा होगा तो अदरवाइज़ हम पूरी कोशिश करते हैं कि सभी के नाम शामिल किए जाएं। तो अभी तक मुझे जिनके नाम नज़र आए हैं मैं नाम शामिल कर चुकी हूँ। राज छिपा, मोनू शर्मा, पवन सैनी, गोविंद सैनी, लोकेश, प्रतीक, नारगढ़ किले के नीचे छिपों की बगीचे के पास से आपने भी दिया है हमें बिल्कुल सही सही जवाब, एंड देन वी हैव विद द राइट आंसर। यस, अभी तक यही लोग हैं जिनके नाम हमें नज़र आए हैं। तो भागम भाग फिल्म का ये गाना हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं, और अब किसी का नाम इनफैक्ट फिर भी अगर दिख जाएगा तो हम बिल्कुल शामिल करेंगे, और आप कुछ ही पला में अपनी बोली और अपना ही गीत

0: ते सुन रहा हो चटकीलो राजस्थान 100.3 FM माले काई तो खास छे और काई तो बात छे।
1: ग्यारह बजकर 5 मिनट और पूरा 24:25-26 सेकेंड रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM शुरू हो गया वो प्रोग्राम जी कुछ है नाम चटकीलो राजस्थान। और भाई देखो चटकीलो राजस्थान राजस्थान की जब बात खे छे तो सबसे पहली खे जा छे कि रंग रंगीलो राजस्थान, क्योंकि रंगीन परिधान और बेहतरीन खान पान यही छे आपड़ा राजस्थान री पहचान। तो आज बात करेंगे खाने की यानी खाबा की बात और वो खानों जो वहाँ सब ने घणो चोखो लागे छो यानी कि वो स्कूल में जो छुट्टी जया कि वो लंच की घंटी जद बाजे छी ने है वो घंटी बाजे छी बीच में फिर जाए भाई इंटरवल ली ओहो खेल घंटी होगी और अब बस ऊ खेल घंटी में वो जो खानो आहा तरह तरह की खुशबू रया लागे छो कि बस खाता ही जावा वो स्कूल को टिफिन वो चाव। और अया भी हो जाए देखो कोई कोई को अचार याद रह छे, कोई की पूड़ी याद रह छे, कोई की कोई खास सब्जी याद रह छे और ऊ लंच खाना के साथ जो जुड़ी छे वो छे बहुत सारी यादा। तो स्कूल में खायो गयो वो खास लंच वो खास खानो जिसे जुड़ी छे खास यादा वो थे जो खुद ले जा छा वो जो थे थाने कोई और को भी पसंद आ छो उसे एक बहुत सारी याद। देखो खानो वया भी मने यहाँ लागे छे कि मैं जो भारतीय लोग वहां सबकी एक बहुत बड़ी मतलब कह सका छा कमजोरी छे खानो है ना। चोको खानो देखा तो मैं माँ को मन जो छे वो ललचा जा छे और मैं फटाफट फिसल जा छा अच्छा चाल चालो है ना। वहाँ तो मैं एक चोखी सी चाय भी कोई पा दे तो ऊपर भी राजी हो जाऊँ जा तो फिर खाना की तो बात ही दूसरी छे। तो आज वो खानो जो स्कूल में लंच में दोस्ता के साथ खाई हुई वो खानो जी के साथ जुड़ी छे बहुत सारी खास याद आ ऊ खाना की ही कराला बात। तो अगर था कने भी छे अशी कोई खास याद तो ते कर सको चो साझा माँ के साथ करवा के लिए था की बात माँ की फोन लाइन 2200 और ई के अलावा माँ को FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM यो FB पेज ई पे जाओ और जो सबसे ऊपर जो लेटेस्ट पोस्ट यानी कि जो सबसे ऊपर की पोस्ट जी पे चटकीलो राजस्थान यो जो प्रोग्राम अबार जा रहे हो ना ई प्रोग्राम को नाम जी पे होलो ऊ पोस्ट पे जार कमेंट सेक्शन में ई स्कूल का खाना से जुड़ी कोई याद हो अगर था कि साथ दोस्ता से भी जुड़े रही वो मतलब वो खाना की कोई खास याद तो ते कर सको साझा माँ के साथ करवा के लिए माँ का नंबर 2200 और साथ ही साथ माँ की फोन वो FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। और अबार मने लागे छे कि कोई छे जो जुड़गा माँ की साथ तो देखा जा कौन छे जो जुड़िया छे माँ की साथ। हेलो
2: हाँ जी राम सिंह बोल रहा हूँ चाकू से।
1: हाँ जी राम सिंह जी बताओ
2: जी कहीं तक मैं जब बचपन में दूसरी क्लास में पता चला ना
1: हाँ
2: तो माँ जी दादी मने दे थी दो पराठा
1: अच्छा
2: और साथ में अचार कदे चटनी। मारे एक दोस्त तो सुरेंदर वो ले रहा हूँ तो रोटी मैंने क्या सुनने का ले रहा है तू रोटियां ले रहा है तो मैं क्या पराठा कौन ले रहा है क्या मैं दादी

0: રેડિયો પિંક સિટી 100.3 FM શું ચાલ રહ્યું છે ચટકીલો રાજસ્થાન ઓર અબાર દેખા છે ચટકીલો રાજસ્થાન મેં કુન જુડગા માકી સાથ કરવાને આપણી બાત હેલો
1: હેલો
0: હા જી નમસ્કાર
1: નમસ્કાર શંકર જૈન બોલું છું
0: હા જી શંકરજી બતાવો
1: હજી સ્કૂલ લાગી કાઈ વાત બતાવો સ્કૂલ લાગી તો વાત અલગ હોતી
0: કાઈ કાઈ વાત હોય છે તો કાઈ ખાવે છે યો બતાવો પહેલી તો अच्छा शंकर जी पहली तो देखो या तो था का रेडियो की आवाज आ रही छे या फिर आसपास से आवाज आ रही छे तो थोड़ा सा एक आड़ी आओ
1: ठीक है जी ते बोले लगे करे ना हाँ बोलो साहब
0: हाँ जी अब बोल बागे लिए तो
1: अच्छी बात छे
0: हाँ
1: तो पहली मैं माने रखा ना मैं पढ़िया करे जा
0: अच्छा
1: ये माँ आपने जो ना बड़ी चौपड़े पर जिस स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय पांच पीसा में एक सरदार जी आया करो जो पांच पीसा के अंदर वो छोला के अंदर अंदर ले आया करो जो टंकी में छोला वो में ब्रेड ने डाल दे के दोनों और वो में कर कर दिया करो जो
0: पांच
1: पीसा में दो मिला करो
0: काई बात छे
1: और एक माणस चौक स्कूल के नीचे एक वो पकवान वालो थो उन्हें में पकवान खाया करे चा तो वो चार ना आटा ना में आया करो उस जमाने में वो के साथ वो एक हलवो भी दिया करो चो
0: अच्छा
1: हाँ मीठो हलवो दियो चो और दाल पकवान दियो चो
0: चार ना आटा ना में
1: हाँ वो जमाने में जब बात चे कोई हमारा हिसाब से 77 की या 76 की बात किया
0: लेकिन चाराना और आठाना सुनरी है यहाँ लाग रहा है कि अच्छा ई में भी कहीं आ चे
1: और एक विधानसभा के सामने एक वो मोट मिले थे ना मोट वो बूढ़ी वो लगाओ जो ठेलो
0: अच्छा एक
1: 25 में मोट दिया करो जो
0: अच्छा या तो बात होगी लेकिन जो स्कूल में जब भाई दोस्तों के साथ खावे छा तो कोई को यहाँ हो सके छे ना कि जहाँ खुद को भाई कोई को अचार बहुत चोखो लागे छो कोई की कोई सब्जी अच्छी भी कोई अच्छे
1: ओ जमाना में तो काई ले आज अचार रोटी जाए करे थी कभी आलू की सब्जी ले गया यही जाए करे थी आज कोड़ जा आज का बच्चा तो यह दो लंच से तीन लंच से अलग-अलग चीजें दो जमाने एक लंच भी करो जो सिर्फ
0: बिल्कुल बिल्कुल जी यह बात है सही तो देखो या जो बात या तो बिल्कुल ही सही है और ई सब बातों पे देखो जब लंच की याद आई तो हमारा स्कूल की भी मने एक याद आ गई हमारा मतलब स्कूल में जो बहुत अच्छी हमारी सहेली थी कुलदीप तो उनकी जो भाभी थी वह सैंडविच अतरा चोखा बना थी कि मतलब कहीं बताऊँ आज भी याद करा तो यहाँ लगे कि वशा सैंडविच तो कोड़े भी चल जावा शायद वे कौन मिल सके अब क्योंकि वह बहुत चोखा बना ची आज माने सोचर लागे छे कि वहाँ को कत्तो बड़ो मन होलो और कतरो वहाँ में मतलब सब्र होलो मैं स्कूल में मतलब मैं कम से कम जतरी 8-10 सहेलियाँ छी मैं हर दूसरा दिन लगभग उन्हें खेचा तू भाभी ने खैर और माँ के लिए सैंडविच ले राजे फिर वो जो एक बड़ो कैसरोल हो छे है ना ऊ में भरर उनकी भाभी सुवारी सुवारी माँ सबके लिए सैंडविच बनाती और थे मानोला कोड़ने कम से कम 15-20 सैंडविच होता ओला ऊ में है ना और वे भरर ले राती और मतलब आया हो चो कि वहाँ की खुशबू इंटरवेल मतलब वो जो लंच हो चो उसे पहली पहली तो मतलब वहाँ का पेट में या लाग बा लाग जाओ चो कि अरे इतनी खुशबू आ रही है खा और कई बार तो आया हो चो कि टीचर को ना ही या वह पढ़ा रही है तो पछाड़ी बैठा चाहे तो बीच में ही मतलब आया हो चो कि इंटरवेल लंच से पहली तो वो कैसरोल जो है मैं सब चुपचाप खाता खाता खत्म कर दे चा और हफ्ता में कम से कम 2 बार तो वे सैंडविच वहाँ सबके लिए आवे ही आवे चा और आज भी मतलब जुबा पे जो कह सके चा ना वो स्वाद छे कि मतलब हाँ अब वशो स्वाद मतलब चाहे मैं खुद बनावा कोड़े भी खा जावा लेकिन वो वहाँ को प्रेम छो या जो भी छो लेकिन बहुत ही बढ़िया और वाह जो याद छे वह एक अलग ही याद छे तो था कने भी छे कोई ऐसी याद जो स्कूल का खाना की याद वो टिफिन की याद तो ते साझा कर सको जो माँ के साथ था की बात साझा करवा के लिए माँ की फ़ोन लाइन 2200 और माँ को FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM हेलो तो संपर्क होबा से पहली या से माँ को संपर्क कर गो लेकिन थे कर सको जो माँ के साथ संपर्क और बता सको जो था की खास याद।

0: સાથે સુન રહ્યા હો ચટકીલો રાજસ્થાન 100.3 FM માળે. કઈ તો ખાસ છે, અરે કઈ તો વાત છે.
1: Life is smile. Smile is good news. Good news is good to hear. Good to hear is soothing. Soothing bole to dil ka rishta. Rishta jo atoot hai. The bond which has no bend. Relationship which never ends. Radio Pink City 100.3 FM. Kuch to baat hai.
2: 11:22 और पूरा 39:40 सेकेंड. रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM शो चल रहा है चटकीलो राजस्थान. और चटकीलो राजस्थान में भाई जान आज बात हो रही है स्कूल का दिना मैं खाई गई वो खास खानो, यानी कि वो लंच, वो टिफिन और वो की जुड़ी खास यादा. और भाई देखो लंच खानो जो है उनसे जुड़ी माँ की यादा हमेशा खास ही हो छे. तो खास यादा माँ के साथ जो साझा करें वा थी सरस्वती. सरस्वती माने कहे कि भाई देखो कहीं छे कि मैं तो गाँव में पढ़े जा और माँ का स्कूल में कहीं हो चो कि भैया गांव में स्कूल छे घंटी बजी और मैं सब आप आपके घर चल जाओ छे खानो खावा के लिए. और खानो खाबा को जो टेम हो चो वो या तो 20-25 मिनट को हो चो, लेकिन मैं तो खार घर पे कोई काम हो कोई कोई तो आपका ढांडा ढोर चरा चरूर मतलब अशा काम कर करार भी पाछो ही घर आ चो. लेकिन बोले मैं घर ही लिए जा छी क्योंकि मारी दादी जो छे मैं जद भी जाती अरवा लूणी जो मक्खन हो छे ना वो काडर राखे छी. दादी छाछ वाछ बना लूणी काडर राखे छी. मैं जाती फटाफट रोटी चाहे बनेड़ी ताजा हो चाहे ठंडी हो और खूब सारो मारी दादी लूणी रखती और उन्हें खा छी. तो बोले मारी एक सहेली छी राधा. राधा ने मारा घर को लूणी बहुत चोखो लागे चो. तो वाह अम्मा क्योंकि रोज रोज ही दादी ने मन ऊ वक्त तो समझ में को ना आछी क्योंकि टाबर छा. तो मने यहाँ लागे छो दादी रोज रोज ही अतो मक्खन अतो लूणी खिला छे मन तो कौन खानो. तो राधा ने वो बहुत चोखो लागे छो. तो मैं यहाँ कहे छी कि राधा अँ करू ली मैं है ना दादी जत्तो सो भाई न माने ली अतो सो तो खा ले ली बाकी मैं थारे लिए ले आऊँ ली तू थारो साग बचार मेल जे. तो मैं कहीं करती घर जाती जो कोई काम अगर माँ बताती फटफट करती लूणी थोड़ा बहुत खाती बाकी कहती दादी मैं स्कूल में खा लेऊँ ली मैंने देर हो जा ली. और फिर लूणी तो मैं राधा ने खिला देती और ऊँकी साग में खाती. और ऊँकी माँ जो छे वह आलू की सब्जी बना छी सूखी ज़्यादातर आलू की ला छी. मैंने अति चोखी लागे छी कि काई बताऊँ. और एक बोले कैर को अचार जो राधा ले रहा छी तो बस मैं उन्हें रोज मारो लूणी पकड़ा देती और वह जो छे मैंने वह अचार या फिर वो जो आलू को साग छे वो. पर अब बोले अब तो कहीं छे कि पोता पोती होगा बवा भी छे आज तो बवा अति तरह का खाना बना छे जाको इटालियन कॉन्टिनेंटल तरह तरह का नाम छे. लेकिन बोले वो ऊँ लूणी को ऊँ आलू की सब्जी और कैर का अचार को जो स्वाद छे वो तो मैंने कोड़े भी कौन मिले. यह बात बिल्कुल ठीक छे कि भाई देखो वो स्कूल में लंच में इंटरवेल में भी खाई गई खाना की याद जो छे ना भी बड़ी खास हो छे. अब देखा छे कौन छे वहाँ की सन. हेलो.
3: हेलो मैम नमस्ते.
2: नमस्कार जी.
3: हाँ जी नमस्कार मैम. मैं जयपुर से बोल रही हूँ. मेरा नाम उषा है.
2: हाँ उषा जी बताओ.
3: हाँ मैम मैं ये बता रही थी कि मैं जयपुर में तो मेरा ससुराल है अजमेर में मेरा मायका है. और जैसे सिक्स क्लास में पढ़ती थी मैम तो बड़ा ही सिक्स क्लास की यादें सेवन एट तक की यादें मुझे बहुत अच्छी लगती है. जैसे इंटरवल होता था ना मैम जैसे घंटी बजती थी सारी सहेलियां चौक में नीचे आकर के और एक कैंटीन होता था. कैंटीन में मैम 25% चाराने की इतनी सारी चिप्स देते थे वो पूरा धोबा भर के यू का यू ही खाई भी जाते थे मैम. और वो रोल जो होता था ना वो 10 पैसे का.
2: अच्छा
3: तो भी क्या करते हैं हम भाई जी को पटा लेते हैं. और अच्छा। भाई जी को पटा के बोलते हैं कि मैं ना भाई जी आप हमें बाहर जाने दो ना हम 3-4 लड़कियां जाएंगी और 10 मिनट में आ जाएंगी. जैसे बाहर जाते हैं ना 5-6 ठेले खड़े रहते थे जिसमें इमली डांसरिया पता नहीं क्या क्या छोटी मोटी से मतलब कच्ची इमली पीली इमली डांसरिया अच्छा लगता था मैम 10 पैसे की.
2: हाँ और देखो मने लागे छे बात 10 पीसा की कोने बात यो छे कि ऊ वक्त जत्ता मन से मैं वो चीज खाया ना आज बड़ी से बड़ी होटल में महंगो से महंगा खाना में भी वो स्वाद को ना लो
3: स्वाद दिया है. और मैं अपने हस्बैंड को बताती तो इतने हंसते ही है मैंने कहा सिक्स में लेके इतने मजे किए टिफिन तो जानते नहीं तो मैं क्या होता है.
2: और मने लागे छे डांसरा ही आज का तो बच्चा जानता ही कौन वाला डांसरा कहीं हो छे
3: पाल से क्या होता है जंगल जलेबी क्या होती है.
2: हाँ
3: तो भाई जी मैम इतनी अच्छी थी वो बोला आज के जमाने से मैम बाहर निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है.
2: सच बात है बिल्कुल. देखो आप जमाना जमाना की बात है उषा जी बहुत चोखो लागो भाई था से बात करर. और सही बात है देखो ये डासरा ये फालसा ये सब की जो बात है जंगल जलेबी ये मन लागे छे ये खास याद है ना. जो स्कूल से जुड़े रही थे, अगर लंच से, इंटरवेल से, खाना से जुड़ी, था कने भी छे स्कूल से जुड़ी कोई खास याद तो थे साझा कर सको छो मां के साथ था की बात। हेलो,
4: नमस्कार जी।
2: नमस्कार।
4: नमस्कार, आपनो राजस्थान?
2: चटकीलो राजस्थान।
4: चटकीलो राजस्थान।
2: हाँ,
4: मैडम 55वीं बार में फोन लगाया।
2: कितनी
4: 55 बार
2: बार?
4: फोन लगा, 55 बार लगाया अभी मैंने और उसमें दो बार लग भी चुका था,
2: अच्छा
4: फिर कट गया, फिर भी मैं लगातार लगा रहा।
2: हाँ तो बिल्कुल, देखिए मैंने कही छे कि जद आपा पूरी खेचे ना कि पूरा मन से कोशिश करा तो भगवान भी मिल जा, फिर यो तो रेडियो पिंक सिटी को नंबर चे
4: कम से कम भी 24 साल के बाद नंबर लगाया दोबारा।
2: अच्छा तो भाई थाको तो बहुत बहुत दिल से स्वागत। और अच्छा पहली तो थाको नाम बताओ।
4: सुरेंद्र सिंह भाटी।
2: अच्छा तो सुरेंद्र सिंह जी 24 साल बाद थे फोन मिलाया कि
4: मिलाया? हाँ यहाँ कह दो मिलायो।
2: अच्छा 24 साल बाद मिलाया, इतना साल तक क्यों नहीं मिलाया भाई?
4: भाई रेडियो पिंक सिटी रोज सुना था लेकिन हमारी दुकान से।
2: अच्छा
4: फोन लगाते समय कोई ना कोई आ जाओ ग्राहक, तो बिना संभालना पहली जरूरी।
2: अच्छा तो पहली मैंने एक बात बताओ कि अच्छा तो आज जो फोन आज ऐशो काई होगो कि थे 55 बार फोन मिला लिया?
4: अजी वो मैटर ही चाल रहे थे भाई स्कूल में 25 पैसा में 10 पैसा में काई खावे था
2: नहीं नहीं नहीं बात या कौन है, ये तो लोग बता रहे थे कि 25 पैसा 10 पैसा में कहीं खा जा, मैं तो बात या कर रही थी कि स्कूल में देखो कहीं हो जा, जब मैं स्कूल जावे छा ने दोस्त के साथ वो जो लंच वो जो खानो खा छा इंटरवेल में है ना, उनकी जो
4: तो
2: याद छे वह एक अलग ही बात है।
4: मारी तो बहुत सारी याद छे जी।
2: हाँ जी बिल्कुल बताओ।
4: देखो मैं छोटो 5वीं 6वीं क्लास में, तो जब हमारी क्लास में 5-6 जना दोस्त में मिले रोटी खावे था लंच, तुम्हारी मम्मी तो दो पराठा का मायने अचार रखकर बिना गुट्टी मुट्टी कर दे देती थी, और वो जाता ही क्लास में पहले लंच से पहले निकल जाओ तो कोई ना कोई खा जाओ तो
2: या बिल्कुल सही बात है
4: क्योंकि वो स्वादिष्ट होता है ना कैरी का अचार को, तो तेल और मसाला और रोटी में जम जाओ तो
2: सही बात
4: है, और भी की खुशबू भावी सब में तो यही 4-5 दोस्त है जो मारो टिफिन तो सबसे पहली खा ली और सब लोग खा लेता, लेकिन भी मैं एक अमीर छोरो झुमा को सुधीर चौधरी नाम को, तो भी को टिफिन आओ तो बिल्कुल आखिर में गर्मा गर्म और बड़ो सारो।

0: मनखा की भी
1: तो मैं
0: वैल्यू
1: पचास
0: थी।
1: जो मैं 50 पैसा बचा लेता था।
0: हाँ
1: और मैं और मारो एक दोस्त तो सत्यनारायण, जो मैं दोनी कभी दाल मोठ खा लेता, कभी मूली खा लेता, कभी चूरण खा लेता।
0: बिल्कुल।
1: और तो दाल मोठ खावा में जो आनंद आओ तो जी बिके तो बात ही अलग।
0: बिल्कुल
1: तो एक,
0: बिल्कुल।
1: एक एक बार में भाई एक दिन वो खिला तो और एक दिन मैं खिला तो यार चलती रहती गाड़ी। तो 25-25 पिज्जा की मैं खा लिया एक बार। और आगा पेट कौन भरियो, टिफिन भी कौन ले आएगा। फिर मैं जब वापस क्लास में जा रहा था ना, तो रास्ता में माने 50 पिज्जा पड़ोड़ा मिला मिट्टी कमाए ने।
0: आई काई बात है, भाग खुल गया उस दिन।
1: भाग खुल गया एक दिन। और फिर हुई यहाँ जब एक खेल घंटी खत्म हो पा, सिर्फ 35-5 मिनट रह गई।
0: हाँ।
1: तो वापस भाग गया बार की ओर। फिर दाल मोठ खाया। और भी दिन आत्म तरफ हुई। 25 पिज्जा और मैं तरबूज का नमकीन बीज आजकल का टावर कहीं जाने। तुम्हारी उम्र तो होगी जी 54 साल अब।
0: अच्छा
1: तो बचपना की बात है, बात तो खूब से मैं करूँ ला तो फिर कोई दूसरा को नंबर कौन लागे तो।
0: हाँ, और फिर वो भी 55 बार में ला लो और मैंने उल्मो दे लो। बिल्कुल जी, वही देखो कहीं छे स्कूल की खाबा की तो मैंने लगे छे सच में बिल्कुल ही खास अलग ही यादा हो जाए ना। और वो खावड़ा को मजो ही मतलब मैंने लगे छे कि एक अलग ही स्वाद वो जो है ना आज मैंने लगे छे जब मैं बात कर रहा था तो वो स्वाद एक बार फिर से सबका मुंडा पे आई गो बोलो है ना। हेलो।
2: हेलो।
0: हाँ जी,
2: हाँ जी, मैं शंकर जैन बोलू छू।
0: हाँ जी शंकर जी, बताओ।
2: दोबारा बात कर सकती हूँ ताज़े?
0: हाँ जी करो, बताओ।
2: मैं दूसरी बात बताऊँ चाहूँ कि स्कूल की तो बता चुकी थाने।
0: हाँ बताओ बताओ।
2: देखो ये पहली बात तो यह है, चौपड़ को एक 85 वाड़ो थे चौपड़ को, तो उस जमाना में वो 2 रुपए की 5 85 दिया करो थे।
0: अच्छा।
2: और जयपुर में ऐसी 85 को नहीं मिली थी मोटी।
0: अच्छा,
2: मतलब इतनी मोटी 85 थी कि आदमी अंदर कौन घुसेगा मुंह। हाँ सही बात थी। और आज जो आज भी वो ठेलो लागत है।
0: अच्छा,
2: लेकिन आज उसका दोईता लगाओ थे, उसका जवाई भी उन्टे लगाओ थे छोटी चौपड़ का सरगा थोड़ी का सामने।
0: अच्छा,
2: आज उसका दोईता लगाओ थे, आज भी 20 रुपए की 4 85 दे रहे थे। तो उन 85 खाया करे क्या।
0: अच्छा, तो थे आज भी खाबा जाओ छोगी।
2: आज भी मैं उंडे खाऊं तू, मैंने उंडा की 85 बढ़िया लागत है आज भी, इतनी उम्र होगी मेरी।
0: काई बात है बिल्कुल जी।
2: बाजार में डोसा मिला करे छो।
0: अच्छा।
2: आज तो हो सकता वो 100 रुपया को हो।
0: हाँ।
2: जमाना में वो 5 रुपया को दिया करो।
0: ओहो।
2: बहुत बढ़िया तो,
0: बिल्कुल।
2: कंडा आपने देख रहे कोटी पे कचौरी वाला जो नाथ कचौरी वाली बहुत फेमस थी। वो जैसी कचौरी पूरे जयपुर में कौन मिली थी।
0: अच्छा,
2: दूर दूर से आदमी आ जा। और 25 रुपए की कचौरी दिया करो जो। मतलब आप बस सर्दी में होगी कचौरी खाओ ना।
0: हाँ।
2: तो आपने पूरा शरीर में पसीना ही पसीना आ जा, बहुत ही मतलब
0: अशो मसालो। तो वही बिल्कुल देखो खाबा से स्कूल का खाबा की कर रहे हैं। अच्छा मैं बात तो स्कूल का टिफिन से ऊ लंच से जुड़ी कोई खास छे याद तो ते साझा कर सको जो वहाँ की साथ था की बात करवा के लिए लाइना 2200-800 और वहाँ को FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। हेलो हेलो
3: हेलो। जय हिंद जय भारत।
0: जय हिंद जय भारत। कौन बोल रहे हो?
3: मैं माधुरी जैन बोल रही हूँ। बहुत ही खुशी हुई, काफी समय बाद मेरी बातचीत हो रही है। और स्कूल के जिस पर स्कूल की यादें दिला दी आपने। हम 5 लड़कियां होती थी, मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 से पास आउट हूँ और 11-12 की बात है। हम 5 लड़कियां ही थी, लड़कों के साथ नहीं खाती थी हम। 5 लड़कियां टिफिन लंच टाइम होते 5 वैरायटीज मिलती थी हमें। और कोई इडली ला रहा है, कोई परांठा चार ला रहा है, तो हम सब साथ मिलके शेयर करके खाती थी। तो 5 आइटम हमें खाने को मिलते थे रोज के।
0: क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ कि सहेलियां के साथ आज भी कदे खाओ चो कि कौन खाओ चो?
3: जी अभी संपर्क नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए सब, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 से थे तो किसके ट्रांसफर कहीं हो गए।
0: बिल्कुल। और उस वक्त फोन की अति सुविधा कौन सी है ना?
3: हाँ, उस टाइम फोन तो लैंड फोन था, तो उस टाइम तो हम लोग मेरे घर आना जाना भी होता था। बट अभी एक लड़की लता जी, लता मिली मेरी दोस्त, पर वो दिल्ली ट्रांसफर हो गया उसका।
0: तो बिल्कुल ये मिला मधु जैन जी, और मधु जैन जी कहते हैं कि भाई देखो स्कूल में जहाँ अच्छा वैरायटी मिला अच्छा, लेकिन याने रोज 5 तरह का पकवान खाबा ने मिले अच्छा।

0: बात है ना, बिल्कुल खास ही बात है। थाकने भी छे स्कूल का लंच से इंटरवल से जुड़ी खास याद तो साझा कर सको जो माँ की साथ था की बात। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे थे? कोड़े
1: मैं नीलम बोल रही हूँ,
0: से?
1: चौमुसू। चौमुसू,
0: अच्छा तो नीलम
1: अच्छा
0: बताओ, काई बताओ ला।
1: नीलम बताओ। मैं हमारा बचपन की बात शेयर कर बताऊं जो स्कूल
0: हाँ
1: की। जब मैं स्कूल का छोटा था, स्कूल का हो जाए, स्कूल की बारिश में समोसा बेचती थी, तो मैं रोज मम्मी से पॉकेट मनी ले और समोसा खावा जा। मेहमान बहुत अच्छा लागा था।
0: अच्छा तो थे था ना, रोज की पॉकेट मनी मिले थी।
1: मम्मी सब्जी के लिए पैसा देती मार्केट से, लेता जो सब्जी, और मैं समोसा खा ले जा रखता। मैं भी स्कूल में ही भी मैं पैसा दूं सब्जी।
0: अच्छा तो फिर सब्जी कौन ले जा? अच्छा तो डांट वाट कौन पड़े जी?
1: सब्जी में कम पैसा की ले जाओ जा, और मम्मी ने बोला जा कि मम्मी महंगी जा सब्जी।
0: तो ठाकू झूठ आज तक पकड़ो भी क्यों गए हो?
1: नहीं, फिर बाद में पढ़ाई खत्म हुआ बाद में, तो अब मैं मम्मी ने बोला था,
0: हाँ
1: मम्मी ने बहुत हंसी आ जाए।
0: बिल्कुल भाई, देखो ये जो खाबा से जुड़ी और स्कूल का खाना से जुड़ी तो मन लागे छे, बिल्कुल ये खास याद हो जाए है ना, कि यहाँ लागे छे कि अरे वाह कई बात छे। और स्कूल्स का खाबा से जुड़ी खास बात थे कर सको जो माँ की साथ, माँ की लाइना 2200-800। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: प्रीति जी, नमस्कार। 101 बार मिलाने के बाद फोन मिला, काउंट हमारा भी कीजिए।
0: आज सब मैंने उड़मो क्यों दे रहे थे?
1: और मोड़ो, ये मैं इस प्रोग्राम को एक बार तो बृहस्पतिवार महिलाओं के लिए कर दो,
0: हाँ
1: और एक बृहस्पतिवार आप खाली पुरुषों के लिए कर दो, है ना। सारा काम छोड़ के एक
0: हाँ
1: सौ एक बार स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ मैं अभी।
0: नहीं, बिल्कुल मैं था की बात मानू छू, लेकिन अब और मैं था से सबसे क्षमा भी चाहू छू जो लोग अति बार फोन मिला छे, लेकिन अब देखो कहीं छे कि भाई एक फोन लाइन छे और सब फोन मिला रहे छे, तो अब कहीं बता सका छा।
1: इसीलिए थोड़ी बातों को शॉर्ट करते हुए सभी को मिलना चाहिए चांस,
0: हाँ बिल्कुल, माँ की तो पूरी कोशिश रह जाए कि देखो सबने मौको मिले और सबने में शामिल
1: लेकिन
0: कर
1: कई
0: सका।
1: बार तो दो दो बार आ रहे हैं, तीन तीन बार भी आ सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। अच्छा, तो हम भी शुरू होते हैं बिना
0: हाँ
1: समय को गवाए। मेरा नाम ज्योति, चित्रकूट से।
0: हाँ जी हाँ जी
1: हाँ, मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो ये चाहती थी कि इंटरवल में घर नहीं जाए,
0: अच्छा
1: उसको मेरा साथ इतना चाहिए था। तो
0: हाँ
1: मैंने कहा भाई भूख लगती है, खाना खाने तो जाएंगे, 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट खाएंगे, 10 मिनट बाद वापस आ जाएंगे, इतने में इंटरवल पूरी। तो
0: हाँ
1: बोले नहीं, मैं लेके आऊंगी तेरा खाना।
0: अरे क्या बात है।
1: तो उसकी क्या भाई की शादी हुई थी,
0: हाँ
1: और उसको तो सुबह सुबह ऑर्डर दे देना कि भाई ये आज ये सब्जी बननी चाहिए, 4 रोटी जाएगी, 2 रोटी ज्योति की भी जाएगी। तो मैं जब तक स्कूल में पढ़ी उसी का टिफिन खाया,
0: अरे काही बात है।
1: और एक फ्रेंड और थी उसके घर में मेरे को पता चल जाता था कि गाजर का हलवा बन गया है
0: अच्छा
1: और उसको पसंद नहीं था,
0: हाँ
1: लेकिन मैंने कहा काम लेना है, काम करना है, होमवर्क करना है, तो गाजर का हलवा लाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से थे मेरे स्कूल के
0: बिल्कुल
1: दिन, और आज
0: बिल्कुल,
1: भी वो फ्रेंड्स मेरे साथ हैं।
0: तो मीठी
1: मैं रेणु
0: घूस
1: के
0: जो
1: घर
0: थे ले बचा है।
1: जी, तो मैं आज भी मेरी फ्रेंड रेणु के घर जाती हूँ, तो वो मुझे बिना खाना खिलाए भेजती नहीं है।
0: बिल्कुल, और ये कितनी खास याद छे जो मतलब घूस है ना जुड़े नहीं छे खाना
1: तो
0: से
1: नई
0: स्कूल
1: नई
0: से,
1: शादी हुई भैया भाभी की, और उसको ऑर्डर मिलता खाना बनाया जाए सुबह
0: तो वे
1: सुबह।
0: भाभी भी याद करती हो लिए आज भी?
1: हाँ बिल्कुल, बहुत प्यार करती हैं, आज भी बहुत प्यार करती हैं। तो इस तरह से था। और हाँ, जब थोड़े और बड़े हुए तो ये आलू वगैरह सब छोड़ दिया, कैंटीन शुरू हो गई स्कूलों में, कॉलेजों में। तो एक 2 रुपए की उस टाइम ऑरेंज बार आइसक्रीम आती थी, और 2 रुपए का ही कोफ्ता आता था, तो
0: हाँ
1: आलू नहीं खाना है क्योंकि चेहरे पे पिंपल्स आ जाएंगे, बहुत ध्यान
0: अच्छा।
1: रखा था। कभी आलू को टच ही नहीं किया,
0: अरे क्या बात है।
1: सच में। और भगवान की दया से आज टनाटन है चेहरा। तो ऐसे करके ये ऑरेंज बार से ही अपना करते थे, और भी अपने घर आ जाते, फिर जो घर में बनता हुआ खाना होता था वही खाते थे।
0: बिल्कुल जी, और बहुत ही चोखो लागे जो कि जी था से बात कर रहे भाई। देखो स्कूल की याद, स्कूल का उन खाना से जुड़ी याद, मतलब मन लगे छे बिल्कुल ही एक खास एहसास जो हो छे ऊ की साथ। आप देखा चा कौन छे माँ की साथ? हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार,
1: राधे देव।
0: राधे राधे जी, कौन बोल रहे छे?

0: हाँ महेश जांगिड बोल रही थी मैडम, जोटवाड़ा से।
1: हाँ जी महेश जी बताओ।
0: मैडम मैं माणक चौक स्कूल में पढ़े जब तो पांच दोस्त जा तो लंच हो जो जरा एक दूसरे की खाना ही खाओ जो पांच टिफिन रख देगा और आंखें बंद कर रखे जा भाई जिन्हें जी को हाथ में आगू ने भी वही खा ले
1: मतलब आंख में चोली भी खानो भी।
0: हाँ दोनी जिनको टिफिन हाथ में आते तो कोई नहीं वही खातो। अब दूसरी बात कही जे मैं तो दाल बाटी चूरमा पसंद जे मैंने। अब आज से नाम ले दिया मैडम को तो वह बोली कि आसान है दाल बाटी चूरमो बनार खिलाऊंगी।
1: आई काई तो बात है।
0: नाम आंको रेडिया में।
1: हाँ।
0: और प्रीति जी ने भी नो तो दे दीजो। ठीक है उनका।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी, मौको मिलियो तो जरूर आवाला। और जुड़ाला था के साथ, लेकिन अब आर थे सब जुड़ सको छो वहाँ की साथ, जुड़वा के लिए वहाँ की लाइना 2200-800 और साझा कर सको छो स्कूल स्कूल में वो टिफिन वो लंच से जुड़ी खास बात। हेलो।
2: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: मैं इंदु बोल रही थी जगतपुरा से।
1: हाँ जी इंदु जी बताओ।
2: हाँ तो मैंने था तो बहुत उत्साहित कर दिया वो बात करा करा के
1: कई
2: दिन याद दिला दिया। तो मैं तो कहीं से बचपन में तो मैं पड़ोस का ही पड़ा।
1: हाँ।
2: तो पूरी सीसीटीवी कैमरे लागे रहे थे घर पे तो गिलबा डुलबा कोई काम करना।
1: अच्छा।
2: और दूसरे फिर स्कूल में आया हाई स्कूल में।
1: हाँ।
2: तो को माया ना जो पताशी वालों ज्यादातर।
1: अच्छा।
2: हमारी सहेलियां खिलाड़ी थी।
1: अच्छा।
2: है ना तो पताशी को चस्को लाग गए और ये समोसा कचोरी तो मिल जाओ तो बढ़िया। और फिर कोचिंग भी करे था तो दिन में कहीं करा तो समोसा मिल गया नंबर आ गया झपट्टा झपट्टी में तो फीस से नहीं तो वो भी खत्म। फिर एक बबल गम की बबल गम मुंह में लेट बैठता भूखा पेट का ही करता वो भी मास्टर सो गिद्ध दृष्टि डालता जैसा मुंह में रखती पता नहीं कहीं और पता लग जाता मुंह में लेट बैठी है खड़ो कर दो उठ जा और थूक रहा राम और माना नींद का छोटा था साला सुबह स्कूल में पढ़ो शाम को कोचिंग में पढ़ो इसलिए पता नहीं होना चाहिए पता लाज तो आज तो समोसों भी कौन बबल गम तो काले बाद ऐसा अनुभव हो रहा है। और सच्ची बताओ ना मतलब कैंटीन से तो बहुत ही रोच है जहाँ भी पढ़वा गया वहाँ भी स्पेशल चाय वाय का बड़ी हाई स्कूल में गया बीएड बीएड में तो कैंटीन वाला अपने साथ खुद मारी चाय बना तो बोले जी कहिया तो पियोगी यार हमारी चाय में से इससे बताओ नहीं तो पहली बना रख दो मैडम आपके लिए दूध आया आपके लिए चाय बनाई मैंने पी के आया
1: काई बात है मतलब थे अपनी जगह बना रखे चाहे। बिल्कुल जी बड़ी चोखी सी बात तो भाई थे भी कर सको जो थे था का मन में जुड़ी वो स्कूल का लंच वो इंटरवेल खाना से जुड़ी कोई बात अगर छह था के साथ तो वहाँ की लाइना 2200-800 और वहाँ को एफपी पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। हेलो नमस्कार।
3: नमस्कार
1: नरेश जी थोड़ो सो थे एकाड़ी आओ अगर शोर हो रहे हो चाहे तो कि आस पास ने था के
3: आवारी
1: है। हाँ जी कोड़े से बोल रहे हो नरेश जी।
3: हाँ जयपुर गांधीपत वैशाली नगर।
1: हाँ जी बताओ।
3: हाँ तो स्कूल की जब बात है तो मतलब मैं पढ़ता मेरी बहन पढ़ती थी स्कूल में तो लंच के अंदर हमसे समोसे समोसे मंगाती थी तो समोसे मतलब उसकी फ्रेंड ही मंगाती थी मेरी बहन की दोस्त वगैरह सबसे पैसे ले लेता था मैं उसके बाद फिर क्या दुकान से जाने के बाद वो समोसे देते थे पांच सात तो समोसे के जो कोने आते हैं मतलब ऊपर का और नीचे के कोने कोने वो खा रहा था सारे पांच सात समोसे और वो पैक करा के उन्हीं को दे देता था कि लंच तो तुम खा लो।
1: नहीं तो मतलब एक बार वहाँ के साथ चोट हुई होली दो बार हुई होली हर बार
3: हर बार हर बार हर बार
1: और फेर भी थाने पीसा फेर भी दे दे थी
3: वो तो बहन रह गई ना देना तो पड़ता है कौन लाता कौन लाता स्कूल में।
1: तो भाई या तो छे बिल्कुल ही मजेदार सी बात तो थकने भी छे कोई स्कूल का लंच से टिफिन से जुड़ी खास बात तो थे साझा कर सको जो वहाँ की साथ लाइना वहाँ की 2200-800। हेलो
4: राम
1: राम जी कौन बोल रहे थे।
4: मैं शंकर लाल बोल रहा हूँ लालपुरिया जी बोल रहे।
1: हाँ बताओ शंकर जी
4: स्कूल की बात हम यहाँ मैडम के बहुत मास्टर की रोटियां खा जाओ
1: हो
4: मैं चालता चालता

0: ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਹਮ ਕਲਾਸ ਮਤ ਲਾਓ ਜੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕੋ ਖੋਲ ਕਰ ਅਬ ਸਬਕੇ ਸੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਓ ਜੋ ਤੋ ਯੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਜ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪਤਾ ਪੜ ਗਿਓ ਜੋ ਮਨ ਬਸ ਹਮਨੇ ਬੁਲਾ ਕਰ ਮਨ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਖਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਖਾਏ ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੋ ਅੱਛਾ ਛੂਟੇ ਬਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਏ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੈਡਮ ਵੀ ਟੇਬਲ ਪਰ ਖੜੋ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ੋ ਪੀਟੋ ਅਸ਼ੋ ਪੀਟੋ ਦਾ
1: तो भाई देखो या तो बिल्कुल सही बात है कि थे मास्टर जी का लंच पे नजर रख रहा था और उन्हें खा भी गा तो आगे जारी रह लो यो प्रोग्राम चटकीलो राजस्थान साथ रहो सुनता रहो रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
2: तुमने भरोसा दिलाया मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बांट
3: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बांट नहीं है
2: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना
3: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना
4: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बांट के लिए 131-132 आतिश मार्केट जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अपना विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: गुलाबी शहर,
3: शाम गुलाबी, सहर गुलाबी, गुलाबी है गुलाबी शहर।
2: गुलाबी चैनल,
4: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
2: गुलाबी हम और आप,
3: गुलाबी
5: रेडियो पिंक सिटी।
2: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: बैठे सुन रहा हो चटकीलो राजस्थान 100.3 FM माला काई तो खास छे और काई तो बात छे।
1: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM प्रोग्राम चटकीलो राजस्थान और चटकीलो राजस्थान में भाई जान बात हो रही छे आज स्कूल से जुड़ा वो टिफिन वो लंच की और वहाँ से जुड़ी खास यादा की। तो आप देखा छा कौन जो जो जुड़िया छे वहाँ की साथ। हेलो
2: हेलो
1: नमस्कार।
2: नमस्कार मैम।
1: हाँ जी कौन बोल रहे छे?
2: मैं बोल रही थी राज जी पनारगढ़ के लगन से।
1: हाँ जी राज जी बताओ।
2: मैं ये कह रही थी पहली मैं जो स्कूल जाओ था मैं पढ़ा था रतखाना स्कूल में जो अभी होगा ना हॉस्पिटल गणगौरी हॉस्पिटल होगा वहाँ पढ़ा था। तो मैं कही हुई माँ के साथ में मैं दोस्त टिफिन दे रहा है जो तो मैं उन्हें बोला आज तो मैंने खिला दे मैं काल खिला दिला। बोला नहीं सनम्मा खिलाऊंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बोला नहीं यार सारे साथ यहाँ कौन करूंगा खिला तो सही। तो मैं तीन जना बैठे रहे तो वो माने टिफिन खिला दे जो तो मैं दूसरे दिन स्कूल ही कौन जावा था। तो उसके साथ चोट हो जाओ जी वो माने जब भी रास्ता में मिले ना तो यही बोले जो देख तो मैंने भूखो मार दिया जब। बोला नहीं यार मैं भूखो कौन मार चाल तू तेन भूशाल भाई का समोसा खिलाऊ। तो वो टाइम का आठ नाम एक समोसा आओ जो तो आठ नाम समोसा उन्हें तसल्ली हो जाओ हाँ भाई मारो टिफिन अब आप वो

0: भी वो मिला था ना मैंने जो रास्ता में, आज भी आई बोलते ओए टिफिन छोड़ जा रहे थे, तो मैं उन्हें बोले ओए समोसा रुक जा, अगर टाल जा
1: बिल्कुल
0: पूछा अगर रुक जा।
1: हाँ, तो यह बिल्कुल कितनी बढ़िया खास चीज आज है ना।
0: हाँ जी
1: हाँ, और नरेश कुमावत जी बगरू से महाशय जुड़िया, और वे खेचा कि जद दे खावा पीवा की बात करिया तो बोले महारा टिफिन में राई छाछ की मिर्ची जो छे हमारी दादी 2 बार बना ची, और वह हफ्ता में 2 बार राई छाछ की मिर्ची महारा टिफिन में जा ची। अब एक दिन क्या ही हुई हो कि क्लास की मैडम ने भी खिला दिया और मैडम ने पसंद आ गई, तो बस उ दिन जब राई छाछ मिर्ची महारा टिफिन में जा ची तो अलग सु मैडम के लिए भी जा ची, मतलब जद जद नरेश जी के लिए जावे ली तो मैडम के लिए भी जा ले ली, और आज भी सप्ताह में 2 बार घर में वाई राई छाछ की मिर्ची बने छे। बिल्कुल कहीं बात छे, मतलब स्कूल का ऊ खाना की ऊ स्वाद की जो बात छे थे आज भी उन्हें याद रख रहा चो है ने। और अब देखा छा कौन छे जो जुड़गम हाकी इंसान। हेलो, तो यहाँ से तो वहाँ को संपर्क टूट गो, लेकिन थे वहाँ के साथ कर सको छो संपर्क। संपर्क करवा के लिए वहाँ की लाइना 2200-800। और आज जो हो रही छे बात, वह बात छे कि स्कूल में वे जो खास खानों, वो टिफिन, वो लंच की उनसे जुड़ी खास यादा, अगर छे था कने भी कोई ऐसी खास याद तो थे साझा कर सको छो वहाँ के साथ था की बात। हेलो हेलो,
0: हेलो
1: हाँ जी नमस्कार।
0: हेलो
1: हेलो, हाँ जी नमस्कार,
0: नमस्कार, अरुण
1: कौन बोल रहे थे? हाँ
0: वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ
1: जी बताओ।
0: जी मैडम,
1: थे कोड़े नंबर मिला है छा, मने लागे छे कि गलत आदमी को गलत जगह नंबर मिल गो, लेकिन बहुत सारा लोग जो माने अतरी बार फोन मिलाया, जया कि ज्योति जी कहया और सुरेंद्र जी कहया कि 55 बार में फोन मिलाया या 101 बार फोन मिलाया, तो भाई था सगड़ा ने जत्ती बार भी धन्यवाद कहवा कि अतरा सबर के साथ थे अतरी बार फोन मिलाओ छो और अतरा ही मन से जुड़ो छो, और वे सब लोग जो जुड़े छे आपको समय दे छे वहाँ सबने बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये भी छे एक खास याद जो जुड़ेड़ी छे रेडियो पिंक सिटी के साथ। हेलो
2: हेलो
1: नमस्कार,
2: नमस्कार मैम
1: कौन बोल रहे छे?
2: जी, मैं सारिका सैनी बोल रही हूँ बेनार रोड से।
1: हाँ, तो सारिका बताओ स्कूल का टिफिन की लंच की कशी छे याद जो थे साझा कर बचाओ छो वहां के साथ।
2: मैम वैसे तो करीब करीब सबका यही रहता है, वही सब एक दूसरे का टिफिन शेयर करके खाते हैं, लेकिन मारो थोड़ा अलग छो।
1: अच्छा,
2: मारो यहाँ क्योंकि मैं 4 फ्रेंड्स थी, तो मैं स्कूल जब पास में जो तो एक दिन चारू एक जगह एक जगह जाओ थी, दूसरे दिन दूसरा जगह, तीसरे दिन तीसरा के एक
1: अच्छा।
2: दूसरा के घर खा बजाओ था।
1: मतलब कि थे ये सोच लिया अच्छा भाई पार्टी करनी चाहिए सबने रोज रोज, तो चलो घर पे ही कर लिया है।
2: हाँ बिल्कुल, फिर जब स्कूल दूर हुए हो
1: हाँ
2: तो यहाँ चूंकि एक दिन मतलब एक सहेली के घर आकर सबको टिफिन आते, दूसरे
1: अच्छा,
2: दिन दूसरे और तीसरे दिन तीसरी और चौथे दिन चौथी के।
1: ओहो काई बात छे, बिल्कुल भाई यो तो बिल्कुल ही अलग बात छे है ना जो थे बताया।
2: एक दूसरा की फ्रेंड्स की पसंद को खाना बना के देखती,
1: अरे काई काई बात छे, वाह सहेलियां से आज भी बात हो छे।
2: बिल्कुल 200 तो होते, 200 दूर गई।
1: अच्छा, तो भाई देखो स्कूल, स्कूल को वो खानो, वो लंच, वो इंटरवेल है ना, कितनी खास अलग सी छे वा बात और वा याद। तो अगर था कने भी छे ऐसी कोई बात तो थे साझा कर सको जो वहाँ की साथ करवा के लिए वहाँ की लाइना 2200-800 और वहाँ को FBPH रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। तो आप देखा चा कौन छे वहाँ की साथ। हेलो
3: हेलो। हाँ पीजी जी नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे छे?
3: हाँ मैं रणजीत मारवाड़ बोल रही हूँ जयपुर से। हाँ
1: हाँ जी बताओ।
3: ताको समा बहुत ही बढ़िया लगे छे सारा प्रोग्राम, तो बढ़िया ले आओ छो ने मजे आ जाए छे। गुरुवार ने बस यहाँ इच्छा हो जाए बस साथ में समझा रहे हो।
1: अच्छा,
3: और अच्छा मन तबियत करो छो ने अच्छा लगे छे, बहुत ही बढ़िया।
1: बिल्कुल जी, थाने बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बताओ।
3: हाँ तो बोल रहे तो कही स्कूल जाता था ना, अब वहाँ तो आप तो हमारी उम्र 50 साल 60 साल की होगी, पर स्कूल जाता था जना बर्फ का घोड़ा और आइसक्रीम मिलती थी, जो थप्पड़ छो यहाँ थप्पड़ लगाता था ना तो आइसक्रीम आती थी, जब तक जोर से थप्पड़ लगाता तो 4-5 आइसक्रीम निकल जाती थी कुल का
1: अच्छा
3: बर्फ वाली, तो खाता था अब एक ही खावा था पाता पा, तो अब यार दोस्त ने यार कुन खुआवा यार 5 निकल गई 4 निकल गई, कहीं भी कौन निकलता जो
1: हाँ हाँ हाँ
3: बर्फ का गोला खाता तो वो

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे रेडियो पिंक सिटी। अब 12 बजने को है, आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद आप जुड़ेंगे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एबीवीपी के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24,061 पर था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम।

0: यादों की महफिल।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देवदर्शन

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आपकी कसम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम यादों की महफिल। खिलौना फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज़।

खिलौना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आज है जाने माने अभिनेता संजीव कुमार का जन्मदिन। अब आपको सुनवा रहे हैं दस्तक फिल्म का ये गाना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत, आवाज मदन मोहन की।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की आवाजों में ये गाना फिल्म पति पत्नी और वो।

0: खटखटाया, लगता है कोई आया।
1: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीज़ों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विधाता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुरेश वाटकर अनवर और साथियों की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का था और फिल्म थी जिंदगी। गृह प्रवेश फिल्म का गाना सुलक्षणा पंडित की आवाज, गुलजार के बोल कनू रॉय का संगीत है।

0: आप सुन रहे थे हमारी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम 100.3 MHz पर। ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। दिन का 1 बजने को है। आप प्रादेशिक समाचार होंगे, उसके बाद आप फिर से सुन सकेंगे हमारी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। इससे दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम

माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों ने शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। संयुक्त घोषणा पत्र के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों और शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव ने जयपुर में समीक्षा बैठक की। उन्होंने जर्जर विद्यालय भवनों का निरीक्षण करने तथा मरम्मत निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से विद्यालयों का फील्ड निरीक्षण कर फोटो सहित प्रगति रिपोर्ट भेजने की बात कही। उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जैसे अधिक वर्षा वाले जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। राज्य में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता 2026 UCC पर आमजन से सुझाव लेने के लिए जयपुर में कल से संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। दो दिन की ये जनसुनवाई में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। जनसुनवाई के पहले दिन जनप्रतिनिधि, विभिन्न धर्मों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता, शिक्षाविद और विभिन्न सामाजिक संगठन सुझाव दे सकेंगे। अगले दिन आम नागरिकों से सुझाव मांगे जाएंगे। सरकार ने सुझाव देने के लिए UCC पोर्टल भी शुरू किया है। नागरिक व्यक्तिगत रूप से या किसी संस्था की ओर से भी अपने सुझाव दे सकते हैं। गृह विभाग ने लोगों से नीति निर्माण की इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। राज्य GST विभाग ने कर चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जयपुर और पाली में एक समूह की 5 फर्मों पर कार्रवाई की है। विभाग के अनुसार प्रारंभिक जांच में पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 35 करोड़ रुपए की कर चोरी की आशंका सामने आई है। ये फर्म्स मेहंदी पाउडर, मेहंदी कोन, हेयर कलर और अन्य सौंदर्य उत्पादों के निर्माण और कारोबार से जुड़ी हैं। विभाग की ओर से मामले की विस्तार से जांच की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से SI भर्ती 2021 की पुनः परीक्षा के लिए आवेदन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग के अनुसार आगामी 20 सितंबर को होने वाली इस परीक्षा में मूल भर्ती के सभी अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से शामिल होने की अनुमति दी गई है। अभ्यर्थी 22 जुलाई तक अपने आवेदन में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे। ये व्यवस्था राजस्थान उच्च न्यायालय के 2 जुलाई के अंतरिम आदेश की पालना में की गई है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्तियां फ्रीज की हैं। पुलिस के अनुसार ये संपत्तियां मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई थी। जांच के दौरान 2 आरोपियों की चल और अचल संपत्तियों का वित्तीय परीक्षण किया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। सक्रिय मॉनसून में से पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं भारी बरसात हुई। वहीं राज्य के पश्चिमी भागों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक 91 मिलीमीटर बरसात चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर में दर्ज की गई। इसके अलावा भरतपुर जिले के बयाना में 90 मिलीमीटर, पहाड़ी में 70 मिलीमीटर तथा धौलपुर जिले की बाड़ी और बारां के छबड़ा में 60-60 मिलीमीटर पानी बरसा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

प्यासा फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था। हमारा सवाल ये था कि कौन है हीरो हीरोइन। गुरुदत्त और माला सिन्हा, बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दे दिया। और आज गुरुदत्त का जन्मदिन है, संजीव कुमार का भी जन्मदिन है। संजीव कुमार के बहुत सारे गाने हमने यादों के महफिल कार्यक्रम में सुना है, लेकिन गुरुदत्त के नाम ये गाना था। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज उन्हें हमें याद करना चाहिए, लेकिन आज जो जो गाने हमने चुने हैं वो आँखों से जुड़े, लेकिन आज की इबारत में जो शब्द हैं उन शब्दों से आपको गाने चुनने हैं, तो ज़रा गाने चुनकर हमें बताते चलिएगा। फिलहाल हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी की आँखों को पढ़ना भी एक कला है, क्योंकि शब्द भले ही धोखा दे जाएं, पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। खुशी से भरी आंखों में एक चमक सी होती है, उदास आंखों में नमी कुछ भारी पर होता है, मानो बिना बहे आंसुओं का बोझ उठा रही हो। कभी ये इशारों में बात करती हैं, लेकिन रहस्यमयी होती हैं वे आंखें जो शून्य में खोई रहती हैं। आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि कब कैसे किसी की आंखों की परिभाषा आपने समझ ली, और कब कैसे किसी की आंखों के नूर बन गए। और ये कहा जाता है ना कि अरे वो तो मेरी आंखों का तारा है, ख़ास तौर से अपनी संतान के लिए। तो आप बताइए, आपकी आंखों का तारा कौन है, आपका बेटा या बेटी या दोनों? और आप किसकी आंखों के तारा हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र? बताते चलिए। फिलहाल सी आई डी

गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थीं। जानिसार अख्तर के बोलते हमने पूछा भी था आपसे सवाल, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने सही लिखा है। संगीतकार थे ओपी नैयर, फिल्म सीआईडी और देव आनंद शकीला। हमने ये भी आपसे सवाल पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है कि घर से किसी प्रियजन का बिछड़ना या अचानक गुमशुदा हो जाना रात भर जागने को विवश कर देता है। हर एक पल उसकी चिंता बनी रहती है, रातों की नींद और दिन का चैन छिन जाता है, मन हर पल बेचैन रहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये वाकई बहुत ही खूबसूरत आज की इबारत है। आंखें दिल का आईना होती हैं, जो बात हम जबान से नहीं कह पाते वो बातें आंखें पलक झपकते ही कह देती हैं। हिंदी फिल्म जगत में कुछ ऐसे बेमिसाल अदाकार हो चुके हैं जिनकी आंखें बोलती हैं, चाहे वो खुशी के आंसू हो, गहरा दर्द हो या फिर बिना कुछ कहे जताया गया प्यार हो। दिलीप साहब, गुरुदत्त जी, अमित जी, मधुबाला, मीना कुमारी ऐसे कलाकार थे जो उपरोक्त कही गई भावनाएं बिना कुछ बोले ही अपने आंखों से बयां कर देते हैं। वैसे आम जिंदगी में भी लोगों की, कुछ लोगों की आंखें बोलती हैं, कुछ लोग जो झूठ बोलने के आदि होते हैं उनकी आंखें उनकी बातें छुपा लेती हैं। तो अपनी आंखों को पारदर्शी बनाए रखिए। फिलहाल सुनिए अनारकली फिल्म का ये गाना। अब ज़रा बताइए कि इसे लिखा किसने है, यानी गीतकार का नाम आपको बताना है और संगीतकार का नाम।

हेमंत कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और फिल्म थी अनारकली। और हमने आपसे पूछा था कि आप बेटी और बेटों में से कौन आपकी आंखों का तारा है, तो कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि बेटों से ज़्यादा बेटी आंखों का तारा होती हैं। क्या बात है भाई। और हमने आपसे ये भी अब पूछा है कि किसके लिए आप रात भर जागे, बताइए क्या आपके लिए कोई रात भर जागता है। कई बार ऐसा होता है कि हम आपकी संतान कहीं बाहर है, पढ़ाई के लिए गई है, नौकरी पेशे के लिए, तो आपकी आंखों में नींद नहीं है, चिंता में कुछ, जब ख़ास तौर से ऐसे मौसम बदलते हैं, बारिश तेज़ होती है, तो माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं कि अरे इतनी बरसात हो रही, पता नहीं है हमारी संतान किस हाल में होगी। अब तो फ़ोन एक माध्यम है जब आप फ़ोन करके हालचाल पूछ सकते हैं, लेकिन कई बार रात को नींद उछड़ जाती है, आप चिंता में खो जाते हैं, कई बार बिन बात भी, बिना किसी कारण आप जागने लगते हैं। तो ऐसी जागरण वाली बातें आप बताइए, किन बातों पर आपकी नींद टूट जाती है और आप जागरण करते हैं, जागते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से, हालात बदल बदल गई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आंखें हर आत्मा की खिड़की होती हैं, जो हर नज़रिए से एक कहानी बयां करती हैं, दुख में ये आंखें रिसती हैं और गुस्से में सिकुड़ जाती हैं, लेकिन हमें ये झूठ भी बोल सकती हैं क्योंकि ये धोखेबाज भी होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे खूबसूरत देन है आंखें इंसान के लिए, वो आंखें जिससे हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। इन आंखों की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि ये अपनी खुशी दुख सबसे पहले व्यक्त करती हैं। इंसान शब्दों से तो बाद में बताता है, पर उससे पहले ये आंखें बयां कर देती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मी दुनिया में दो अभिनेताओं के नाम लेना चाहूंगा, दिलीप कुमार प्राण, अभिनय में ये हाथों या शरीर से जितना अभिनय नहीं करते थे, उतना सिर्फ आंखों से अभिनय करते थे। कई बार निर्देशक और कैमरामैन सिर्फ इनके चेहरे का क्लोजअप लेते थे और पूरा सीन सिर्फ इनकी आंखें बयां कर देती थीं। चलिए अब फिर एक जागने वाला गाना है, तो फिर मेरा सवाल यही है कि बताइए आप किसके लिए कभी जागे, आपके लिए कौन जागरण किया रात भर। फिल्म बहुरानी, गीतकार का नाम बूझिए और संगीतकार का नाम, लता मंगेशकर की आवाज़।

बहुरानी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत। हमारे श्रोताओं ने ये सही जवाब हमें दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आंख की दुनिया संवेदना की दुनिया है, सुंदर मधुर जीवंत संवेदना जो हमारे मन प्राण में बसती है, अक्सर वो आंखों के रास्ते बह निकलती है, सुख या दुख आंखें बरबस छलक जाती हैं, ये संवेदना ही लय बनकर हमारी आत्मा तक पहुंचती है और गीत बनकर मुखरित होती है। तभी तो शैलेंद्र जी लिखते हैं, जाने कैसे सपनों में खो गई आँखियाँ और गुलजार तो दो कदम आगे बढ़कर आँखों में महकती खुशबू बसा लेते हैं। रचनात्मक लोग जिंदगी में डूबकर आँखों से भावनाओं का सच बयां करते हैं। आँखें दिल का आईना है और हमारी सच्ची साथी भी, सुख या दुख कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमारे साथ ही हंसती हैं। और हमने आपसे पूछा था जब बहुरानी फिल्म का गाना सुनवाया कि आप किसके लिए जागे, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी माँ का ब्रेन हैमरेज हुआ था और हॉस्पिटल गई थी, तो हम पूरी रात जागे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के जो शब्द हैं, आँखें सपने रोशनी चमक आईना जादू चांद नयन हो सकते हैं। भाई गाने भी तो सुझाते चलिए कौन से गाने हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये आँखें हैं जो भरी सभा में भी बहुत सारी हरकतें कर जाती हैं, बोलती हैं, नाराज़ होती हैं, रीझती हैं, खिन्न होती हैं और शर्माती भी हैं, ख़ास तौर से जब आप इश्क में होते हैं, प्यार में होते हैं, तो आँखों आँखों में बातें हो जाती हैं और दो लोगों के बीच जो बातें होती हैं तीसरे को पता भी नहीं चलती हैं। लेकिन हाँ, जब इश्क मोहब्बत में आ पड़ते हैं तो नींद भी गायब हो जाती है। तो बताइए कि क्या कभी आपकी नींद गायब हुई है किसी के लिए? सुनिए ये गाना और हमें बताइए कि इसमें कौन है हीरो हीरोइन। साथ में ये भी बताइए कि कब किसके लिए आपकी नींद टूटी और आपके लिए किसकी नींद टूटी, और नींद वाले कौन से गाने आपके जहन में इस समय कौंध रहे हैं।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 फिल्म का गाना हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया सुनील दत्त शकीला और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं और हमें ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं, मतलब हम जो सवाल पूछ रहे हैं त्वरित जवाब आप दे रहे हैं साथ साथ, ये नहीं कि पहले से टिप्पणी पोस्ट कर दी है, तो ये तब हमें और अच्छा लगता है कि जब आप लगातार शामिल रहते हैं इस कार्यक्रम में। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों की बातें यादों की बात चल रही है, जब मैं आर्मी की भर्ती दी थी तब मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, उस दिन रात भर मुझे बेचैनी थी, सुबह 6 बजे रिजल्ट देखा तो उस दिन खूब रोया था और आंसू आंखों में होते हैं। तो हमने आपसे पूछा था कि कब आप जागे थे, कौन सा वो दिन था किसी के लिए या कोई लम्हा, तो इसके जवाब में हमारे श्रोता लिख रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे लिए रात रात को मेरी माँ जागती थी जब पढ़ाई कर रहे थे तब भी और जब बीमार होते थे तब भी। एक श्रोता ने लिखा है कि गिटार के साथ बढ़िया ग्रुप वायलिन बहुरानी फिल्म में सजन तुम सो जाओ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले मम्मी हम सभी भाई बहनों के लिए जागती थी और अब हमें पता चला कि मम्मी पापा हम सभी के साथ कितना किया, जब मेरा बेटा हैदराबाद गया तब आंखों में आंसू आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो नई बहू आई तो बहुत देर तक जागते रहे, गर्मियों के दिन छोटी रातें, ऐसे में पत्नी हमारी बहन के साथ गप्पे मार रही थी, इसके बाद माँ के पैर दबाने लगी, किससे कहानी में रात 2 बज गए, गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन संस्कार ऐसे कि हमारे घरों में है कि पाँव के पायल की आवाज़ भी न मालूम पड़े। खैर एक श्रोता ने लिखा है कि एक रात मेरी तबीयत खराब थी, उल्टियाँ हो रही थी, तब मेरी बेटी सारी रात मेरे पास बैठकर जागती रही। एक श्रोता ने लिखा है कि हम बच्चों के लिए तो कई बार जगे रात भर और कई बार तो बच्चे पढ़ने जाते थे तो रात भर जागकर उनके ले जाने के लिए खाना बनाया ताकि वो ट्रेन और वहाँ जाकर घर का खाना खा सकें, और कभी किसी के इंतज़ार में भी जगे और इसलिए भी सुबह जल्दी ट्रेन है तो कहीं छूट न जाए, बेटी परेशान न हो जाए, जब कोई आने वाला होता था तो पूरी पूरी रात इंतज़ार किया जाए।

घर फिल्म का गाना था। हमने आपसे सवाल पूछा था कौन है हीरो हीरोइन, सभी श्रोताओं ने जवाब दिया है सही, रेखा और विनोद मेहरा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये तुम्हारी झील सी गहरी आंखें बिना कुछ कहे दिल की हर बात कह जाती हैं, खो जाते हैं हम इन नशीली आंखों में ऐसे जैसे कोई कश्ती समंदर में उतर जाती है। किन आँखों से आपको डर लगता है ये ज़रा बताइएगा, माँ पिता टीचर पत्नी पति या किसी दोस्त से, मतलब आंखें देखकर डर जाते हैं। माँ की आंखों में अगर क्रोध दिखाई दे जाए तो बस सब काम बड़ी जल्दी हो जाता है ना, आप सबके साथ भी होता होगा। जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली, ममता निछावर करने वाली माँ ही होती है, तब भी माँ की आंखों में अगर ज़रा भी नाराज़गी दिख जाए तो बस सब कुछ मामला जैसे उलट जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से हमें कविवर बिहारी याद आ रहे हैं, जिन्होंने नयन के बारे में लिखा है, कहत नटत रीझत खीझत मन ही मन लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात, और ये आंखें दिल की जुबा है, और भी कुछ गीत इन्होंने लिखे।

रखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अभिनेता, निर्माता, निर्देशक गुरुदत्त और हरफन मौला, अदाकार अभिनेता संजीव कुमार दोनों का जन्मदिन है, उनको याद करके आज का सुरीला सफ़र कैसे पूरा करें। भाई उन्हें याद किया, गुरुदत्त को हमने इस कार्यक्रम में याद किया, संजीव कुमार जी को यादों की महफिल कार्यक्रम में, फिर भी इबारत की ओर आँखें नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, इन आँखों के इशारे पर कई शायरों ने गीत लिखे हैं और बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, ये आँखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। दरअसल आँखें ऐसी हैं कि आँखों पर अनगिनत गीत हैं, अनगिनत गाने हैं, और हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं अनगिनत गाने। लेकिन अब हम नयन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि नयन में डर कैसा होता है। आप अपने अनुभव बताइएगा कि किन नयनों से आपको डर लगता है।

कोरा फिल्म का ये गाना था, हेमंत कुमार की आवाज़ थी। कैफी आज़मी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था और गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आँखों की बात चली है तो मैंने बहुत सी पुराने फिल्में देखी हैं और हर फिल्म में अभिनेत्री अधिकतर आँखों से ही एक्टिंग किया करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि हेमंत कुमार की मखमली आवाज़ थी, कैफी आज़मी के गहरे बोल रहस्यमय संगीत का एक बेहतरीन मिश्रण है और ये सिर्फ फिल्मी गाना नहीं बल्कि संगीत और शायरी का एक ऐसा दस्तावेज़ है जो हर पीढ़ी को मंत्रमुग्ध कर देता है।

एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपका ये आंखों पर लिखा गया लेख सबकी आंखों को परखने का काम भी करेगा। इनमें किसी के सपने, किसी की खुशियां, किसी का अपनापन तो किसी की नाराज़गी और भी बहुत कुछ नज़र आने वाला है। पर क्या आप किसी के दर्द को पढ़ पाएंगी? वैसे तो आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं पर छुपाती भी बहुत कुछ हैं, और कभी कभी खुशी में भी छलक जाती हैं आँखें। इन्हीं आँखों से आंसू और कभी आंसू बहाकर दिल को हल्का भी कर लेते हैं इन आँखों में निकलने वाले आंसू। बात आंसू की चली है तो चलिए अब एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। जरा आप बूझिए फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। किन मौकों पर आपकी आंखों में आंसू आए? हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब इंसान की आंखों में आंसू होते हैं, कभी खुशी का, कभी दुख का। संगीतकार का नाम भी जरा बूझिए।

हंसते जख्म फिल्म का गाना था। हमने पूछा था फिल्म का नाम, सभी ने बताया श्रोताओं ने सही जवाब, और गीतकार का नाम पूछा था कैफी आजमी, वो भी सही बताया, संगीतकार मदन मोहन, आवाज़ लता मंगेशकर की, ये तो आप सभी जानते ही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक झलक दूर से मेरी आँखों ने देखी और मैंने ठान ली कि मेरी जीवन संगिनी तो यही होगी, 100% हमारी अरेंज मैरिज थी और रिश्ते होने पर सगाई में 18 महीने का अंतर था, मतलब आंखों से इनका रिश्ता तय हुआ। और एक श्रोता ने लिखा है कि बालपन में मुझे भूरी आंखों से डर लगता था, वो डरावने लगते थे लोग, माँ पापा ने समझाया तो डर गया। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ने बचपन में हम भाई बहनों को डांटा या मारा नहीं, हम लोग तो बस उनकी आँखों से डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अपनी मम्मी की आँखों से डर लगता था, ज़रा सा गुस्से में देखती थी और मैं एकदम रोने लगती थी। एक श्रोता की टिप्पणी है, मेरी एक महिला मित्र है जिनकी आँखों से मैं डरता हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, दोस्तों से बिल्कुल नहीं, एक अपने फिजिक्स के टीचर की आंखों से बहुत डरते थे हम, और अपनी और इसके अलावा अपनी जेठानी की आंखों से भी। क्या बात है, टीचर की आंखों से तो बहुत लोग डरे होंगे, बताएं या ना बताएं, लेकिन कई बार जब होमवर्क नहीं पूरा होता तब टीचर की आंखों से बहुत डर लगता है। तो आप क्या कभी डरे टीचर की आंखों से, बता दीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब शब्द थक जाते हैं और भावनाएं इतनी विशाल हो जाती हैं कि वे भाषा के बंधनों में नहीं समा पाती, तब आंखें ही संवाद का माध्यम बनती हैं। आंखें केवल शरीर का अंग नहीं बल्कि वे आत्मा की खुला झरोखा हैं, जहां कोई मुखौटा काम नहीं आता। एक तरफ जहां चौदहवें के चांद जैसी शीतलता मन को सुकून देती है, वहीं दूसरी तरफ विरह के आंसू दुख देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आंखों की खामोशी और उनकी गुफ्तगू के जादू को बेहद नज़ाकत से बयां करने वाला एक खूबसूरत दस्तावेज़ है। ये लेखन केवल आंखों की तारीफ नहीं करता बल्कि इंसान के भीतर छिपे भावनाओं के समंदर को शब्दों का रूप देता है। लेखक ने खूबसूरती से आँखों के विरोधाभासों और उनकी गहराई को समेटा है। दोस्तों, आँखों में सपने भी होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, कई बार कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। आप बताइए आपका कौन सा सपना हुआ पूरा और कौन सा रह गया अधूरा। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें थीं, गुलजार के बोल, खयाम का संगीत था और श्रोताओं ने जानकारी दी है शबाना आज़मी, राजेश खन्ना पर्दे पर। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि गानों के बोल बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है, ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पसंद के बहुत सारे गाने आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आँखों में न रुकने वाले आंसू आए मेरी आंखों में जब 31 जुलाई को रफ़ी साहब के इंतकाल की खबर सुनी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत प्यारा गीत है, बहुत बार सुनते हैं हम ये गीत, हमारी आंखों में आंसू बहुत बार आ जाते थे पहले, हम कभी किसी का दर्द नहीं देख पाते थे, पर अब धीरे धीरे आंसू छुपाना आ गया है, हम हंसते भी बहुत हैं और शायद आंसुओं से भी गहरा रिश्ता है। जब बेटी विदा हुई तब तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और फिर जब हमारे साथी ने हमारा साथ छोड़ा फिर पापा तो बहुत आंसू बहाए, पर आंसू बहाने पर भी जाने वाला लौट कर तो नहीं आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आज़मी का के बोल बहुत अच्छा लगा, मर्म स्पर्शी गाना है और ये गीत सिखाता है कि जब शब्द संगीत और आवाज़ का सही तालमेल हो तो एक कालजयी रचना का जन्म होता है। आज भी जब लोग अकेलेपन या पुराने दिनों को याद करते हैं तो ये गीत सुनते हैं। फिल्म हंसते जख्म का और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, संक्षेप में हमने इनकी टिप्पणी आप तक पहुँचाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मम्मी की आंखों से हम कभी नहीं डरे क्योंकि इकलौता बेटा था, वे हमेशा प्यार से पेश आती रहीं। हाँ, पिता की आंखों से हम डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत साहित्य शायरी में सबसे चर्चित जिस्मानी आंखों के विभिन्न रूपों का बखान किया गया है। अब प्रोग्राम का आखिरी गाना, गाने की झलक, फिल्म ऊँचे लोग, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। गीतकार और संगीतकार का नाम अगर पता है आपको तो बता सकते हैं।

ऊंचे लोग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, चित्रगुप्त का संगीत। श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया गीतकार संगीतकार का नाम। एक श्रोता ने लिखा है कि एक सपना था जो फौज में जाने का, वो पूरा नहीं हुआ। एक था जिंदगी का हम सफर साथ साथ चले सारे जीवन भर, लेकिन वो सपना भी अधूरा रह गया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरों का सफर ममता दीदी के साथ सुपर फास्ट रहा, 120 की स्पीड पर चलकर उनकी प्रस्तुति बेस्ट रही। भई अगर हम स्पीड को धीमा करेंगे तो आप सब श्रोताओं की ढेर सारी टिप्पणियां कैसे शामिल होंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा एक भी गीत शामिल नहीं हुआ, और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे आज तो बहुत सारे गाने शामिल हुए। तो अब देखिए कि बहुत सारे श्रोताओं की पसंद इसमें शामिल थी। और अब सिर्फ इतना बता दें, आज के इस सुरीला सफर का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

गांव और खेत एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर गांव शरीर है तो खेत उसकी आत्मा है। अगर गांव एक गीत है तो खेत उसकी मधुर धुन है। दोनों का संबंध उतना ही गहरा है जितना धरती और आकाश का, नदी और किनारों का, या बीज और वृक्ष का। गांव की पहचान उसके खेतों से होती है और खेतों की जीवंतता गांव के खेतों से। सुबह की पहली किरण जब खेतों पर उतरती है तो ऐसा लगता है मानो सूर्य स्वयं धरती के माथे पर स्वर्णिम तिलक लगा रहे हों और दोनों हाथों से अपना सारा चमचमाता सोना धरती पर लुटा रहे हों। ओस की बूंदें पत्तियों पर मोतियों की तरह चमकती हैं और हल्की हल्की चलती ठंडी हवा फसलों के साथ मिलकर एक मधुर राग छेड़ देती है। दूर तक फैली हरियाली आंखों को ही नहीं मन को भी ठंडक भरा सुकून दे जाती है।

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो हे, हम सारे हैं भारतवासी सब है।

खेत केवल अन्न उगाने की भूमि भर नहीं होते, वो तो किसान के सपनों की पाठशाला भी होते हैं। हर बीज में एक आशा छिपी होती है, हर अंकुर में एक

भविष्य और हर फसल में अनगिनत परिश्रम की कहानियां आकार ले रही होती हैं। किसान जब मिट्टी में बीज डालता है उस समय वो केवल खेती नहीं करता बल्कि विश्वास बोता है कि समय आने पर ये धरती उसकी मेहनत को फल में बदल देगी। गांव की पगडंडियां खेतों तक पहुंचती हैं और खेतों की मेड़ें जीवन के संघर्ष और सफलता की कथा कहती हैं। बैलों की धीमी चाल, हल्की रेखाएं, फसलों की लहराती बालियां और किसानों के माथे पर चमकता पसीना, ये सभी मिलकर परिश्रम का एक ऐसा महाकाव्य रचते हैं जिसे पढ़ने के लिए किसी पुस्तक की जरूरत नहीं होती।

ऋतुओं का सबसे सुंदर रूप गांव और खेतों में ही दिखाई देता है। बसंत आता है तो सरसों के पीले फूल धरती को सुनहरा परिधान पहना देते हैं। वर्षा की बूंदें खेतों पर पड़कर जीवन का संगीत रचती हैं। शरद ऋतु में पकती फसलें ऐसे झूमती हैं मानो प्रकृति अपनी सफलता का उत्सव मना रही हो। हर मौसम अपने साथ एक नया रंग, नया भाव और नई कहानी लेकर आता है। गांव और खेत हमें सिखाते हैं कि जीवन की वास्तविकता समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि श्रम, संतोष और प्रकृति के प्रति सम्मान में समाहित है। ये हमें बताते हैं कि धैर्य, परिश्रम और विश्वास से ही सपने साकार होते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दो बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। 2:15 होने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार सुनिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानिस विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बानिस ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
2: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
3: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
4: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत

0: ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
2: May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
1: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
3: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
4: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

0: बहारें फिर भी आएंगे इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। अनजान की रचना थी, ओपी नैयर का संगीत था। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शकील बदायूनी का लिखा गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में फिल्म थी साहब बीबी और गुलाम। आइए अब सुने मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गाना। गीता दत्त, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में, रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीतकार ओपी नैयर।

जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक

0: पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आर पार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। गीता दत्त की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। ओपी नैयर का संगीत था।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि

0: मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है? गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
4: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
3: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए अब सुनते हैं अभिलाषा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने बोल लिखे हैं, धुन बनाई है राहुल देवबर्मन ने।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनने वाली हमारे सभी सखियों, सहेलियों और सखा भाइयों को, जो कार्यक्रम सखी सहेली सुन रहे उन्हें और सोनाली आपको दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: दीपा आपको और सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
0: बिल्कुल भाई, बहुत बहुत नमस्कार। और ये बदलते मौसम में अपना सब खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, और घर का भी ध्यान रख रहे होंगे। और इस बारिश में बहुत सारी बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है जो हम इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे।
1: एक हमारे सखे ने लिखा है कि सोशल मीडिया, न्यूज़, समाचार पत्रों से मुंबई की बारिश के हालचाल दिख रहे हैं और इसके बाद भी सही समय पर आप सभी का प्रोग्राम पेश करना अपने कार्य के प्रति निष्ठा बहुत बड़ी बात है। भगवान से दुआ है आप सब अपने सुरक्षित रहें और अपने कार्य करते रहें। ऐसे कोई जब हमारी परवाह करता है तो कितना अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम भी तो अपने वादे पे हमें उतरना होता है, सही खरा बनना पड़ता है।
1: और कि हमारे श्रोता भाई बहन भी इतनी बड़ी ही शिद्दत के साथ में इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखते हैं तो इतना आनंद होता है ना, ऐसा लगता है कि सभी हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और हमसे बतिया रहे हैं इन मैसेजेस के माध्यम से।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखो ना, इस हमारा तभी तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खूब सारी जानकारियां लेकर आए, मनोरंजक गीत लाएं और कुछ खट्टी मीठी बातें भी हों,
1: है ना। और जैसे बारिश का मौसम है, झमाझम बारिश पूरे भारतवर्ष में हो रही है और जहां नहीं हो रही है तो बस हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से वहां भी बारिश हो जाए, बस बारिश संतुलन में हो
0: जी।
1: उसके लिए जो है सड़क यातायात और बारिश, यानी ये देखिए ना, इन दिनों कितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है सड़क यातायात की, कि कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं बारिश के मौसम में, तो किस तरह से हमें ध्यान रखना है इस विषय पर उपयोगी टिप्स ये हमारे श्रोता भाई बहन इनने बहुत सारे लिखकर भेजे हैं, हम भी बताएंगे।
0: बिल्कुल हाँ। और फिर क्या होता है जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती बहुत बारिश की वजह से, पिछले कुछ दिनों में हमने मुंबई में देखा, आपके शहर में भी ऐसा कुछ हुआ हो तो जरूर बताइएगा। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां हो जाती है और फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए एक रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से भी आती है कि अपील होती है कि भाई जो जहाँ है वहीं रहें, और फिर ऐसे में बच्चों की जिद जो घर में रहते हैं तो उनकी शुरू हो जाते हैं, आज हम स्कूल नहीं गए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करके दो, हमें वो करके दो। ये सारी तो जो चीज़ें हैं ना, इस तरह के सीन बहुत सारे घरों में हुआ करते होंगे,
1: दिखते हैं ऐसे सीन। और होता यूँ है कि अगर हम काम में लगे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं, बच्चे ने जिद की कि भाई आज मम्मी हमें पास्ता बना दीजिए, तो हमें ना जब काम में रहते हो तो हमने कहा ठीक है भाई पास्ता बोल रहा है तो बना देंगे, पर तब हम ऐसे ही उनसे वादा कर देते कि हाँ बना देंगे, पर पास्ता बनाने के लिए घर में सामग्री भी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: फिर अगर हमने पास्ता नहीं बना दिया तो फिर बच्चे जो है ना सारा घर सर पे ले लेते हैं और उनकी जिद के आगे पेरेंट्स जो होते हैं हतबल हो जाते हैं।
0: हम कई बार उसमें ऐसे उनको एक बात उनकी इधर उधर करने के लिए उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटक जाए तो हम कहते हैं अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं मेरे पास है ना,
1: मेरा गुल्लक
0: उसमें से निकाल लीजिए आप, इस तरह से भी कहते हैं बच्चे।
1: तो यानी गुल्लक हमारे बचपन का मनी बैंक, या यूं कह लीजिए बड़े होने के बाद भी अगर घर में गुल्लक होना तो एक अलग ही प्रसन्नता रहती है कि जो कुछ भी इधर उधर घर में चिल्लर पैसे, कुछ रुपए इधर पड़े हुए हैं तो हम झट से उसमें डाल देते हैं, तो हमें भी एक सुकून लगता है कि चलो हमारे पास इसमें तो बचत है। भले ही बड़े बड़े हमारे बचत खाते होंगे, बड़े बड़े हमारे FDs होंगे, पर ये जो छोटा सा गुल्लक होता है ना, ये बड़ा ही मासूमियत भरा होता है।
0: बिल्कुल। और एक सुकून सा देता है कि अगर कभी अचानक से कुछ छुट्टे पैसों की जरूरत पड़ गई तो हमारे पास गुल्लक है, है ना। और इसी साथ में ये भी है कि हम जब बहुत सारी बातें होती घर में बैठे हैं तो कई सारे बातें निकलती, क्योंकि बरसात के दिन अक्सर बाहर जाना हो नहीं पाता, बातें बहुत सारी निकलती हैं। और कभी हम किसी की जद्दोजहद की बातें करते हैं, किसी की कोई प्रेरणा स्रोत कहानी के बारे में जिक्र निकल जाता है। तो आज के दिन हम कहानी पद्मश्री के खंड में बात करेंगे कुछ इसी तरह मंजमा जोगथी की,
1: जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखे हैं और हम सारे श्रोताओं को उनके जीवन से जुड़ी कितनी परेशानियां थी और उसके बाद में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। पर अब क्या करना है दीपा?
0: देखो अब मैं क्या कर रही हूँ।
2: भली भली सी एक सूरत

0: सोनाली कहाँ खो गई तुम?
1: मैं खो गई थी हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ने में।
0: देख रही थी मैं कि बहुत सारे संदेश आए हैं और तुम चाट रही हो कि कौन ज्यादा से ज्यादा हम संदेश शामिल कर सके अपने कार्यक्रम में,
1: क्योंकि हमारे श्रोता जो होते हैं ना इतनी मेहनत से कमेंट्स लिखते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है कि उनके कमेंट्स शामिल करना बहुत जरूरी है। और बहुत सुंदर लिखते हैं हमारे श्रोता
0: जी, ये बात तो 16 आने सच है। और अब ये कि कहानी उनकी

0: जिन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलें, परेशानियाँ, हालात बहुत दिक्कतों भरे देखे उनके बारे में। ये एक महिला जिन्होंने दर दर भटकने के दिनों को देखने से लेकर राज्य के लोक कलाओं के प्रतिष्ठित संस्था के प्रमुख बनने तक की उनकी ये कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंजम्मा जोगथी की, उनके असाधारण जीवन की कहानी जो कि आज स्कूली पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन गई है।
1: बेल्लारी के पास कल्लूंग कम्बा गाँव में मंजूनाथ शेट्टी के रूप में जन्मी मंजम्मा ने अपने जीवन में अकल्पनीय पीड़ा झेली है दीपा। ये तब शुरू हुआ जब किशोरावस्था में ही मंजूनाथ ने खुद को एक महिला के रूप में पहचाना शुरू किया। वे कहती है कि जब मैं 15 साल की हुई तब मैंने एक महिला के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था और परिवार वाले उनके भीतर हो रहे इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए और एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वे तृतीय पंथी थी। अकेलापन और भीषण गरीबी के दिन झेलती रही मंजम्मा। इसी दौरान एक दिन उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। दावणगेरे के पास एक बस स्टैंड पर उन्होंने अपने पिता पुत्र की जोड़ी को देखा और जो पिता ने लोकगीत गाए और पुत्र ने अपने सिर पर लोहे का बर्तन रखकर नृत्य किया।
0: उन दोनों को और उस दिन को याद करते हुए मंजम्मा बताती हैं कि यह जोगप्पा समुदाय का एक लोक नृत्य था और मैं हमेशा से ही इस नृत्य से मोहित रहती थी, इसलिए मैं वो पिता जो ये कर रहे थे बस स्टैंड पे ये वाली कला, वो उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या वे मुझे ये नाच जो है ये नृत्य है इसे सिखाएंगे। खुशी की बात ये है कि वे मान गए। फिर क्या होने लगा कि मंजम्मा हर दिन उनकी कुटिया में जाती और ये नृत्य सीखती। तो जो घड़ा, जो उनके भाषा में उनकी वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में जिसे चोंबू कहते हैं, उसको संतुलन करना, कभी कभी तो किसी देवता की मूर्ति को भी सिर पर रखकर सुंदर नृत्य करना बहुत रोमांचक उन्हें लगता था।
1: और उस समय मंजम्मा को ये नहीं पता था कि ये कला उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव लाएगी। एक साथी जोगप्पा ने उन्हें उस समय के लिए प्रसिद्ध लोक कलाकार कालव्वा से मिलवाया। वे याद करते हुए बताती है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब कालव्वा ने मुझे अपने सामने नृत्य करने के लिए कहा था, जिसे आप ऑडिशन कह सकते हैं। उन्होंने किसी से मेरे चेहरे पर मेकअप करवाया। मुझे याद है कि मैंने आईने में देखकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, ये उनका कहना था, और मैं बहुत सावली थी और इस मेकअप ने मुझे गोरा और सुंदर बना दिया। मैंने कालव्वा के गायन पर नृत्य किया और बस बात खत्म। जल्दी ही वे मुझे नाटकों में छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए बुलाने लगे, फिर बड़ी भूमिकाओं के लिए भी उन्हें बुलाने लगे।
0: जी, और इसके बाद रंगमंच और नृत्य ने उनके जीवन को व्यस्त कर दिया। वे आगे बताती हैं कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे असली रूप को खोज निकाला हो और मुझे मंच पर आज़ाद कर दिया हो। मंजम्मा जो कल्लव्वा जोगथी के नृत्य समूह में स्थायी एक नृत्यकी बन गई थी और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने लगी। कल्लव्वा की मृत्यु के बाद मंजम्मा ने मंडली का कार्यभार संभाला और नृत्य को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया।
1: जोगथी नृत्य, जिसे आज इसी नाम से जाना जाता है, अपनी पहचान और लोकप्रियता का श्रेय काफ़ी हद तक उन्हें ही देता है। एक विशिष्ट जोगथी नर्तकी लेट कर केवल मुँह से फर्श से सिक्के उठाने और सिर पर घड़ा संतुलित करने जैसे कर्तव्यों में भी माहिर होती है। शरीर इतना फ्लेक्सिबल चाहिए, है
0: बिल्कुल
1: ना?
0: और संतुलन कितना ज्यादा चाहिए,
1: बहुत जरूरी है। और मंजम्मा को 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनकी जीवन कहानी हावेरी जिले के कर्नाटक लोक विश्वविद्यालय में स्कूली पाठ्यक्रम और कला स्नातक पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है।
0: वो आगे कहती है इंटरव्यू में कि मेरे लिए कला ही ईश्वर है, इसने मेरे भूखे पेट को भरा, ये हर दिन मेरी आत्मा को तृप्त करती है और जब मेरा कोई सहारा नहीं था तब इसने मेरा साथ दिया।
1: और वर्ष 2021 में उन्हें भारत गणराज्य के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें पहले कर्नाटक जनपद अकादमी के सदस्य के रूप में और बाद में राज्य सरकार द्वारा उसी संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसी तरह वे राज्य में प्रदर्शन कला के शीर्ष संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली तृतीय पंथी महिला बनी है। कितनी बड़ी बात है ना दीपा,
0: बहुत बड़ी बात। और ये वे कहती हैं कि उनकी ये चाहत है कि जोगथी नृत्य को एक विशिष्ट लोक नृत्य शैली के रूप में मान्यता मिले। इसे केवल जोगप्पाओं द्वारा ही प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। वो कहती हैं कि बच्चों को भी अन्य नृत्य शैलियों की तरह ये नृत्य शैली सिखाई जानी चाहिए।
1: और एक इंटरव्यू में अपने बीते दिनों को याद

0: करते हुए बताती है कि जब कर्नाटक जनपद अकादमी का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो राज्य में लोक कलाओं को बढ़ावा देने वाला विभाग है, उस दिन उनका फोन लगातार बज रहा था। वो सारा ध्यान प्यार और सराहना मुझे अभिभूत कर रही थी। मंजम्मा आंसू रोकते हुए कहती है कि मैंने अपना पूरा जीवन इसी स्वीकृति और प्यार के लिए तरसते हुए बिताया। यानी कितना संघर्ष था उनके जीवन में।
1: बिल्कुल, जब परिवार आपको छोड़ देता है, अकेलापन आपका साथी बन जाता है, ऐसे में जब कहीं से भी प्यार दुलार अपनापन मिलता है ना, तो वो इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी ये सोचने, मतलब हमारी सोच से भी बाहर है।
0: और ऐसा होता है ना कि आम इंसान जो होते हैं ना, हर बार हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमारा तो नसीब ही खराब है। पर देखिए ना, उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों के बाद
1: जी
0: एक पद्मश्री तक पहुंच गई। यानी कितनी बड़े, कितना संघर्ष होगा उनके जीवन में।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है। बातें बहुत सारी गंभीर हो गई है, क्यों ना कहीं कुछ एक संगीत
0: गीत हो जाए,
1: सुमधुर गीत
0: सुनते हैं गीत।

0: सुना ली, बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं होगा,
1: सभी को पसंद है भाई, पर बहुत संभाल के वहाँ पे हमें भीगना पड़ता है कि बीमार ना पड़ जाए, है ना।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो रेनकोट डाल दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बरसते पानी में, वो पानी में पैरों से उछालना या उनकी छोटी छोटी साइकिलों को चलाना। तो हर बार मना करने के बदले एक दो बार उन्हें उनकी पूरी बरसाती पहना के, रेनकोट पहना के अच्छे से उनको छोड़ भी देना, चल सकता है ना ऐसा?
1: चल सकता है। वैसे अभी गुल्लक की बात चल रही है हमारी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बचपन का मनी बैग। वाह क्या बात है, उन दिनों मिट्टी के गुल्लक कुंभकारों द्वारा अच्छी तरह पक्के पकाए आते थे और उनके ऊपरी हिस्से में पैसा डालने के लिए छेद रहा करता था, लेकिन वो भी खरीद से बाहर की कीमत पर या दीपावली पर दिए लेते समय आते थे, इसलिए डिब्बे में पैसे रखने का शौक था। एक बार मुझे टाइफाइड का बुखार आया, मैं बेड पर सोए हुए पैसों के डिब्बे खनखनाकर संतुष्ट रहता था। 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था लेकिन माह भर से बुखार था और बहुत परहेज चल रहा था। रोटी की पापड़ी और परवल का चोखा पथ्य में दिया जाता था। एक बार लोग विजयादशमी का मेला देखने गए थे और मेरे देखरेख करने के अनदेखी कर रखा हुआ दही बड़े को भरपेट खाया। पिताजी की ही चिकित्सा चल रही थी जब वो मेला से लौटे तो मुझे तेज बुखार था और देखरेख करने वाली की अच्छी खिंचाई हुई। ऐसा गुल्लक हुआ करता था, अब तो गुल्लक का नाम एक सीरियल भी आ रहा है। बहुत अच्छी यादें आपने साझा की है।
0: तो यादें साझा करें या इसी के बारे में बात करें, एक संदेश और ले लें।
1: हाँ हाँ,
0: ये संदेश कहता है कि बचपन का ही नहीं, मैं तो अभी भी इस मनी बैंक को अपने पास रखती हूँ। गुल्लक में पैसे रखना मेरी बचपन की आदत है, डेली कुछ पैसे उसमें डालती हूँ और साल भर के बाद उसे तोड़ने में मजा आता है। एक उत्सुकता रहती है कि कितने पैसे जमा हुए हैं। हालांकि कुछ साल पहले मेरे घर में चोर घुस आए थे, ओहो, और मेरे दो बड़े बड़े गुल्लक दूसरे सामान के साथ ले गए। लगभग 8 से 10 हज़ार रुपए थे दोनों गुल्लक मिलाकर। तब मैंने सोचा अब गुल्लक नहीं रखूंगी, पर आदत का क्या किया जाए, अब सिर्फ सिक्के ही रखती हूँ, बड़े बड़े रुपए उसमें नहीं डालती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है घर में कि चोर आ जाते हैं और आप देखिए ना, आपका गुल्लक ही वो लेके गए। लेकिन एक बात इसमें ये जान बहुत अच्छी लगी, आपने 8-10 हज़ार रुपए इकट्ठे कर लिए।
1: तो इसलिए हमें ये संदेश मिलता है इस मैसेज से कि भाई हमें गुल्लक में सिर्फ छोटे छोटे पैसे ही रखना है, जैसे 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए इतने ही रखना है। बड़े बड़े नोट रखने के लिए बैंक है,
0: बैंक है, या आप कुछ ऐसी जगह पर घर पे रखिए जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो, कि कभी ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो आपके मेहनत के जमा किए हुए पैसे कोई यूं ही उठाकर ना ले जाए।
1: गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों के को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। बचपन की यादें और गुल्लक का महत्व, बचपन का खजाना, इसमें जमा किए हुए एक एक सिक्के की खनक में खिलौने, आइसक्रीम और साइकिल जैसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं। ये बच्चों को छोटी उम्र से ही आय और व्यय यानी पैसा बचाने और खर्च करने के बुनियादी सिद्धांत सिखाने के लिए सबसे बड़ा मददगार है। और तोहफे की परंपरा, अक्सर त्योहारों या जन्मदिन पर माता पिता और रिश्तेदारों से गुल्लक तोहफे में मिलता था, जो आज भी यादों में ताज़ा है। आधुनिक रूप में आजकल पारंपरिक मिट्टी के गुल्लक के साथ साथ लकड़ी के नक्काशीदार बॉक्स और पासवर्ड डिजिटल लॉकर वाले प्लास्टिक के स्मार्ट मनी बैंक भी बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है।
0: आजकल तो बहुत अलग अलग डिज़ाइन वाले मिलने लगे हैं गुल्लक। और देखो ना सोनाली, उसमें हर जमा सिक्का केवल धन नहीं होता, वो मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सपनों का प्रतीक भी होता है, क्योंकि वो पैसा किसी ने कमाया है, मेहनत से कमाया है। और जब आप उसमें डालते हैं वो, या छोटा बच्चा जब डालता है तो वो एक अनुशासन भी सीखता है कि हाँ, मुझे अगर 5 रुपए मिले हैं तो ये सारे के सारे मैं डाल दूंगा, या 10 रुपए मिले हैं तो उसमें से आधा डालूंगा, आधा खर्च करेंगे। और एक सपने भी बुनते हैं बच्चे उसमें, हाँ। कि अब मेरे जब इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो फला खिलौना लाना है, या फला चीज मुझे जो पसंद है या जरूरत है वो मैं लेकर आने वाली हूँ।
1: और ये जो है ना, ये आदत आज भी बच्चों को लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम ये भूलते जा रहे हैं ना ये सब बातें, कि गुल्लक, अब तो घर में शायद ही किसी के घर में गुल्लक दिखता होगा, पर ये गुल्लक की आदत है ना बच्चों को मिला। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में दादा दादी आए, नाना नानी आए, रिश्तेदार आए, तो जेब खर्च के लिए 1, 2 या 5 रुपए 10 रुपए देते थे। उन बच्चों वो बच्चे जो हुआ करते थे पैसों को संभाल कर अपने गुल्लक में डाल देते थे, और हर बार सिक्का गिनने की वो मधुर खनक मन में एक नई खुशी देती थी। धीरे धीरे जब सिक्कों की संख्या बढ़ती थी तो बच्चों के मन में उत्सुकता भी बढ़ती थी दीपा, कि उनका गुल्लक में कितना धन जमा हो गया है। ये उत्सुकता उन्हें अनावश्यक खर्च से भी दूर रखती थी।
0: बिल्कुल। और गुल्लक को देखो ना, सबसे पहले बचत का जो गुल्लक है बच्चों में, सबसे पहले ये बचत का महत्व सिखाता है और ये भी समझाता है कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर बच्चों को ये सिखाना है हमें कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो और फिर देखो एक दिन कितना बड़ा हो जाएगा, तो गुल्लक से बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, सही कहा, बचपन की बचत बैंक या मिनी बैंक कहिए वो गुल्लक ही है, जिसमें छोटे सिक्के से लेकर रुपया के छोटे मोटे नोट भी हम डाल सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते, ताला लगा हुआ होता है। गुजराती मुहावरा है जो इस गुल्लक के लिए लागू पड़ता है, टिप्पे टिप्पे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है। बच्चों में बचपन से ही बचत की आदत डालने का सबसे पुराना तरीका है जो वित्तीय अनुशासन पैदा करता है। हमने भी बचपन में ऐसे गुल्लक बनाए थे। उस जमाने में हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो जाते वक्त हम बच्चों को 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया हाथ में थमा देते थे, उसे हम सभी गुल्लक में डाल देते थे, वो दिवाली या जन्माष्टमी त्यौहार पर खर्च करने के काम आते थे।
0: बिल्कुल सही कहा, 1-1 रुपए जोड़कर बड़ी राशि तैयार करना, ये जीवन का उस वक्त का ऐसा अनुभव था सोनाली, जो आगे चलकर हमें आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। और यही आदत बड़े होकर बैंक में बचत करने या भविष्य की योजना बनाने या सोच समझकर खर्च करने की हमें प्रेरणा भी देता है।
1: और दीपा ये बात है ना कि गुल्लक धैर्य और संयम का भी पाठ पढ़ाता है कि आज की दुनिया में हर चीज तुरंत पाने की जो चाह बढ़ गई है, लेकिन गुल्लक हमें इंतजार करवाता है कि उसे भरने में कई महीने लगते हैं। और यही प्रतीक्षा बच्चों को ये समझाती है कि सफलता और उपलब्धि समय तथा निरंतर प्रयास से मिलती है।
0: एक संदेश कहता है कि दिवाली की खरीदारी में गुल्लक भी आता था, हमें घरौंदा में जो भुना अनाज मिठाइयों से भरते थे वे खिलाते थे, उसके बदले में पैसा मिलता था, वही हम गुल्लक में डाल देते थे। आज का दिन शुभ है, लक्ष्मी बढ़ेगी, पर मुझे याद नहीं है कि कभी पैसे बढ़े, क्योंकि डालने के बाद निकलते निकलते मिट्टी के गुल्लक का मुंह बड़ा हो जाता था और पैसे ऐसे ही निकल जाते थे
1: और कभी कभी फोड़ना पड़ता था।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बच्चों के लिए केवल पैसे जमा करने की जगह नहीं बल्कि उनकी छोटी छोटी इच्छाओं जैसे या पसंदीदा चीजें खरीदने को पूरा करने का साधन और एक प्यारी यादों का पिटारा होता था।
0: और देखो, हाँ, एक और संदेश पढ़ लीजिए।
1: एक साथी ने लिखा है, गुल्लक जिसे पिगी बैंक भी कहते हैं, मिट्टी या धातु या प्लास्टिक से बना हुआ छोटा पात्र होता है जिसका उपयोग छोटे सिक्के और पैसे जमा करने के लिए किया जाता है। ये विशेष रूप से बच्चों में बचत की आदत डालने का पारंपरिक और लोकप्रिय साधन है।
0: और देखो सोनाली, वक्त कहता है अनुशासन, क्योंकि हमें भी सीखना है, तो एक अंतराल के बाद हम
1: फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक। चलिए, एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन की गुल्लक हमारे लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं थी। उसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि गर्मियों के छुट्टियों में खाई जाने वाली बर्फ़ की चुस्की, मेले से खरीदी जाने वाली मनपसंद गाड़ी और दोस्तों के साथ मिलकर बांटी जाने वाली टॉफियों की उम्मीदें जमा होती थी। जब कभी गुल्लक भर जाती और उसे तोड़ने का वक्त आता तो दिल में एक अजीब सी खुशी और थोड़ी सी मायूसी दोनों एक साथ होती थी। गुल्लक के टूटने पर फर्श पर बिखरे वो सिक्के किसी खजाने से कम नहीं होते थे। उस वक्त हमें ऐसा लगता था ना कि अरे हम तो कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने सारे पैसे हैं।
0: बिल्कुल। और बच्चों को वित्तीय साक्षरता और धैर्य सिखाने का ये पहला माध्यम भी है। त्योहारों से जुड़ाव और हमारे देश में दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी पूजन के समय नई मिट्टी की गुल्लक खरीदने और उसकी पूजा करने की परंपरा है। भावनाएं, बच्चे बचपन में गुल्लक को हिलाकर सिक्कों की खनक सुनना और उसके

0: हमें तो हमारे श्रोताओं से और श्रोताओं को हमसे प्यार है
1: और हमेशा रहेगा।
0: हाँ बिल्कुल। गुल्लक की बात जब हो रही थी ना, एक बहुत सुंदर मैसेज आया है कि गुल्लक की बात से एक बहुत ही भावुक करने वाली बात याद आ गई। 4 साल पहले हमारे घर साइकिल पड़ी थी, 4 साल पहले, और सभी बच्चे स्कूल खत्म करके बाहर पढ़ने चले गए थे, तो हमने उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। और एक दिन एक आदमी आए और बात हुई, और जब उन्होंने पैसा निकाला, मतलब सारी बात तय हो गई होगी पैसों की, तो उन्होंने जब पैसा निकाला तो सिर्फ 10, 20 और 5 के सिक्के थे। मेरे देवर ने पूछा कि इतना पैसा तुम कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी सब जमा करके रखी थी साइकिल लेने के लिए। हमारे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला, हमें ऐसा लगा जैसे हम जड़ हो गए हैं। कितना भी उसने कहा कुछ पैसे ले लीजिए, मेरे देवर ने उसमें से सिर्फ 11 रुपये लिए और बोला कि अपनी बेटी को दे दो, फिर से इसे गुल्लक में जमा करें और यह हमारा आशीर्वाद है।
1: कितना भावुक कर गया ना ये संदेश।
0: बिल्कुल,
1: सचमुच मेरी तो आंख नम हो गई। हाँ। इस तरह से भी यानी देखिए यहाँ पर ऐसा विरोधाभास है कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं होती, और कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है, इतने सारे पैसे जमा करना पड़ता है।
0: बिल्कुल, और हम अपने, ये हमारे ऊपर होता है सोनाली कि हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं,
1: किस तरह की परवरिश
0: कर रहे हैं। कहीं देखिए ना, बच्चे छोटी सी बात बिल्कुल मान जाते हैं, वो हम जैसा कहते हैं वैसा सुन लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद पर एकदम अड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस बारे में संदेश लिखा है, ये पहला संदेश मैं पढ़ रही हूँ, कि मुझे ये कहना है बच्चे जिद कभी कभार ऐसी जिद कर देते हैं जिन्हें पूरी करना बहुत

0: मुश्किल हो जाता है, और ना पूरी करो तो बच्चे घर में तूफान मचा कर बैठ जाते हैं और पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। लेकिन बच्चों की हार जीत को पूरी करना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं। बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो जिस चीज़ की ज़िद कर रहे हैं वो कितना ज़रूरी है या कितना नहीं, उन्हें यह करना चाहिए या नहीं, ये बात उन्हें समझा देना चाहिए। और अगर कभी कभी वो ना माने तो उन्हें थोड़ा सा, आप स्ट्रिक्ट भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कड़क होकर के उन्हें ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है।
1: और बच्चे इतने स्मार्ट होते ना दीपा, वो हमें ऐसा लगता है कि मासूम है, उन्हें क्या पता है, पर उनकी नज़र सब तरफ रहती है। कभी ऐसा होता है ना कि हमने पैसे निकाले बैंक से और ऐसे ही रख दिए, और फिर ऐसे ही हम बार बार करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हमारे घर में तो बहुत पैसे हैं, या फिर हमारी मम्मी भी तो ऐसे ही बिना सोचे समझे सामान लेकर आती है, या फिर हमारे यहाँ तो फिर हमारे लिए ही क्यों अनुशासन है। तो
0: है।
1: पहली पहल तो हमें करना चाहिए कि बच्चों के सामने हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही बच्चे ने इतने ज़्यादा ज़िद्दी बन जाते हैं, और फिर हम सिर्फ बच्चों को दोष देते हैं पर उसमें कुछ कारण हमारा भी होता है कि हम उनकी परवरिश कैसे
0: कैसे कर रहे हैं।
1: एक साथी ने लिखा है दीपा कि बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे नटखट जिद करते हैं जैसे खिलौनों के लिए, तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी के लिए सुखद अनुभव होता है, लेकिन बड़े बच्चे अगर ऐसी जिद करने लगे तो उनके हित में ना हो तो माता पिता और घर के बड़ों को समझा कर साफ मना करना चाहिए। हमारे बच्चे जब से नर्सरी क्लास में स्कूल जाने लगे तभी से सभी ने हमारा सम्मान करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वस्तुओं की ही डिमांड करते हुए आज भी उनकी यही सोच है और जिद नहीं करते। कितने संस्कारी बच्चे हैं।
0: बिल्कुल, देखो ना। और इसी तरह से एक और संदेश है कि राजहट, त्रियाहट और बालहट तीनों ही जिद मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और आगे कहती हैं कि भगवान प्रभु कृष्ण चंद्रमा को ही लेने की बात ठान बैठे थे, तब माता यशोदा ने अपनी बुद्धि से उनकी जिद को पूरा करने के लिए आंगन में थाली में पानी भर कर रखा और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और बोली कि ये ले लो। तो बच्चों का जिद्दी होना उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है। इसे संभालने के लिए चिल्लाने या डांटने के बजाय शांत रहना चाहिए। उन्हें आदेश देने के बजाय विकल्प दें, पहले अपना होमवर्क कर लो तब टीवी देखना, या पहले दूध पी लो तब तुम्हें चिप्स मिलेंगे, और उनकी बात सुनने के बाद उन्हें तर्क से समझाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी ज़रूरी है कि आप हर बार अगर वो चिप्स की जिद करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप बोलो कि पहले आप होमवर्क करो फिर चिप्स देंगे। चिप्स उनको खाना उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सामग्री लिखी होती है उस पैकेट में पीछे, वो उनको समझाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उनका इस पर कोई कंट्रोल कहीं भी कुछ भी नहीं है, वो उठा उठा करके चिप्स लेते हैं। ये वाकई में एक अलग विषय जो कि विचारणीय है।
1: जी, एक साथी ने लिखा है कि वह क्या कहने उस जिद के भाई, गुल्लक पर जीने के अभ्यस्त होकर उसके पैसे खर्च करने की छूट नहीं थी, यदि जिद की भी जाती तो भली बात ही समझाया जाता था, और जिद को पूरी नहीं करने के उद्देश्य से गुलाब जामुन तक घर में बनवाया जाता था और केवल भुनी हुई मूँगफली ही पिताजी खरीद लाया करते थे। इतने सख्त और अनुशासन प्रेमी थे, जबकि बच्चों के जिद को पूरे करने के लिए माँ यशोदा ने तो थाली में ही चांद को उतार दिया था, ठीक उसी तरह जिद को ठोक ठाक कर ही उसके विकल्प स्वरूप ही पूरे होने वाले जिद को ही तरजीह दी जाती रही है। इन्होंने कहा है कि भाई यानी हर समय बच्चों की जिद पूरी करना ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर तुम्हें योग्य है। और ये भी बात है ना कि अगर बच्चों ने जिद की है ना तो हम तुरंत ही उन्हें बोल देते कि हाँ हाँ हाँ कर देंगे हम, तो ऐसा भी नहीं करें, सोच समझ के उनसे वादा करना।
0: क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं और बहुत सतर्क और सब जानकारी लिए हुए होते हैं। एक संदेश भी आया है सोनाली, ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी जिद करते हैं, जो ज्यादातर अपने अनुचित मांगे पूरा करवाने के लिए जिद करने के लिए रूठ जाके या गुस्सा होके या जोर से चिल्लाने वाले जैसी उनके ये मुख्य लक्षण होते हैं। कभी थकान, कभी खराब स्वास्थ्य या कभी तनाव के कारण भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। हाँ, बड़ों में ये आ सकता है, लेकिन चूंकि बड़े, क्योंकि घर के बड़े हैं, वो बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि अगर बड़े ही इस तरह से चिड़चिड़े हो रहे हैं या जिद कर रहे हैं तो आप हम छोटों को क्या समझाएंगे। तो बड़ों को भी यहाँ पे बड़ा संभल रखना पड़ता है।
1: और जो ये ना जिद्दीपन का जो गुण है ना, ये बचपन में ही जिसका पनप जाता है तो फिर आगे जाके वो बढ़ते ही जाता है। कि बचपन में माँ ने नहीं सुना तो दादी ने बात पूरी कर दी, पिताजी ने नहीं सुना तो दादाजी नाना जी ने जिद पूरी कर दी, नहीं तो बुआ ने जिद पूरी कर दी। तो फिर जो बच्चों को मालूम होता है, बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे, उन्हें मालूम होता है कि अभी इनने नहीं की ना तो उनसे मांग लेते हैं, और ऐसे करते उनका जिद्दी स्वभाव बन जाता है, वो बड़ेपन होने के बाद में तो और भी बढ़ते जाता है। एक साथी ने लिखा है कि बच्चे जिद वाली बात चली है बच्चों की, तो मैं बचपन में

0: बहुत ज़िद्दी था, गर्मी में कोट पहना था। एक बार माताजी गर्म कोट छुपा दिया तो मैं रोने लगा, ज़िद पकड़ ली कि कोट पहनाया गया, तब मैं चुप हुआ। बचपन से मुझे कोट अच्छा लगता था और मैं सर्दी के मौसम में पहनता हूँ, पहना था जब मैं 7 साल का था।
1: तो यानी सर्दी की जो मोटी कोट होते हैं
0: वो भी गर्मियों में
1: गर्मी में पहनना इस तरह की जिद करने लगे थे। तो भाई कहीं पे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ये माहौल में गर्मी ना हो जाए, थोड़ी सी ठंडक लेकर आते हैं,
0: सुनते हैं।

0: और ये ठंडी हवा में डोलते डोलते कहाँ पहुँच गए हम?
1: हम एक ऐसे शहर में पहुँच गए जहाँ पर हमारी सखी ने कहा है कि अब हमारे शहर में अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है तो हो जाएगी, बस थोड़े ही दिन में इधर का पानी उधर भी चला जाएगा। वैसे एक साथी ने लिखा है कि हम बचपन में इतने नटखट थे, इतने शरारती थे कि गुल्लक के जो नोट ऊपर आ जाते थे ना तो हम चिमटे से निकाल लेते थे।
0: ये देखिए, ये भी बड़ी खूब एक तरकीब है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ों की में दिमाग चल जाता है सबका। और देखिए, हमें भी एक आइडिया मिल गया कि पतली सी चीज़ कोई निकालनी हो तो चिमटे का इस्तेमाल किया लिया जाए।
1: मेरी हमारे एक पहचान वाले थे तो उनके घर में ना एक ऐसा डिब्बा आता है ना जैसे रबड़ी वाला जो खीर बनाने में वगैरह इस्तेमाल करते, तो उसमें वो उनकी मम्मी ने कहा था कि त्यौहार के दिन ही खोलना है, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें सुई डाल दी उसमें और छोटा सा छेद कर दिया और उसे मुंह में लगा लगा के वो पीने लग गए। ऐसी भी शरारत
0: ऐसे भी शरारत होती है। और एक जिद की बात पर हमारी एक बहन ने लिखा है कि इस बार

0: गर्मियों में हम सास बहू ने मिलके थोड़े चिप्स बनाए हैं, बस इसलिए कि कभी बच्चे अगर जिद करते हैं तो घर में ही इसे तल कर एयर फ्रायर में भून कर दे दिया जाए। तो ये बात सही है कि आप बाजार के वो पैकेट के बदले में अगर आप ये घर के घर में ही तल लें तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है, या एयर फ्रायर में आप उसको उसको फ्राई करके दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बारिश की जो बात हम कर रहे थे ना सोनाली, तो हमारी एक सखी ने लिखा है कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, लौटते समय बड़ी तेज बारिश आई और सारा ट्रैफिक जल्दी जल्दी उसमें बहुत जल्दी जल्दी सब लोग भागे जा रहे थे। मुझे भी लौटना था, बारिश की वजह से सड़क फिसलने वाली हो रही थी, तो मैंने ओला की मतलब उन्होंने कैब बुक कर लिया था और जल्दी से बैठकर वापस आई। बार बार ऑटो वाले से धीमे चलने को कह रही थी कि कहीं फिसलने में कहीं गाड़ी स्किड कर जाती तो वो ना हो।
1: तो अपना अपना ध्यान रखना। एक हमारे सखी ने लिखा है कि बारिश के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क यातायात सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अत्यधिक सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। मानसून के दौरान सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे सड़क यातायात नियंत्रण प्रभावित होता है। हेडलाइट्स चालू रखें। भारी बारिश में दृश्यता कम होने पर लो बीम हेडलाइट्स का प्रयोग करें। वाइपर्स की जाँच शुरू करें। यात्रा शुरू करने से पहले विंडशील्ड वाइपर्स सही ढंग से काम करने की पुष्टि करें। और इन्होंने कहा कि कार के शीशों पर जमे भाप को हटाने के लिए भी डीफॉगर ऑन करें। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो बारिश में जो मैनहोल खुले रहते हैं
0: जी,
1: तो संभल के चले। बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हुए चलते हैं तो
0: अभी भी ये, जबकि इतनी बातें हाँ, और इतनी घटनाएं हम देख लेते हैं फिर भी इस बारे में हम थोड़े से हल्के में ले लेते हैं, केयरलेस हो जाते हैं।
1: तो लापरवाही ना बरते। जब भी रास्ते से पैदल चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल भी हमें सड़क का ध्यान रखना है कि कहाँ पर गड्ढा है, तो ऐसा ना हो कि हम उस गड्ढे में गिर जाएं।
0: बिल्कुल। और अभी क्या कर सकते हैं?
1: गाना सुनते हैं।

0: बारिश में कहीं कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसका बाहें थाम लीजिए, उसके हाथ पकड़ लीजिए, या कहीं ऐसा लगता है कि किसी के साथ की ज़रूरत है तो अपना हाथ आगे कर दीजिए, है ना।
1: बिल्कुल, इसी का नाम तो ज़िंदगी है
0: जी। बिल्कुल, और इसी ये साथ में ही हर मौसम बड़े प्यार से निकल जाता है।
1: बिल्कुल, ऐसी सोच हो ना तो ये मौसम क्या ज़िंदगी ही बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ जाती है।
0: बात तो बिल्कुल सही कही, संदेश पढ़ रही हो ना
1: जी। बारिश के दिनों में रोड पर जब भी हम निकले तो अच्छे से देख कर चले, कहीं रोड में गड्ढा तो नहीं, कोई मेन होल तो नहीं खुला, कहीं कोई बिजली के करंट या खंभे में से तो पानी नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चलता है तो तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा करके विभाग को खबर करना चाहिए। यात्रा करते समय ट्रैफिक नियम की कुछ बात लिखते रहे, और उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने जो साथी है उनकी मदद करते रहिए। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वायर कहीं लटका हुआ है, कहीं पेड़ कोई गिरने वाला है, तो उसकी भी जानकारी तुरंत देना चाहिए। कि कोई अगर बिल्डिंग ऐसी है कि दिख रही है कि उसमें दरारें दिखने लग गई है या टॉयल्स गिरने लग गए हैं उसके, तो इससे हमें दूसरों को सचेत करना बहुत ज़रूरी है।
0: और एक संदेश कहता है कि हम जहाँ पर रहते हैं रोज आना जाना करते हैं तो हमें वहाँ पता होता है कि रास्ते पर कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ ब्रेकर है। जो जब हम किसी नए शहर में जाते हैं या कोई अन्य शहर में जाते हैं तो बारिश में संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि रास्ता कैसा है, वो रोड जहाँ पे हमें रोज का आना जाना है वो कैसा है। तो उस वक्त आप जरूर इस मौसम में ख्याल रखिए।
1: एक साथी ने लिखा है कि बारिश शुरू होने पर सड़कें सबसे ज्यादा फिसलन भरी हो जाती है, क्योंकि पानी जमा हुए तेल, ग्रीस और धूल के साथ मिलकर टायरों की पकड़ को कम कर देता है। यहाँ तक कि पानी की पतली परत होने पर भी, खासकर बारिश के पहले कुछ मिनटों में हाइड्रोप्लानिंग हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही और आप गाना सुनते हैं,
0: चलिए

0: सयोनारा यानी कि बाय कहने का, विदा लेने
1: पहले
0: का।
1: श्रोताओं को हम धन्यवाद कहेंगे, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे। इसी तरह कमेंट्स लिखते रहिए, विविध भारती से जुड़ते रहिए, जुड़े रहिए और सखी सहेली सुनते रहिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। और मुंबई की इस झमाझम बारिश में हो रही है श्रोताओं की बातचीत की बरसात और साथ में पड़ रही है गानों की फुहार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातचीत का, देखते हैं ये पहला कॉल किसका आया है। हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: विराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान जी, बताइए क्या हाल है आपका और सीहोर का क्या हाल है?
1: सीहोर में दीदी बारिश हो रही है और हमारा हाल भी अच्छा है दीदी। हम खेती किसानी करते हैं और हमारे इधर सोयाबीन और मक्का की बुआई हो चुकी है दीदी। 12-13 दिन की फसल हो चुकी है हमारे इधर।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आपका अपना क्या शौक है बताइए
1: दीदी? मुझे तो क्रिकेट देखना का बहुत शौक है और मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, अब तो नहीं खेलता हूँ दीदी।
0: अब क्यों छोड़ दिया
1: दीदी? अब क्या है, खेती किसानी में रहते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता दीदी।
0: तो क्रिकेट खेलने के शौकीन रहे तो रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का बहुत चार्म रहा है, तो आप सुना करते थे क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर?
1: जी दीदी, हम बहुत सुनते थे। पहले क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी दीदी, तो हम रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे दीदी और बहुत अच्छा लगता था हमको।
0: जी जी, और एक अलग नॉस्टैल्जिया होता था रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का, एक ही रेडियो और चार चार पांच पांच लोग मिल के सुना करते थे, है ना, वो गजब के दिन थे।
1: चार पांच क्या, हमारे यहाँ तो दीदी पूरे गाँव के करीबन 20-25 इकट्ठा लोग हो जाते थे गाँव में से, फिर सुनते थे दीदी।
0: एक घर में रेडियो होता था और आंगन के मुंडेर पर रख दिया जाता था और बहुत सारे लोग

0: इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, है ना? बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है खुद्दार और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है, ये वाला भी सुनना है दीदी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। सुनते हैं खुद्दार।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
3: ये मोट वगैरह की बिजाई चल रही है जी,
4: और उसके बाद फिर धान की बुआई होगी जब बारिश होगी तब।
3: फिर वो जो रबी वाली फसल है वो स्टार्ट हो जाएगी।
4: जी जी, खेती किसानी की सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध हैं आपके यहाँ?
3: यहाँ पे हमारे वैसे तो ये इंदिरा गांधी नहर की भी सुविधा है, उसके अलावा ये ट्यूबवेल है, कुएं वगैरह, इनसे भी सिंचाई हो जाती है। इन दिनों में मानसून जो हो जाता है तो उसकी भी फसल वो अच्छी होती है।
4: बढ़िया, बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
3: फकीरा पिक्चर है, उनका गाना है वो, के रहूंगी तेरी,
4: दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी।
3: मैं साहब बहुत पुराना श्रोता हूँ, जब से वो जो ये हेलो परमाई शुरू हुआ था, कमल शर्मा ने 1996 में स्टार्ट किया था वो।

0: पहला प्रोग्राम सुना था मैम साहब।
1: जी जी बहुत बढ़िया, तब से आप सुन रहे हैं, तब से तो कितने सारे बदलाव हुए प्रोग्राम्स में,
0: बहुत काफी चेंजेस हुए हैं साहब। लेकिन 26 साल में कॉल लगा नहीं, लेकिन 2026 में मेरी दूसरी बार बात हो रही है विविध भारती में।
1: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं इंदौर से सत्यप्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ। ममता दीदी
0: जी, सत्यप्रकाश जी बताइए, क्या हाल है आपका? इंदौर का क्या हाल है? बारिश वगैरह हो रही है?
1: हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से प्रकृति की बहुत अनुपम कृपा है कि अच्छी बारिश हो रही है और चारों तरफ हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है
0: जी।
1: और ऐसा लगने लगा है कि सावन बहुत निकट ही है और आनंददायी वातावरण हो गया है।
0: सावन का जब इंतजार होता है तो मन यादों के गलियारे में पहुंच जाता है, तो जब सावन आता था तो आप अपने यादों के गलियारे में जाइए और बताइए कौन सा सावन आपके लिए बड़ा यादगार रहा है। बचपन में जो सावन के झूले पड़ते थे नीम की पेड़ पर, तो कभी झूलने का मौका मिला?
1: भी याद आते हैं, पेड़ों पे जब गांव में जाते थे तो पेड़ों पे झूले झूलते थे, बड़ा मनोरम वातावरण लगता था सावन का। चारों तरफ एक जो प्राकृतिक सुषमा प्रकृति की दिखती थी, बहुत ही मन भावन रहती थी और आज भी वह सब देखने के लिए मन तरसता है। अब शहर में जरूर रह रहे हैं पर गांव की वो हरितिमा और वसुंधरा जो प्राकृतिक वातावरण में जो सावन में हो जाती है वो बहुत याद आती है और अक्सर हम जाया भी करते हैं गांव में, तो वो पुराने दिनों को याद करके, सावन को याद करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है।

0: हो जाता है।
1: तो उन दिनों में कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको?
0: हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो है। अभी तो खैर मैं चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ 71,
1: अच्छा,
0: तो थोड़ी सी याददाश्त भी थोड़ी सी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं, बड़े मन भावन गीत और कजरी रही है।
1: आप बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? हाँ, और ये भी बताइए, आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं?
0: मैंने बैंक में अधिकारी के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष।
1: अच्छा।
0: और अभी 10 साल से सेवानिवृत्त हूँ। सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है, पारिवारिक दायित्व भी है, उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकंड इनिंग चालू हो रही है, तो वो एक तरह से सही भी कहते हैं कि अपन उन दायित्वों को पहले सर्विस में रहते नहीं पूरे कर पाए, तो उन दायित्वों का निर्वहन कर लें। और जो आनंद कहीं किसी विशेष स्थान की यात्रा वगैरह का नहीं ले पाए हो, कंपोजिट टूर प्रोग्राम हो, जब समय मिलता है तो पर्यटन के लिए, तो उन स्थानों पर जब भी जाने का मौका लगता है तो समूह के साथ चले जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, घूम के आए और एंजॉय करें। तो सत्यप्रकाश दीक्षित जी का फोन बीच से डिस्कनेक्ट हो गया, बातचीत उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से की, शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका। और उनके लिए हम सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अशोक आनंद बोल रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से।
0: आपने लेक सिटी उदयपुर कहा तो पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर खूब बारिश हो रही है, मुंबई में भी, तो क्या आपके उदयपुर में बारिश हुई तो झीलें भर गई?
1: कल शाम को भी बहुत झमाझम बारिश हुई थी।
0: क्या बात है, झीलें लबालब भर गई होंगी फिर तो?
1: नहीं, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी उसमें जुलाई अगस्त तक में भरेगी। झीलों की नगरी है तो काफी सारी झीलें हैं, और जैसे जैसलमेर लेक है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
0: जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि राजस्थान में खासतौर से पानी की कमी होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं लोगों से मिलजुल कर?
1: मैंने जैसे कई बार देखा अपने घर पे भी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे अपने छत पे जो पानी होता है उसको पाइप से अपने वापस बोरिंग के अंदर जैसे सेट करवा रखा है, और वेस्ट पानी करते नहीं है। पर राजस्थान में हमारा उदयपुर शहर जैसे है ना, इतना पानी का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे राजस्थान में लोग बोलते हैं कि सूखा होगा, वो एक्चुअली क्या है, जोधपुर जैसलमेर उससे ज्यादा सूखा होता है।
0: जी जी, वहाँ की और जगहों के बारे में बताइए, उदयपुर के आसपास क्या कुछ है?
1: उदयपुर के बाद में बताना चाहूंगा कि जैसे उदयपुर के पास में एक सज्जनगढ़ फोर्ट किला है, जिसकी दीवार विश्व की सबसे दूसरे नंबर की दीवार है, और उदयपुर पर्यटक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो विश्व में एक नंबर पे आता है।
0: वाह।
1: तो पहले किसी जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर और दिल्ली हुआ करती थी, अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली होती है कि राजस्थान में उदयपुर या और दूसरे किले फोर्ट वगैरह, और राजस्थान के कुछ अच्छे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध थी उनको देखने के लिए, विजिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं।
0: क्या बात है, आप जो जानकारी दे रहे हैं, हमारे श्रोताओं की जानकारी समृद्ध हो रही होगी, और बड़ा अच्छा लग रहा है इतनी सारी बातें आपने बताई।
1: मैं और आपसे अर्ज करना चाहूंगा।
0: जी हाँ।
1: गाना आज का मेरा जो पसंद का है वो कुदरत फिल्म का है, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, नितिन मुकेश। नितिन मुकेश जी मेरे फेवरेट सिंगर है, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनना मुझे।
0: और मुकेश के गाने?
1: जी मुकेश के भी सुनता हूँ, किशोर जी के भी, लता जी के भी, खासकर मदन मोहन जी और लता जी का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा लाइक करता हूँ।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। तो बस विविध भारती से भी, सारे श्रोताओं से आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे, इस बात के साथ बातचीत को दे रहे हैं विराम, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: दीदी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: राजू जी, आगरा में क्या खास है बताइए, कोई विशेष धरोहर है?
1: जी दीदी, आगरा में तो सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ही है, लाल किला है, सिकंदरा है, आगरा का पेठा।
0: आगरे का पेठा भी बहुत मशहूर है, क्या बात है भाई।
1: जी बिल्कुल, और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आज ममता दीदी से हो रही है, बड़ा खुशी हो रही है दीदी मेरे को।
0: जी बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अब जरा आगरे के ताजमहल के बारे में बताइए, आपने देखा है ताजमहल?
1: देखिए दीदी, मैं तो ब्लाइंड पर्सन हूँ।
0: अच्छा अच्छा ओ,
1: तो मैं तो कभी ताजमहल गया नहीं, मैं तो उन्हीं जगह जाता हूँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हमें मंदिर नहीं देखना होता, भगवान हमें खुद देखते हैं। वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें भगवान को दिखाई दे या न दे, लेकिन भगवान हमें दे।
0: जी जी
1: दीदी, मैं
0: बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बताइए और क्या करते हैं आप दिन भर घर में?
1: जी दीदी, मुझे संगीत से शौक है, मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ अपने रेडियो के माध्यम।
0: अब हमें बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और आपने कहा कि संगीत का शौक है, तो निश्चित रूप से आप भी गाते होंगे, क्या सीखा है आपने गाना क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज की फिल्म है लम्हे, आवाज है लता जी, अरुण जी और सखियों की, और गाने के बोल हैं मैं।

0: अरे तूने किसको याद किया, ये वाला गाना सुनना था दीदी।
1: वाह, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आपने कौन सा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत?
0: जी दीदी, मैं ज्यादातर लाइट म्यूजिक में चलता हूँ, कथाओं में, भागवतों में, सुंदरकांड में, सत्संगों में। मैंने कुछ नहीं सीखा, चोरी कभी मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ भी है।
1: अच्छी बात है। तो कोई लोकगीत भी याद है उत्तर प्रदेश का?
0: जी बिल्कुल, ब्रज का लोकगीत मेरे को बिल्कुल याद है।
1: तो सुनाइए फिर हमारे श्रोताओं को भी।
0: अरे बंसी

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी टेकचंद जी, बताइए क्या हाल है आपका और छिंदवाड़ा का क्या हाल है?
1: मैडम हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया, एकदम बढ़िया। बारिश वारिश हो रही है?
1: हाँ मैडम, 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, कहना चाहिए झमाझम बारिश हो रही है, जैसा कि हम लोग चाहते हैं, कहना चाहिए एक प्रसन्नता की बात है। और साथ में हमारे जो किसान भाई है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं।
0: स्वाभाविक है उनकी खुशी, उनके लिए तो पानी एक अमृत की तरह है, सारा कुछ पूरी खेती किसानी उनकी बारिश पर ही निर्भर करती है ना।
1: जी जी जी।
0: तो आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या काम काज है?
1: मैडम मैं जो हूँ एक सीनियर सिटीजन हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि मैं ये जो जुलाई माह है ये मेरे लिए काफी वरदान साबित है, कहना चाहिए।
0: अच्छा, किस सिलसिले में?
1: क्या हुआ मैडम, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि 2001-07-2020 को मेरा रिटायरमेंट हुआ है ऑल इंडिया से, तो सुरक्षित हम अपने काम से अपने घर लौटे हैं, ये बहुत खुशी की बात है।
0: कहाँ काम करते थे?
1: कोल इंडिया में मैडम, तो मैं उससे कहना चाहिए 38 वर्ष देकर के सुरक्षित अपन घर पर पहुंच गए हैं, ये एक हमारे लिए काफी और हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है।
0: जी जी, बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ की कोई अनुभव, कोई छोटी सी घटना, कोई बात हो तो बताइए।
1: पहले जो होता था वो काफी असुरक्षित मतलब रहता था माइंस में काम करना, लेकिन अभी सरकार ने इतना ज्यादा सुरक्षित मतलब वर्करों को कर दी गई है, तो कहना मैडम अब उतना जो हमारे साथ जो घटनाएं होती थी वो अब नहीं के बराबर हो गई है। हम अपनी लापरवाही से कहना चाहिए या असावधानी जो होती है उससे दुर्घटनाएं होती है।
0: जी जी,
1: तो ये कहना चाहिए एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जो दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हुई है वो काफी हमारे मजदूरों को या हमारे जो साथ के कामगार हैं लोग को काफी

0: असंतुलन होता है इस सबसे, वो हम सब के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है कहीं दिन कहीं रात, महेंद्र कपूर जी और आशा जी की आवाज है, संगीत ओपी नैयर का है, गीत है एचएस बिहारी का और गीत है मैडम तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में।
0: क्या बात है, बढ़िया गीत चुना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सरफरा, नमस्कार
0: नमस्कार
1: वो प्यार भरा सुनने वाले हो, हेलो फरमाइश सुनने वाले को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा, तालुका कळमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी
0: जी। पांडुरंग जी बताइए, बड़ा लंबा चौड़ा परिचय देते हैं।
1: कैसा है बम्बई में मौसम? कैसा है इधर? बारिश नहीं है, उधर बारिश होंगी तो थोड़ा भेज दो हमारे इधर महाराष्ट्र में।
0: एकदम भीगा मौसम, खूब सारी बारिश हो रही है और खूब सारी बारिश आपके रेडियो सेट तक भेजेंगे आपके गाने के माध्यम से और आपकी बातचीत के माध्यम से। जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है हीरो, गाने के बोले तू मेरा हीरो है मैं तेरा, हीरो टाइटल सॉन्ग का गाना सुनना है।
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश.
1: नमस्कार मैम.
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ.
0: प्राकृतिक सुषमा जहाँ पर मौजूद है और दिल वहाँ जाए तो दिल वहीं पर रुक जाने का मन करता है ना. तो सबसे पहले आप त्रिपुरा के हालचाल बताएं. त्रिपुरा में जो प्राकृतिक छटा है वहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को.
1: मैम अभी तो त्रिपुरा में बारिश का सीजन है और कुछ दिन से लगातार बारिश चल रहा है. कभी कभी रुकता है, धूप निकलता है, फिर बारिश, ऐसा ही चल रहा है लगभग दो महीना.
0: तो ये बताइए कि बारिश जब होती है ज्यादा तो वहाँ के लिए नुकसानदेह है या सही है? ठीक है.
1: नहीं मैम जी, ज्यादा बारिश होने से तो नुकसान तो हो ही जाता है
0: बिल्कुल. और वहाँ के आसपास की जगहों को आपने कहा ना सेवन सिस्टर्स, यानी कि वो जो कौन कौन से उसमें शामिल है सेवन सिस्टर्स में बताइए.
1: सेवन सिस्टर में त्रिपुरा का पासी है असम, और आता है मेघालय,
0: अरुणाचल प्रदेश,
1: मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड.
0: मतलब खूबसूरती का आलम है. तो त्रिपुरा के आसपास क्या है बताइए.
1: त्रिपुरा में तो मैं जहाँ रहता हूँ मैम जी, त्रिपुरा का नॉर्थ साइड में मैं रहता हूँ. ये ऊनकोटी टेम्पल, बाहर से बहुत लोग आता है दर्शन करने के लिए. ये सर्च करने से मैम जी आपको मिल जाएगा.
0: जी जी जी.
1: इंडिया का बाहर से भी आता है मैम जी.
0: जी बिल्कुल.

0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: त्रिपुरा का और मशहूर टेम्पल है त्रिपुरेश्वरी मंदिर। देवी का और शरीर का एक अंग घिरा था त्रिपुरेश्वरी मंदिर में, जो असम में भी एक घिरा था और बन गया बड़ा टेम्पल माँ कामाख्या।
0: तो ये शक्तिपीठ है
1: बिल्कुल।
0: और एक और खास बात है त्रिपुरा की, त्रिपुरा से एक बहुत बड़े संगीतकार आए जिन्होंने पूरी फिल्मी दुनिया में जिनके संगीत का जादू छाया, हम सब के दिलों पर आज भी कायम है उनके संगीत का जादू। वो नाम आपको पता है?
1: बिल्कुल पता है मैम जी, सचिन देव बर्मन
0: जी।
1: और तो, उनका बेटा तो पिताजी को भी छोड़ के चला गया,
0: राहुल देव बर्मन। तो इसलिए त्रिपुरा और खास हो गया ना आपके लिए। तो
1: जी जी,
0: तो बताइए फिर कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
1: जी आज मुझे याद आया 1980 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है फिर वही रात, और इस गाने को गाया है सुरो का मल्लिका लता जी ने बिंदिया पेरिस से, और इस गाने को लिखा है मैम जी संगीत का सबसे बड़ा राइटर में एक नाम है मजरूह सुल्तानपुरी
0: जी, गीतकार
1: संगीत तैयार किया है आदि बर्मन
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने त्रिपुरा से हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: आपको प्रणाम है।
0: आपको भी प्रणाम है। नाम और कहाँ से बोल रहे हैं जरा बता दीजिए।
1: पहड़िया वाराणसी उत्तर प्रदेश अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: वाह भाई बढ़िया। तो ये नाम परमानेंट लगा रखा है अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का?
1: जी जी जी, जब भी फरमाइश भेजता हूँ मैं वाराणसी से, वाराणसी का रहने वाला हूँ, तो यही बोलता हूँ श्रोता दंपति अनिल, जैसे मेरा नाम है अनिल गुप्ता गोंड और वाइफ का नाम है रमा गुप्ता गोंड।
0: तो

0: बहुत
1: श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता को
0: जी बहुत बढ़िया आपने स्पष्ट कर दिया। तो बताइए अनिल जी और रमा जी के क्या हाल है और बनारस का क्या हाल है?
1: जी बनारस में तो इस समय तो मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बरसात हो रही है। दो तीन दिन पहले तो बहुत गर्मी थी।
0: तो अब जरा बताइए कि बारिश हो रही है बनारस में, गंगा जी हैं, तो इस समय क्या बाढ़ आई है उसमें उफान पर है या नॉर्मल है नदी?
1: नहीं नहीं अभी उतना नहीं है। जब एक्चुअल में जब ये उत्तराखंड में बरसात बहुत तेज होती है तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है, लेकिन अभी इधर बरसात तो उतनी हुई नहीं जितनी उम्मीद रहती है हर साल, तो उतनी बरसात इधर उत्तर प्रदेश में कम हुई है बरसात।
0: जी बनारस में जो गंगा आरती होती है शाम को उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, आप जरा बताइए क्या होता है उसमें?
1: गंगा आरती में एकदम बहुत बड़े बड़े वो दीपक टाइप के लेके उसमें हवन सामग्री जलाई जाती है।
0: गंगा जी में नौका विहार का भी एक अलग आनंद होता है, तो आपने कभी नौका विहार किया है वहाँ रहते हुए?
1: कई बार किए हैं। चलो मैं तो पहाड़िया क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन मैं गंगा जी में 78 में बनारस में आया था, मैं पहले दिल्ली में रहता था, तब से बहुत बार मैंने गंगा जी स्नान किया है, पूजा पाठ और आरती देखी गई है। मैं रहता हूँ वहीं बगल में सारनाथ है।
0: अरे वाह क्या बात।
1: तो सारनाथ में जैसा आप जान ही रहे हैं कि अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है म्यूजियम में।
0: फिर बनारस का पान, बनारस की चाट बहुत मशहूर है, और बनारस मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का लोकगीत बहुत मशहूर है, बनारस की ठुमरी बहुत मशहूर है। तो इनमें से आपको क्या शौक है? क्या बनारस की ठुमरी या बनारस का कोई लोकगीत याद है, सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: कजरी जो है, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
0: अरे वाह क्या बात।
1: मिर्जापुर कैला गुलजार हो।
0: तो गा के सुनाई गनवा।
1: मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
0: बहुत बढ़िया, बताइए कौन सा गाना?
1: देखिए बरसात का मौसम है तो मल्हार राग पर एक गाना था लगान फिल्म के, नर गनर घेरा बदला, ए आर रहमान जी जावेद अख्तर जी के बाद में लिखल।
0: बेहतरीन गाना चुना है बारिश के मौसम के अनुरूप। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है। अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। नमस्कार मैम जी।
0: क्या बात है भाई, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कुंडलिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: क्या बात है भाई, बरेली से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी मैम जी, आपसे लगता है हमारी पहली बार बात हो रही है।
0: जी जी बरेली का नाम एक गाने में आता है, कौन सा गाना है याद है क्या आपको?
1: हाँ जी, साया मूवी का है, झुमका घेरा रे
0: बरेली के बाजार में। और बरेली की और कोई खासियत हो तो बताइए आपके नजर से।
1: बरेली की खासियत एक जरी के नाम से जाना जाता है, और एक नया काम चल रहा है, राम वाटिका जो रामायण में दिखाया गया वो सभी बनने आया है मैम जी।
0: अच्छी बात है। और अपने काम काज के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: मैम जी अभी तो खैर हमारे मकान का काम चल रहा है, वैसे तो हम भी जरी का ही काम करते हैं।
0: जरी का काम करते हैं, मतलब जरी वाली साड़ियाँ तैयार करते हैं या और दूसरी तरह के कपड़े, कुर्ते क्या बनाते हैं?
1: मैम जी हम सूट भी बना लेते हैं, साड़ियाँ भी बना लेते हैं, आए पर शेरवानी भी बना लेते हैं, कलियाँ भी बना लेते हैं, और जो साड़ी होती है रेशम करदाना मोती ये भी बना लेते हैं।
0: तो जरी के किस काम की ज्यादा मांग होती है, क्योंकि आजकल लोग सादा पसंद करते हैं ना ज्यादातर?
1: सबसे ज्यादा डिमांड होती है लहंगा चुन्नी की
0: शादियों में।
1: हाँ मैम जी
0: बताएं कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा दिलवाले, गाने के वो रहेंगे सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरी हो रही आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक वे हमें कृपया फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें कॉल करने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2876-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662। मुंबई का एसटीडी कोड 022। और अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छायकीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्रेम कभी भी अग्नि परीक्षा नहीं बनना चाहिए, ना ही उसे समर्पण के प्रमाण देने पड़े कभी। क्यों है ना? क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा में दो नहीं रहते। हाँ, प्रेम की पराकाष्ठा में दो नहीं रहते, केवल एक प्रवाह रह जाता है बस।

कठिन नहीं होता, हम उसे कठिन बना देते हैं। हम सोचते हैं कि प्रेम बदल गया, प्रेम करने वाला बदल गया, पर शायद प्रेम नहीं बदलता। उसके साथ जुड़ी अपेक्षाएं बदल जाती हैं, उसके साथ जुड़ी उम्मीदें बदल जाती हैं।

कभी कभी हमारे भीतर जो चलता है वो शब्दों में कम और खामोशी में ज्यादा होता है। हमारा मन बहुत परतों में बटा होता है। ऊपर ऊपर हंसते हुए भीतर कहीं एक कोना ऐसा होता है जहां हम अपने असली रूप में होते हैं, थके हुए से, चुप चुप और कभी कभी बेहद अकेले भी। कभी

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। कभी कभी जीवन में कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय एकांत के। हाँ, बस चार दीवारें, एक खिड़की, छोटा सा रोशनदान, हल्की सी रोशनी और भीतर की आवाजें। हाँ, भीतर की आवाजें अच्छी लगती हैं तब, क्योंकि वहाँ कोई अभिनय नहीं होता, कोई भूमिका निभानी नहीं पड़ती। बस अपने भीतर के उन हिस्सों को हम सुन सकते हैं जिन्हें हमने वर्षों से टाल रखा होता है। तब आप खुद से भाग नहीं रहे होते, बस अपने भीतर लौट रहे होते हैं।

एक उम्र के बाद शोर वाला नहीं सुकून वाला प्यार चाहिए होता है ना? ऐसा प्यार जो मुश्किलों से भागे नहीं, ऐसा प्यार जो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में मौजूद हो, ऐसा प्यार जो आत्मा को थकाए नहीं, ऐसा प्यार जो हमको रुलाए नहीं बेवजह, ऐसा प्यार जो अच्छा नहीं बल्कि सही हो, हाँ बस सही हो, ऐसा प्यार।

कहते हैं रिश्ते किसी तूफान की तरह नहीं टूटते, ज्यादातर गिरावटें बिना आवाज की होती हैं। हम उम्मीदों की टोकरी अपने सर पर लिए घूमते हैं और हर उम्मीद हर रोज किसी तारे की तरह टूटकर बिखर जाती है, और साथ ही बिखर जाती है हमारी जिंदगी भी।

0: फिर मिलूंगी। नमस्कार।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली। प्रायोजक हैं देवदर्शन।

0: श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: आज के इस प्रोग्राम की पहली पेशकश लीजिए सुनिए।

0: जब जब फूल खिले, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
3: जी।
2: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तराने नए पुराने।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

अभिजीत और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत खिलाड़ी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। देव कोहली ने इसे लिखा और जतिन ललित का संगीत। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम तराने नए पुराने विविध भारती से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिस्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रुपए के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर MV फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है।

0: ने अमरीका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमरीकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमरीकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से दो दिन में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती प्रोग्राम तराने नए पुराने के शेष गीत लीजिए सुनिए।

0: किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे गोलमाल फिल्म से, गुलजार ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज थी।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तराने नए पुराने।

0: येसुदास और हेमलता की आवाजों में चित्त चोर फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और उन्हीं का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम तराने नए पुराने यहीं संपन्न होता है।
1: तराने नए पुराने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच मेलबर्न में वैश्विक शिखर वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे साझेदारी के नए युग की शुरुआत बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती जिला पुलिस अधीक्षकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों को कर चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और दक्षिण पश्चिम मानसून आगमन के एक सप्ताह के भीतर प्रदेश भर में छाया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों पर खुशी जाहिर की है। आज मेलबर्न में शिखर सम्मेलन के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया आपसी विश्वास के नए और व्यापक युग में प्रवेश कर चुके हैं। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए सहयोग को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के सहयोग को नई ऊंचाई मिली है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय की नई शाखाएं बेंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर वैश्विक समाधान निकाल सकते हैं।
1: AI मिशन, क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने $10 बिलियन से ज्यादा का सपोर्ट दिया। हम डेटा सेंटर, AI, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं।
0: श्री मोदी ने मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आज का भारत विकास और प्रगति में विश्वास रखता है।
1: भारत में पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑस्ट्रेलिया के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अनेक संभावनाएं हैं। आज भारत में नेशनल हाईवेज लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से बन रहे हैं। हर दिन 8 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक्स लगाए जा रहे हैं। यह स्केल, स्पीड और स्टेबिलिटी तीनों का संगम है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें राजस्थान सहित सीमा से जुड़े विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी सम्मेलन में मौजूद रहे। सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा, घुसपैठ और अवैध प्रवासन, अपराधों पर लगाम और आबादी

0: बात कही है। आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII की ओर से आयोजित शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि AI का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता, दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस मौके पर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन ने बताया कि भारत वर्तमान में लगभग आधे वैश्विक क्षमता केंद्रों की मेजबानी करता है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि लोगों के प्रयासों से मिली है। कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत अब तक देश भर में किसानों को 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता मिली है, जिनका मूल्य करीब 9,400 करोड़ रुपए से अधिक है। कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन साल 2014-2015 में शुरू किया गया था। इसमें फसल उत्पादन चक्र के दौरान खेती किसानी के लिए मशीनों, उपकरणों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा मेडिकल कॉलेज में कॉटेज वार्ड का शिलान्यास किया। उन्होंने नवनिर्मित PG हॉस्टल का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री बिरला ने कहा कि कोटा मेडिकल कॉलेज में कई बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और आने वाले 2 सालों में इसे बेहतरीन संस्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कॉटेज वार्ड की सुविधा से उन मरीजों को काफी राहत मिलेगी जिनका लंबे समय तक इलाज चलता है।
1: कोटा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो मरीज लंबे समय के लिए इलाज कराने आते हैं और जिनको लंबे समय इलाज की आवश्यकता पड़ती है, उन मरीजों के लिए 90 कमरों का क्यूबिकल और कॉटेज वार्ड बनेगा ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी लंबे समय इलाज करने की सुविधा यहाँ पे हो। और उसके साथ आने वाले समय के अंदर इस चिकित्सा परिसर के अंदर जो भी मूलभूत आवश्यकता है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बना गई है ताकि ये वातावरण भी यहाँ पे स्वच्छ रहे, हरा भरा भी रहे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की आज बैठक की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में उन्होंने चालू वित्त वर्ष के लिए राजस्व लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कर चोरी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। इस बीच प्रदेश में कर चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज कई फर्मों के ठिकानों पर सर्च कार्रवाई की गई। राज्य GST और वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से पाली के सोजत में मेहंदी कारोबार से जुड़े समूह पर यह कार्रवाई हुई। इसमें करीब 35 करोड़ रुपए की कर चोरी की आशंका है। प्रदेश में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित और प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। अब तक 38 लाख से ज्यादा लोगों को इन शिविरों से फायदा पहुंचा है। इसी कड़ी में बालोतरा के खारी गांव के शिविर में एक ही परिवार के 53 खातेदारों के बीच वर्षों से लंबित भूमि बंटवारा प्रकरण आपसी सहमति से सुलझ गया। वहीं शहरी सेवा शिविरों के जरिए भी लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। पाली में PM स्वनिधि योजना के तहत शिविर में 300 से ज्यादा पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की आज समीक्षा की गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने JJM के कामों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर घर जल प्रमाणन, सुजलाम भारत ID और 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के परीक्षण में तेजी लाने को कहा। मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर मिशन की नियमित समीक्षा करने और गांवों में जल गुणवत्ता परीक्षण करने, साथ ही सामूहिक भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। भरतपुर में आज महिला संवाद और सम्मान समारोह रखा गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही उन्हें अधिकारों और कानून की जानकारी दी। महिलाओं को साइबर अपराध, सोशल मीडिया सुरक्षा, घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से बचाव के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने महिला सुरक्षा और जागरूकता के लिए उल्लेखनीय काम करने वाली 39 महिला स्वयंसेवकों को सम्मानित किया। उधर पाली में भी पुलिस और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम रखा गया। पुलिस अधीक्षक मोनिका सैन ने महिलाओं को आत्मरक्षा का भी अभ्यास करवाया।

0: दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश भर में सक्रिय है। 2 जुलाई को प्रवेश के बाद लगभग एक हफ्ते में मानसून पूरे प्रदेश में छा गया है। मानसून के कारण अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं अच्छी बरसात हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल भरतपुर और उदयपुर संभाग के कई हिस्सों में 3 इंच तक पानी बरसा। विभाग ने 10-11 जुलाई तक तेज बारिश का दौर बने रहने की चेतावनी जारी की है। कल भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। भरतपुर में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। 31 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट बताया गया है। जून महीने से अब तक प्रदेश के 7 जिलों में असामान्य, 11 जिलों में अत्यधिक, 18 में सामान्य और 5 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। जल संसाधन विभाग के अनुसार बारिश के साथ ही प्रदेश के बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है। छोटे बड़े कुल 693 बांधों में से फिलहाल 412 बांध आंशिक रूप से भरे हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने और आउटरीच रणनीति को बढ़ाने पर आज जयपुर में विचार विमर्श किया गया। पत्र सूचना कार्यालय जयपुर के निदेशक अनुभव बैरवा की अध्यक्षता में अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में एकीकृत मीडिया आउटरीच पर जोर दिया गया। बैठक में उत्तर पश्चिम रेलवे, श्रम विभाग, इग्नू, भारतीय मानक ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में जैसलमेर में भ्रामक लेबलिंग और नामी ब्रांड के उत्पादों की कॉपी के संदेह पर एनर्जी ड्रिंक की 8,000 कैन जब्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कृष्णाराम कड़वासरा ने बताया कि सभी नमूनों को जोधपुर की प्रयोगशाला में भेजा गया है। उधर कोटपुतली बहरोड जिले से भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 10,000 से अधिक एनर्जी ड्रिंक की बोतलें जब्त की। नीमराणा में 150 किलो सिंथेटिक पनीर भी जब्त किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच मेलबर्न में वैश्विक शिखर वार्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे साझेदारी के नए युग की शुरुआत बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती जिला पुलिस अधीक्षकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों को कर चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और दक्षिण पश्चिम मानसून आगमन के एक सप्ताह के भीतर प्रदेश भर में छाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख संदीप केडिया ने तैयार किया है। जिले में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में योग शिविर आयोजित किए गए। बड़ी संख्या में लोगों ने योग अभ्यास कर नियमित योग को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। इसी दौरान महेश नवमी, निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ पूर्णिमा, कबीर जयंती और मुहर्रम के अवसर पर जिले में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच यमुना जल परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस परियोजना के तहत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हरियाणा से यमुना का पानी झुंझुनू, सीकर और चूरू तक पहुंचाया जाएगा। परियोजना से शेखावाटी क्षेत्र के लंबे समय से चले आ रहे पेयजल संकट के समाधान की उम्मीद बढ़ी है। जिले में इस समझौते का स्वागत किया गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने झुंझुनू में कहा कि इस वर्ष भूमि अधिग्रहण और अन्य प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी तथा आने वाले समय में क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए पानी पर्याप्त उपलब्ध होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने झुंझुनू जिले के पचलंगी गाँव में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, योग और भगवान श्री राम के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए समाज में संस्कार और सेवा की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरा होने पर आयोजित सहकार सप्ताह के दौरान जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग की अध्यक्षता में हुई।

0: बैठक में सहकारी समितियों की योजनाओं, गोदाम निर्माण और पैक्स कंप्यूटरीकरण की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने किसानों तक सहकारिता योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। जिले में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबी जी रामजी योजना का शुभारंभ पातुसरी में किया गया। विधायक राजेंद्र भांबू ने बताया कि नई व्यवस्था में पात्र श्रमिकों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा तथा मजदूरी का भुगतान निर्धारित समय में किया जाएगा। योजना में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण जैसे कामों को प्राथमिकता दी गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने कहा कि विकास कार्यों के चयन में ग्राम सभाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी तथा भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जिले भर में स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय और अन्य विभागों के सहयोग से विशेष अभियान चलाया जाएगा। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि घर घर सर्वे कर मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट किया जाएगा और विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला मुख्यालय पर आयोजित जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले 96 भामाशाहों और 29 प्रेरकों का सम्मान किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने बताया कि पिछले एक वर्ष में जिले के भामाशाहों ने सरकारी विद्यालयों के विकास के लिए 8.5 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग दिया है। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर आर रवि बाबू ने बिट्स पिलानी में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संचालित फॉडर पैलेट परियोजना की समीक्षा की। परियोजना का उद्देश्य कृषि अवशेषों से पशु चारा तैयार कर किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। उन्होंने परियोजना को ग्रामीण उद्यमिता के लिए उपयोगी बताया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मेरा युवा भारत अभियान के तहत जिले में युवाओं का पंजीकरण किया जा रहा है। जिला युवा अधिकारी मधु यादव ने बताया कि महाविद्यालयों, विद्यालयों, ITI और अन्य संस्थानों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक युवा इस अभियान से जुड़ सके। इसी के साथ झुंझुनू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत और ऑस्ट्रेलिया रा प्रधानमंत्रियों बीच ऑस्ट्रेलिया रा मेलबर्न माय शिखर वार्ता भी प्रधानमंत्री मोदी इनने साझेदारी रा नुआ दौर री शुरुआत बताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रे सदारत माय राजस्थान समेत राज्यों और केंद्र रा राज वाला प्रदेशों रा सरहदी जिला रा SP री नवी दिल्ली माय मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आमदनी हासिल करण जुड़िया महकमा ने कर चोरी करण वाला रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई रा हुक्म दीना और आखर राज्य माय चौमासा रे बिरखा सरूफी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज दोनों देशों बीच मजबूत रिश्ता माथे खुशी जाहिर कीनी है। आज मेलबर्न माइफिया शिखर सम्मेलन पाछे दोनों प्रधानमंत्री भेड़ो बयान जारी कीनो। बयान माए वह कहो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूजा माथे भरोसा रा नुआ दौर माए दाखिल भे क्या है। दोनों नेता क्षेत्रीय थरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार सारू सहयोग ने अंतिम रूप दिनो। प्रधानमंत्री मोदी बतायो कि दोनों देश यूरेनियम रिपूर्ति और खास खनिज गलियारा ऊँ चुड़िया ऐतिहासिक करार माथे ही सही कीनी। भणाई लिखाई रा हल्का माई एक दूजारी मदद री सोच रा तेत बेंगलुरु और गुरुग्राम माए ऑस्ट्रेलिया रा विश्वविद्यालय री नुवी शाखावा खोली चावेला।
2: AI मिशन, क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने $10 बिलियन से ज्यादा का सपोर्ट दिया। हम डेटा सेंटर, AI, क्वांटम, सेमीकंडक्टर

0: सेक्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं।
1: श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय ने संबोधित किया। वे कहो कि 21वीं सदी रो भारत विकसित देश बनवा ओड़ी बढ़ रियो है और मौजूदा दौर रो भारत विकास और बरकत में भरोसा रखे है।
0: भारत में पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑस्ट्रेलिया के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अनेक अनेक संभावनाएं हैं। आज भारत में नेशनल हाईवेज लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से बन रहे हैं। हर दिन 8 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक्स लगाए जा रहे हैं। यह स्केल, स्पीड और स्टेबिलिटी तीनों का संगम है।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में देश रा सरहदी जिला रा पुलिस अधीक्षक रा सम्मेलन री सदारत कीनी। सम्मेलन में राजस्थान समेत सरहदों लाग्योड़ा न्यारा न्यारा राज्य और केंद्र रा राजवाड़ा प्रदेश रा जिला रा एसपी और गृह मंत्रालय रा आला अहलकार शामिल भया। सरहदी जिला में हिफाजत, घुसपैठ और अवैध प्रवासन, अपराधा माथे लगाम और आबादी में बदलाव री जानकारी सारू ओ सम्मेलन राखी चियो। इस आगे नशीली चीजा री तस्करी और ड्रोन रे कारण उपजा खतरा माथे आंकस लगावन रा जतन रे बारा में विचार करी चियो। ध्यानजोग है कि केंद्र सरकार कुछ समय पहले देश रा न्यारा न्यारा हलका माए आबादियों जुड़िया बदलाव री ठाकरण और इनरा कारणा री पिछाण सारू आला दर्जा री समिति बनाई ही। केंद्र सरकार भारत ने एआई रा वैश्विक केंद्र रा तौर सामी लावण सारू सगला जरूरी जतन कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई री ओर राखी ज्या शिखर सम्मेलन में आ बात कही। वे कहो कि एआई ने न्यारा न्यारा हलका में उत्पादकता, दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ावन सारू काम ली जा रही है। कृषि यंत्रीकरण उप मिशन राते थालताई देश में किसाना ने 9400 करोड़ रुपयों बत्ता मोल री खेतीबाड़ी जुड़ी 22 लाख मशीना देवण माए मदद करी ची है। खेती किसानी रा काम माए मशीना काम लेवण ने बधावो देवण सारू साल 2014-15 माए ओ मिशन चलाई चियो हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा मेडिकल कॉलेज में कॉटेज वार्ड बनावन रा काम री नींव रखी और नुओ बनाई चियो पीजी हॉस्टल जनता ने सौंपियो। इस मौके बिरला कहो कि कोटा मेडिकल कॉलेज में बुनियादी सुविधा और बधाया जावेला और आवता 2 साल में इनने इलाज जुड़ी भणाई लिखाई रो बेहतरीन संस्थान बनावन री कोशिश करी जावेला। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कहाँ लोकसभा अध्यक्ष कहो के लंबा बगत ताई इलाज करावन री जरूरत वाला मरीजा ने आ कॉटेज वार्ड नू घणी साता मिलेला।
2: कोटा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो मरीज लंबे समय के लिए इलाज कराने आते हैं और जिनको लंबे समय इलाज की आवश्यकता पड़ती है, उन मरीजों के लिए 90 कमरों का क्यूबिकल और कॉटेज वार्ड बनेगा ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी लंबे समय इलाज करने की सुविधा यहाँ पे हो। और उसके साथ आने वाले समय के अंदर इस चिकित्सा परिसर के अंदर जो जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बना गई है ताकि ये वातावरण भी यहाँ पे स्वच्छ रहे, हरा भरा भी रहे।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आमदनी हासिल करण जुड़िया महकमा रा अहलकारा सागे आज मीटिंग कीनी। वे चालू माली साल रा आमदनी रा लक्ष्य टेम सर हासिल करण बाबत कहो। श्री शर्मा कर चोरी रे खिलाफ असरदार कार्रवाई करण सारू कहो। इ बीचे प्रदेश में कर चोरी रे खिलाफ चलाया जा रहा खास अभियान रा तहत आज कई कारोबारी फर्मा रा ठिकाना माथे खोजबीन करी जी। राज्य जीएसटी और वाणिज्यिक कर विभाग री ओर पाली जिला रा सोजत माए मेहंदी रा कारोबार जुड़िया समूह रा ठिकाना माथे आ कार्रवाई करी जी। महकमो करीब 35 करोड़ रुपया री कर चोरी री शंका जताई है। प्रदेश में लगाया जा रहा ग्रामीण सेवा शिविर में हाल तई 38 लाख बत्ता लोगों ने फायदो मिलो है।

बालोतरा जिलारा खारी गांव माई लगाई चिया शिविर माई एक ही परिवार रात 53 खातेदारा बीच है। बरसाऊ चाल रहा जमीरा बंटवारा जुड़ियों मामलो आपसी सहमति सुलझा लियो चियो। शहरी सेवा शिविरां रे जरिए ये जनता री समस्यावां आगे करी जा रही है। पाली माई लगाई जा शिविर माई 300 पात्र लोगों ने पीएम स्वनिधि योजना रो फायदो दियो चियो। प्रदेश में जल जीवन मिशन रा तहत चलाई जा रही परियोजनावां रा काम रो जायजो लेवन सारू मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज अहलकारां सागे मीटिंग कीनी। वे जेजेएम रा तहत कामां ने ते भगत माए पूरा करन रा हुकम दीना। मुख्य सचिव हर घर जल प्रमाणन सुजलाम भारत आईडी और 100 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाली परियोजनावां रा परीक्षण माए तेजी लावन सारू कहो। भरतपुर में आज महिला संवाद और सम्मान समारोह राखी जियो। इन माए पुलिस रा अहलकार महिलावां री समस्यावां सुनी। कार्यक्रम में मौजूद महिलावां ने वारा हक और कानून रे बारा माए जानकारी दीरी जी। ईसा गई वाने साइबर अपराध सोशल मीडिया हिफाजत घरेलू मारपीट और उत्पीड़न बचाव रे बारा माए बताई जियो। कार्यक्रम में एसपी राजेश मीणा महिलाओं की हिफाजत और वहां माए जाग जगावन सारू बेहतरीन काम करने वाली 39 महिला स्वयं सेवकों रो मान कीनो। पाली माई पुलिस और महिला अधिकारिता विभाग री ओर महिला सुरक्षा संकल्प अभियान रा तहत कार्यक्रम राखी जियो। इन माए एसपी मोनिका सेन महिलाओं ने खुद री हिफाजत रा तरीका रो अभ्यास करायो। मौसम प्रदेश में 2 जुलाई ने शुरू हुई चौमासारी बिरखा अब आखा राज्य में वेवन लगी है। मौसम विभाग ने मुजब काल भरतपुर और उदयपुर संभाग रा कई हलका माए 3 इंच ताई पानी बरसियो। महकमो 10-11 जुलाई ताई तेज बारिश रो दौर चालतो रहवन रा आसार जताया है। काल भरतपुर जयपुर और कोटा संभाग माए हल्की मझला दर्जा री बिरखा री संभावना है। भरतपुर माए कठे कठे जोरदार में वेवन रा आसार है। 31 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट जारी करी चियो है। जून महीनाओं हाल ताई राज्य रा 7 जिला माए घनी जबरदस्त 11 जिला माए जोरदार 18 माए सामान्य और 5 जिला माए सामान्य कम पानी बरसियो। जल संसाधन विभाग रे मुजब राज्य में चौमासारी बिरखा स्वरूप वनसा गई। छोटा मोटा कुल 693 बंधा मायों फिलहाल 412 माए पानी आवन लग्यो है। बांसवाड़ा जिला रा मैनादर गांव माए जमीरा झगड़ा माए एक ही परिवार रा 7 जना जख्मी हो गया जाने जिला अस्पताल माए भर्ती कराई चिया है। घना जख्मी 2 जना ने इलाज सारू उदयपुर रेफर करी चिया है। पुलिस रे मुजब 2 पार्टियां बीचे व्या झगड़ा माए एक ही परिवार रा 11 जना मत है घर माए घुसर हमलो करी चियो। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान रा तहत राज्य में न्यारी न्यारी ठोड़ा खान पीन री सामग्री री जांच करी जा रही है। जैसलमेर माए भरमावण वाली लेबलिंग और नामी ब्रांड रा सामान री नकल री शंका माए एनर्जी ड्रिंक री 8000 कैन जब्त करी ची। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कृष्णा राम कड़वासरा बतायो कि सगड़ा नमूना ने जांच सारू जोधपुर री प्रयोगशाला माए भेजी चिया है। कोटपुतली बहरोड जिला में आए खाद्य सुरक्षा अहलकार एनर्जी ड्रिंक री 10000 बत्ती बोतल जब्त कीनी। नीमराणा में करीब 150 किलोग्राम नकली पनीर जब्त करी चियो। केंद्र सरकार रा खास कार्यक्रम और योजनावां री जानकारी जनता ताई पुगावण और आउटरीच रणनीति ने बढ़ावो देवण रे बारा माए आज जयपुर माए विचार करी चियो। पत्र सूचना कार्यालय जयपुर रा निदेशक अनुभव बैरवा री सदारत माए अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति री मीटिंग राखी ची। इन माए सरकारी योजनावां री जानकारी जनता ताई पुगावण रा काम माए एकीकृत मीडिया आउटरीच माथे जोर दियो चियो। बैठक माए उत्तर पश्चिम रेलवे श्रम विभाग इग्नू भारतीय मानक ब्यूरो आकाशवाणी और दूरदर्शन रा अहलकार शिरकत कीनी। आखिर माए खास समाचार एक और फेरु सुन ले रहो। भारत और ऑस्ट्रेलिया रा प्रधानमंत्रियां बीचे ऑस्ट्रेलिया रा मेलबर्न माए शिखर वार्ता भी प्रधानमंत्री मोदी अणना साझेदारी रा नुआ दौर री शुरुआत बताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह री सदारत माए राजस्थान समेत

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: फिल्म लक्ष्य से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौड़ और साथियों की आवाजों में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा था, शंकर एहसान लॉय का संगीत था। लीजिए अब सुनते हैं भारतीय सेना गीत कैलाश खेर की आवाज में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत कैलाश खेर की आवाज में, और अब जयमाला में वक्त है इस गीत का। किशोर कुमार ने इसे गाया है, बेमिसाल फिल्म से हमने इसे चुना है। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, आर डी बर्मन की तर्ज।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जयमाला।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अभिलाषा फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे कारवां फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना ज़रूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जयमाला, और वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
3: बनाऊंगी। वैसे मैं बीच बीच में थोड़े रोमांटिक वीडियो बनाती हूँ, डांस के भी वीडियो बनाती हूँ। डांस का शौक मुझे बहुत है बचपन से, मतलब मेरी मम्मी के पेट में ही मैं डांस करती थी। रियली सच में पहले ऑर्केस्ट हुआ करते थे, उस ऑर्केस्ट में मेरी मम्मी पापा जाते थे और ज्यादा करके जॉनी लीवर जी है ना हमारे कॉमेडी किंग, तो उनके शो बहुत देखते थे।
4: ओके
3: हाँ, लाइव शो। तो आई थिंक सो मुझे भी ऐसा लगता है कि
4: वहीं से कीटाणु
3: आई हूँ मैं, ऐसे खुद को मानती हूँ।
4: ओके ठीक है। तो इतनी सारी नौटंकी बचपन से ही थी?
3: ऑफकोर्स बचपन से कभी मैंने इतना शो नहीं किया था, लेकिन जब ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जैसे कि टिकटॉक आया था।
4: नहीं, स्कूल कॉलेज के जमाने में क्या चल रहा था?
3: बहुत जोक करती थी, बहुत। अच्छा? हाँ, बहुत बहुत जोक करती थी। कार्टून टाइप, मुझे कार्टून बनना बहुत पसंद है। लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्या ये क्या बोल रही है, लेकिन सच बोलूं, मैं दिल से बोल रही हूँ, मुझे कार्टून बनना बहुत पसंद है ताकि मैं लोगों को हंसाऊं।
4: अच्छा।
3: जैसे अभी बीच में जैसे कोरोना आया था 2020 में, और बहुत मतलब लोग पीड़ा में थे, पता है आप लोगों को क्या सिचुएशन थी उस वक्त। तो ये जो टिकटॉक था बहुत वायरल हुआ था, तो मैंने सोचा चलो यार यहाँ से कुछ तो करते हैं, लोगों को ऐसे बोलना चाहती हूँ कि मैं उनको हंसाना चाहती हूँ, क्योंकि लोग बहुत टेंशन में थे, काम नहीं करते थे, घर में ही बैठे थे लोग, बाहर तो निकलना मुश्किल ही था। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से ही मैं लोगों को हंसाती हूँ, सच दिल से बोल रही हूँ, मुझे लोगों को हंसाना बहुत पसंद है।
4: तो ये आइडियाज कहाँ से आते हैं? जैसे किसी गाने का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर कुछ कर दिया, कोई डायलॉग उठाया, उसके ऊपर कुछ कर दिया।
3: पता नहीं, खुद से ही आता है, बोले ना मैं बॉर्न हूँ, कॉमेडी का कीड़ा बैठा है मेरे अंदर। मुझे खुद ही नहीं पता था कि ये मैं कैसे कर रही हूँ। पहले तो मैं एकदम नॉर्मल, मैंने आपको बताया, नॉर्मल वीडियो बना दी थी, और फिर बाद में पता नहीं मेरी शक्ल ही वैसी दिखती होगी।
4: नहीं, नॉर्मल वीडियो में भी कुछ कॉमेडी जैसा?
3: ऑफकोर्स हाँ, मतलब उसमें मैं कुछ ना कुछ मेरा मसाला डाल देती हूँ।
4: अच्छा।
3: हाँ, समझो अभी कुछ गाना रोमांटिक हो, ठीक है, तो उसके बाद और कुछ उसमें ऐड कर लूँ क्या, अपनी शक्ल टेढ़ी मेढ़ी करके, लोगों को वही चाहिए ना आजकल। कोई कोई बोलता है यार क्या यही, बट वही लोगों को पसंद आता है, ओवर एक्टिंग।
4: जब पहली बार आपका कोई वीडियो, आपने बताया कि आपने अपनी बेटी के साथ किया था और वो धीरे धीरे लोकप्रिय होता चला गया था, क्या रिस्पांस था आपका कि ये, क्योंकि पहले तो रिस्पांस मिल नहीं रहे थे?
3: नहीं, बिल्कुल।
4: फिर अचानक कोई वीडियो चल गया, तो कैसा लगा था और उसके बाद क्या हुआ?
3: अमेजिंग, सच बोलूं मुझे खुद नहीं पता था। नॉर्मल मतलब बेबी स्कूल से आई थी, ठीक है, उसको मुझे खाना खिलाना था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाते। तो मैंने क्या किया, जो एक गाना था ना, कब आओगे कब आओगे, उसके ऊपर मैंने एक रील्स बनाई, कान में फोन लगाया और मैं ऐसे दिखा रही थी मेरे हस्बैंड को मैं कॉल कर रही हूँ कि तुम कब आओगे और इस परेशानी से मुझे छुटकारा पाओ, मतलब बच्चे। अच्छा। आएगी, उसको खाना खिलाना, उसका सब कुछ कर देना। मैं खुद परेशान हो गई थी कि तू यहाँ पे कब आएगा और इसको संभालेगा। तो ऐसा मैंने कुछ सिचुएशन के हिसाब से वो जो गाना था वैसे मैंने वो एक्ट किया था।
4: एक्ट नहीं किया था, वो चेहरा ऐसा वैसा बनाया था पूरा।
3: Yes.
4: तो ये कहाँ से आता है ये कि ऐसा चेहरा कर लो, ये बड़ी बड़ी आंखें कर लो इस गाने में, जबकि गाना बड़ा डिफरेंट टाइप का,
3: बहुत डिफरेंट टाइप का।
4: पर आप जो एक्टिंग करती हो उससे लोगों को हंसी आने लगती है?
3: ऑफ कोर्स आना ही चाहिए ना।
4: अच्छा।
3: आना ही चाहिए लोगों को, एक्चुअली वही तो चाहिए मुझसे, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं कुछ तो करना चाहिए ताकि लोग खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए, और मुझे वही चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि आपकी वीडियो देख के सच में सुकून मिलता है, जो टेंशन रहते हैं जो भी घर में उनका कुछ भी चलता है, तो लोग मेरी वीडियो देखते हैं क्योंकि मेरे कमेंट्स बहुत पॉजिटिव आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो उन्होंने कहा था कि सच में आप बहुत लोगों को हंसाती है और आपके वीडियो देख के हमें बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि ऐसे कमेंट्स आते हैं।
4: अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये टेक्नोलॉजी का दौर बदला और एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आया जिसके जरिए आपको एक नॉर्मल लड़की से एक स्पेशल लड़की की पहचान मिली।
3: हाँ,
4: आप लोकप्रिय हो गई, आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला।
3: yes.
4: तो ये टेक्नोलॉजी के इस दौर को सलाम करना चाहेंगी कि इस टेक्नोलॉजी ने आपको लोकप्रिय बनाया?
3: ऑफ कोर्स, उन्होंने ही मुझे लोकप्रिय बनाया। मेरे जो फैंस है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं जहाँ पे थी और मैं यहाँ तक आई हूँ, मुझे खुद ही बिलीव नहीं होता कि उनका बहुत मुझे सपोर्ट है, बहुत प्यार करते मुझसे, और उनको प्यार देना चाहिए और उनको खुशी देना चाहिए, ये मेरा फर्ज है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस सोशल मीडिया पे।
4: आप टेलीविजन पर एक डांस शो में भी नजर आईं, तो सबसे पहले तो ये कि डांस से क्या रिश्ता था बचपन से, फिर ये कि ये मौका कहाँ से आया?
3: पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं ऑर्केस्ट्रा में पहले जाती थी। पहले शो हुआ करते थे, जैसे गणपति का त्यौहार अभी भी है तो उसमें ना ऑर्केस्ट्रा करती मैं, और फिर बाद में मैं डांस बहुत करती थी। मम्मी बोलती थी कि कर ले तू डांस, तेरे में बहुत हुनर है।
4: किसी से सीखा नहीं था?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं। टीवी पे देखती थी और डांस करती थी अपने हिसाब से, नॉट कॉपी।
4: अच्छा सच सच बताओ, पढ़ाई में कैसी थी? हंस के नहीं, सच सच बताओ।
3: ये क्यों पूछ रहे, मेरी बेइज्जती कर रहे हो? पढ़ाई में ओके ओके थी, इतना नहीं थी, बट मैं एक्टिव बहुत थी स्पोर्ट्स में और डांस।
4: कौन सा खेल खेलती थी?
3: खो खो और लंगड़ी जो रहती है ना, वो मेरा बेस्ट था।
4: ओके चलो, अब डांस की बात कर रहे थे।
3: यस
4: तो करो।
3: मैं बचपन से डांस करती आ रही हूँ, लेकिन अभी तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, तो मुझे लगा मेरा कोई डांस देखेगा नहीं, लेकिन मैं कॉमेडी के साथ साथ अपना डांस भी उसमें अपलोड करती हूँ। डांस करती थी और फिर अपलोड करती थी वीडियो, और फिर लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आता था। और फिर 2024 में आई थिंक सो, मुझे कलर्स चैनल्स के यहाँ से डांस दीवाने के लिए कॉल आया था कि आपका डांस बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ आपके दो वीडियोस हम लोगों को भेज दीजिए, ऐसे बोले। तो
4: बहुत खुशी हुई होगी कि डर लगा था?
3: नहीं नहीं, कुछ डर नहीं, क्योंकि घर में ही करना था ना, स्टेज पे थोड़ी करना था।
4: बिल्कुल,
3: इसीलिए स्टेज पे अलग बात है, घर पे अलग बात है। तो उनको दो वीडियो मैंने अपलोड किया और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर दिया कि आप सिलेक्ट हो गए, आपको डांस दीवाने में चांस मिल गया, आप यहाँ पे आ जाइए। और फिर बाद में उन्होंने मेरा वहाँ पे भी ऑडिशन लिया, जो कि वहाँ पे बहुत सारे कोरियोग्राफर, तब मेरी
4: हालत खराब
3: होगी क्योंकि सामने ही थे ना बहुत सारे लोग, तो थोड़ा डर गई थी, बट कोई बात नहीं, भगवान का नाम लिया और मैं बहुत अच्छे से डांस की और लोगों को सच में बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कौन से गाने पे डांस की पता है आपको? आंटी नंबर वन, पता है गोविंदा जी का?
4: हाँ,
3: उस पे मैंने किया था, साड़ी वीडियो पहन के, और सच में लोगों को पसंद आया, तो वहां से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया।
4: और उसके बाद का सफर कैसा रहा, इतने सारे सेलिब्रिटीज और वो सब?
3: हाँ वो तो अलग ही एक्सपीरियंस था, बाप रे बाप। सबसे पहले तो वहाँ से निकलना मुश्किल था, क्योंकि 5 महीना मुझे वहाँ पे रहना पड़ा।
4: ओके।
3: हाँ, मैं घर बिल्कुल नहीं आती थी, मैं बहुत मेरी बच्ची को मिस करती थी।
4: अरे यार।
3: हाँ, हमारे हर हफ्ते कोरियोग्राफर चेंज होते थे और गाना चेंज होता था, और शो के पहले हमारे रिहर्सल होते थे, एक हफ्ता पूरा रिहर्सल होते थे, और हमारे जो डायरेक्टर है, जो भी चैनल वाले थे, वो हमारा पहले डांस देखते थे, सिलेक्ट करते थे कि कौन सा उसको गाना देना चाहिए, कैसा डांस परफॉर्मेंस करती, ये सब पहले होता था, और फिर उसके बाद हम लोग स्टेज पे आते थे।
4: बहुत ज्यादा मेहनत का काम।
3: बहुत बहुत मेहनत का काम है।
4: किन किन बड़े बड़े कलाकारों से मुलाकात हुई?
3: सबसे पहले तो माधुरी दीक्षित मेरी बहुत बड़ी फैन है, मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ।
4: वो बड़ी फैन है कि तुम बड़ी फैन हो?
3: मैं भी बड़ी फैन हूँ, अभी मुझे पता नहीं वो है कि
4: अच्छा।
3: नहीं, उन्होंने मुझे बोला तो है, बट मैं भी हूँ।
4: उनके सामने भी डांस किया था?
3: हाँ, उन्होंने मुझे मतलब सबके सामने भी पहचाना कि आर यू वर्षा, बोले यस यस यस, तो अलग ही मोमेंट था वो कि उन्होंने मुझे पहचाना। और सुनील शेट्टी जी भी जज थे वहाँ पे, तो हर हफ्ते हम लोग की मुलाकात होती थी, और एंकरिंग का काम भारती जी करते थे, और भारती जी तो बहुत बेस्ट है, भारती सिंह, तो हम लोग का हर हफ्ते मिलना होता था, हम लोग बातें करते थे, और कभी हम लोग को सेल्फी चाहिए होती तो मैडम बुलाती थी, वर्षा आ जा सेल्फी ले ले, और उनके कमेंट्स भी बहुत अच्छे रहते थे, और समझिए उनको पसंद भी नहीं आता था, मतलब कुछ भी मिस्टेक हो जाए ना तो ऐसा कुछ नहीं बोलते थे कि नहीं आपका डांस अच्छा नहीं, ये नहीं, वो बल्कि बहुत अच्छा बोलते थे कि आपका डांस बहुत ही अच्छा है।
4: वाह, तो वो पूरा सफर जो है आज मुड़ के देखती हो तो क्या महसूस होता है?
3: मेरी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई सच में। मैं थोड़ा डिप्रेशन में थी इस शो के पहले, बट मैं वहां से जब निकली मतलब पूरी तरह से मैं चेंज हो गई, मैंने खुद को चेंज कर लिया।
4: वाह,
3: हाँ सच में,
4: क्या बात है। हाँ। और अब लगातार वीडियोस बन रहे हैं और वो लोकप्रिय हो रहे हैं, फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो, कितना बड़ा चैलेंज होता है अपने आप को लगातार एक्टिव बनाए रखना और अपने लोकप्रियता के ग्राफ को कायम रखना।
3: उनको रोज अपडेट देना पड़ता है।
4: रोज के कितने वीडियो बनाने हैं?
3: बहुत बनाती हूँ मैं।
4: बहुत मतलब कितने? हाँ।
3: वैसे मैं बनाती हूँ और ड्राफ्ट में रखती हूँ।
4: अच्छा,
3: ऐसा है, ड्राफ्ट का सिस्टम है उसमें। फिलहाल तो अभी 10-12 बनाती हूँ, पहले तो मैं 20-21 डालती थी वीडियो।
4: बाप रे।
3: हाँ।
4: तो इतना आइडियाज लगातार, मतलब आइडियाज की फैक्ट्री चलती है दिमाग में।
3: हाँ, जैसे गाना आता था तो फटाफट मेरे दिमाग में चलता था कि इसके ऊपर क्या करना है।
4: अच्छा,
3: ऐसा होता था।
4: आइडियाज जो है ये दिन रात सोचते रहना पड़ता है?
3: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जरूरी नहीं।
4: इंस्टेंटली आता
3: है? हाँ, इंस्टेंटली आता है मुझे।
4: अच्छा अच्छा, बताओ अपने सुनने वालों से क्या कहना चाहोगी? इनमें से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा होगा, आपकी रील्स देखी होंगी, तो चलते चलते उनसे क्या कहना चाहेंगे?
3: सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों की वजह से मैं यहाँ तक आई, मुझे लोग पहचानने लगे। अब मैं जब रस्ते पे चलती हूँ ना तो मुझे मास्क लगाना पड़ता है, मतलब बार बार सेल्फी मांगते हैं, तो मुझे वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि यार लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो मुझे खुद समझ भी नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पूरी लाइफ ही चेंज हो गई।
4: इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, बहुत अच्छा लगा विविध भारती पर आपसे बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा।
3: थैंक यू सो मच।

इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डिजिटल क्रिएटर वर्षा सोलंकी से यूनुस खान की ये बातचीत। इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आवाज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में हास्य नाटिका आपको सुनवा रहे हैं कचरे का मालिक, लेखक विनायक शंकर विनय, निर्देशिका रंजीत अहलुवालिया।
1: अरे कुछ समझ में नहीं आता, जहाँ देखो कचरे के ढेर, जहाँ देखो कूड़े के पहाड़। मैं कहता हूँ ये कूड़ा करकट एक दिन सारे घर को बैकुंठ पहुँचाएगा। डब्बू की मम्मी, ओ डब्बू की मम्मी, ओहो, अरे सुनती हो या प्यारी हो गई हो?
2: क्या हो गया जी, क्या हो गया? ओहो, क्या हो गया जो चीख चीख कर मोहल्ला सिर पर उठा रहे हो?
1: मैं पूछता हूँ कि ये घर है या म्यूनिसिपैलिटी की कोठी है? है? अरे यहाँ इंसान रहते हैं या घोड़े? अरे ये कचरा डालने की जगह है बिल्कुल बीच रास्ते में है? लाख बार कहा है कि घर की साफ सफाई रखो, मैं उठाओ इस कचरे को, मैं कहता हूँ उठाओ, उठाओ यहाँ से।
2: मैं क्यों उठाऊं जी इस कचरे को? मैं नहीं उठाऊंगी इसे।
1: तो मैं उठाऊंगा इसे है? अरे दिन भर कचहरी में मारा मारा फिरूं, शाम को घर आकर सफाई करूं है? क्यों नहीं उठाओगी तुम इसे? मैं कहता हूँ उठाना पड़ेगा, उठाओ।
2: मैंने कह दिया ना, नहीं उठाऊंगी, नहीं उठाऊंगी। जिसने फेंका होगा ये कचरा वही उठाएगा इसे। मुझे को डांट रहे हो जोर जोर से, उनसे कहो ना जिनने फेंका है ये कचरा।
1: किन्ने फेंका है, है? तो ये कचरा क्या तुमने नहीं फेंका है? ओहो, किसने फेंका ये कचरा है? बोलो।
2: और कौन फेंकेगा, ऊपर से हुई है बरखा। मैं तो परेशान हो गई हूँ, नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने। जब से आए हैं रोज कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। कल इनके बच्चे ने मेरे ऊपर जूठा पानी डाला,
1: जूठा पानी,
2: और परसों गमला गिरा दिया था। भगवान ने ही बचाया उस दिन तो, वरना मैं तो मर ही जाती।
1: समझा।
2: और आप हैं जो मुझे को,
1: ये इनकी करामात है, है? इनकी ये हिम्मत, कल जूठा पानी डाल दिया, परसों गमला गिरा दिया और आज कचरा फेंक गए हैं। ये शराफत का ये नतीजा है। अरे लाख बार कहा पंडित जी से कि ऐसे वैसे को मकान मत देना किराए से, पर लालची जो ठहरे। आज पंडित जी से इस बात का फैसला ही होगा। 10 साल से इस मकान में रह रहा हूँ पर ऐसी हरकत किसी ने नहीं की। क्या समझ रखा है इन लोगों ने?
2: हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही डांटो। आए हैं उसी दिन से कह रही हूँ कि इन्हें समझा दो। दिन भर इनके बच्चे ऊपर दना दन कूदा करते हैं। हाँ, कल इनके पिता, मेरे पिताजी की तस्वीर दीवार से घिर कर टूट गई,
1: उनका
2: गुर पी कर रह गई। मगर करूँ क्या, जब आप ही कुछ नहीं कहते।
1: आज इस रोज रोज की रामायण का अंत ही होगा। मैं समझता था आदमी शरीफ है, लेकिन अब नहीं सोच सकता इसके बारे में। सोचता था आप ही समझ जाएगा, लेकिन अब मुझे समझाना पड़ेगा बच्चे को है? अरे महीना भर आए को हुआ नहीं और इतने कहर ढा दिए। आज पंडित जी से इस बात का फैसला ही होगा। या तो इन्हें रख लो या हमें रख लो। पंडित जी, ओ पंडित जी। अरे लालची बूढ़े, अरे कहाँ मर गया? ओ पंडित जी, पंडित जी महाराज।
3: क्या है मुंशी जी, क्या बात है?
1: क्या है,
3: क्या हो गया
1: पंडित जी? अरे मैं कहता हूँ आज तो आपको फैसला करना ही होगा।
3: फैसला?
1: हाँ।
3: कैसा फैसला?
1: इस बात का फैसला कि मकान में हम रहें या नहीं है? अरे आप हम पर होने वाली जुल्म ज्यादतियों को रोकेंगे भी या नहीं है? आप मेरे घर को म्यूनिसिपैलिटी की कोठी बनने से बचाएंगे या नहीं? आप मेरे घर को तस्वीरों की सुरक्षित रहने देंगे या नहीं? हाँ
3: है, म्यूनिसिपैलिटी की कोठी, आपके घर की तस्वीरें।
1: हाँ।
3: आखिर बात क्या हो गई मुंशी जी, साफ साफ क्यों नहीं कहते?
1: अजी साफ साफ एक हो तो कह दू, क्या कहूँ साफ साफ। परसों मेरी घरवाली का सिर फूटते फूटते बचा, कल उसके सिर पर ऊपर की गैलरी से जूठे पानी का अभिषेक किया गया, मेरी एक तस्वीर भी टूट गई है। मैं कहता हूँ बताइए ये सब है क्या?
3: शांत होइए मुंशी जी, शांत होइए। आखिर किसने किया ये सब?
1: मैं कहता हूँ कैसे हो जाऊं शांत पंडित जी? अरे मेरे दिल में आग धधक रही है, आग। 10 साल से इस मकान में रह रहा हूँ पर ऐसी हिमाकत किसी ने नहीं की। मैं पूछता हूँ मेरे घर के सामने कूड़ा करकट डालने का किसी को क्या अधिकार है? हाँ,
3: किसने डाला कूड़ा करकट, मुझे बताइए तो सही।
2: और कौन डालेगा पंडित जी, नाक में दम कर रखा है उन पर ऊपर वालों ने, वही फेंक गए मेरे दरवाजे पर कचरा।
3: ऊपर वाले मास्टर साहब ने, वे यहाँ क्यों कर डालेंगे कचरा, आपने देखा था?
2: अजी देख लेती तो डालने वाले के हाथ न तोड़ देती, उनके सिवा यहाँ है ही कौन जो करेगा ऐसी काली करतूत।
1: ये कचरा ही नहीं पंडित जी, जब से आए हैं हर रोज कोई ना कोई नया उत्पात, हर रोज एक नई मुसीबत, लेकिन अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ।
3: पर जरा मेरी तो सुनिए।
1: अरे आपकी तो 10 साल से सुन रहा हूँ पंडित जी है? अरे आज आपको मैं कहता हूँ मेरी सुननी होगी, मेरी। लाख बार आपसे कहा कि देखभाल कर मकान किराए से देना, पर आप जो ठहरे लालची है, न जाने किसी अरे गहरे नत्थू खेरे को धर पकड़ लाए। अरे मैं कहता हूँ पंडित जी, कितनी बार कहा मेरे साढ़ू को मकान दे दो, लेकिन लेकिन आपने एक 10 रुपए के लालच में ऐसे वैसे लोग रख लिए। राम राम राम राम, अब आपके लालच का फल हम लोग भुगत रहे हैं। हे प्रभु हे प्रभु।
4: कौन है जी ऐसा वैसा? मैं ऐसा वैसा हूँ? ऐरा गेरा नत्थू खेरा हूँ, एक घंटे से चुपचाप सुन रहा हूँ तो बिना रुके जबान का टाइपराइटर चलाया जा रहा है।
1: बड़ी मेहरबानी।
4: मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पंडित जी कि आप मेरे लिए इन्हें ऐसी बातें करने देंगे। सोचता था चुप रहूं, पर आखिर कब तक? रोज सुबह शाम की महाभारत मैं नहीं सुन सकता, आज इसका अंत ही होगा।
3: धीरे बोलिए मास्टर साहब, जरा शांति से काम लीजिए, आसपास के लोग सुन रहे होंगे, आखिर हम लोग शरीफ।
4: अरे शराफत गई भाड़ में, ऐसों से शराफत, इनसे शराफत यानी भैंस के आगे बीन बजाना।
1: क्या कहा? मैं भैंस यानी मास्टर साहब, सुन रहे हैं आप मुझसे भैंस कह रहे हैं, भैंस है? अरे जबान को लगाम दो, लगाम है पंडित जी, सुन लिया आपने?
3: अरे आप ये
1: मुझे भैंस कह रहे हैं, भैंस। हाँ मुहावरा।
3: क्या आप भी बच्चों की तरह?
1: मुहावरा, आप तो मैं जानता था कि मुझे ही दबाएंगे। 10 साल की शांतिपूर्ण किराएदारी का ये फल दे रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ इन्हें कुछ कहिए ना, परसों गैलरी से इनके लड़के ने गमला गिराया। क्या गमला? कल जूठा पानी डाल दिया मेरी बीवी के सर पर, और आज कचरा फेंक गए हैं यहाँ। मैं कहता हूँ इन्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म।
4: अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए।
1: आप मुझे आनी चाहिए?
4: आप अपने घर के लोगों की काली करतूतों को तो देखिए।
1: आप देखिए,
4: आपके बच्चे मेरे घर के दरवाजे की सांकल लगा गए, मुझे 2 घंटे परेशान होना पड़ा, मेरे घर के सारे पौधों को नष्ट कर दिया आपकी वानर सेना ने, मेरे गमले तोड़ डाले।
1: अरे मुझे नहीं मालूम ये कुछ, पंडित जी इनसे कह दीजिए कि कचरा यहाँ से फौरन उठा ले जाए।
4: कचरा उठा लूं? मैं कह रहा हूँ मुंशी, होश में बात करो। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? तुम मुझसे अपने घर का कचरा उठाने को कहते हो?
1: कचरा उठाओ।
4: सच मानिए पंडित जी, आपके मुलाजे से गम खा रहा हूँ, नहीं तो ठीक कर देता इस मुंशी को।
1: ये ठीक करेगा?
3: शांत हो जाइए आप लोग, पढ़े लिखे समझदार होकर भी ऐसे झगड़ रहे हैं। मास्टर साहब, क्या आपके घर का है ये कचरा?
4: अजी साहब, इतना कचरा तो मेरे घर दिवाली की सफाई में भी नहीं निकलता, मैं ऐसा दलिद्दर थोड़े ही।
1: क्या कहा? मैं दलिद्दर हूँ? अरे जबान को संभाल कर बात करो मास्टर, उठाओ इस कचरे को यहाँ से, उठाओ।
4: खबरदार तो मुझे फिर कचरा उठाने को। ये कचरा मेरे घर का हो ही नहीं सकता।
1: मैं कहता हूँ
4: इसी गंदगी और मेरे घर में, ये सिगरेट के पैकेट, ये बीड़ी के बंडलों के फोतरे, टूटे हुए अंडे, मैं पीता हूँ सिगरेट बीड़ी, मैं खाता हूँ अंडे।
1: तो क्या मैं पीता हूँ बीड़ी, मैं खाता हूँ अंडे? अरे मेरी तो 7 पीढ़ियों ने तंबाकू छुई भी नहीं है, है? और अंडे, हे राम राम राम राम घोर कलियुग। अरे देखा पंडित जी, मांसाहारी होने का आरोप लगा रहे हैं मुझ पर सरेआम, अब मैं ज्यादा और नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ पंडित जी, उठवाइए ये गंदगी यहाँ से।
4: मैं कहता हूँ पंडित जी, रोकिए इन्हें, नहीं तो आज वो हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए।
1: अरे ये धौंस किसी और को देना मास्टर, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। मैं कहता हूँ उठाओ इस कचरे को यहाँ से, उठाओ।
4: पंडित जी, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी और ठहरा तो गजब हो जाएगा, मैं जाता हूँ, मैं इस मुंशी के बच्चे पर मानहानि का मुकदमा चलाऊंगा।
1: पहले कचरा उठाओ।
4: मेरा ये अपमान कि मैं किसी के घर का कचरा उठाऊं?
1: तुम यहाँ से कचरा उठाए बगैर जा नहीं सकते। हाँ
4: अच्छा, रोक लो मुझे।
1: हाँ रोकूंगा, 1 बार नहीं 10 बार रोकूंगा। तुम उठाओ ये कचरा, मैं कहता हूँ मास्टर कचरा उठाओ।
4: मैं कह रहा हूँ मुंशी छोड़ दो मेरा।
1: मैं कहता हूँ कचरा उठाओ।
4: अच्छा तू यूं नहीं मानेगा?
3: अरे अरे
4: नहीं छोड़ता।
3: अरे अरे नहीं देती, छोड़िए छोड़िए। अरे अरे ये क्या मुंशी जी, मास्टर जी, पिताजी ये क्या हो रहा है? किशोरी ने रोको बेटा, क्या हुआ पिताजी? मुंशी जी, मास्टर जी कुछ बताइए तो। बात कुछ नहीं बेटा, मुंशी के घर के सामने जो कचरा पड़ा है ना, मुंशी जी कहते हैं मास्टर साहब के घर वाले फेंक गए, बस इसी बात पर ये मल्लयुद्ध हो रहा है। अरे अरे अरे, इस महायुद्ध का इतना तुच्छ कारण, लाइए मैं इस कारण को ही नष्ट कर देता हूँ, मैं फेंक देता हूँ इसे बाहर। आखिर कुछ समझदारी से काम लीजिए, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा बवाल।
1: अरे बवाल ना करूं तो क्या करूं, मेरे घर का कोई कूड़ा है ये है? अरे कचरा यहाँ पर फेंक दिया, कोई कूड़ा घर समझ रखा है इसे? मैं ऐसी शरारत कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मास्टर उठाओ कचरा।
3: शांत होइए मुंशी जी, शांत होइए, मैं फेंक आता हूँ इस कचरे को।
1: मैं फेंक आता हूँ इस कचरे को।
2: अजी सुन रहे हो? गजब हो गया। अरे मेरे सोने की अंगूठी, हाय हाय हाय, मेरे सोने की
1: अंगूठी। अरे अरे अरे अरे, क्या हुआ, क्या हो गया अंगूठी को?
2: न जाने कहाँ गुम हो गई मेरी अंगूठी, अभी अभी तो मेरे हाथ में थी, न जाने कहाँ किसे सके।
1: अरे भाई ढूंढो।
2: अभी क्या करूं?
1: कैसे गुम हो गई?
2: सारा घर तो जान मारा।
1: ढूंढो, अच्छे से ढूंढो।
2: सारा घर तो जान मारा। कहीं पता नहीं, देखो कहीं कचरे में तो नहीं।
1: कचरे में अंगूठी?
3: रही आपकी अंगूठी, यह पड़ी है कचरे में।
2: अरे हाँ हाँ, यही है। हे भगवान, लाओ किशोर भैया मेरी अंगूठी। भगवान बड़ा दयालु है, पूरे 32 नए पैसे का प्रसाद कबूला था मैंने। लाओ लाओ लाओ लाओ लाओ लाओ किशोर भैया मेरी
3: अंगूठी। आपकी नहीं
2: है? क्या कहा, मेरी नहीं? वाह, मेरी ही तो है।
3: वाह, आपकी कैसे होगी? आपकी अंगूठी और मास्टर साहब के कचरे में? ये कचरा तो मास्टर साहब का है, अंगूठी भी उन्हीं की होगी।
1: अरे मास्टर साहब की कैसे होगी है? अरे किशोर भैया, ये अंगूठी तो हमारी है।
3: वाह मुंशी जी, खूब। कचरा आपका नहीं और अंगूठी आपकी है। वाह वाह वाह,
4: देख लीजिए पंडित जी, आप ही देख लीजिए अपनी आंखों से।
1: अरे कचरे को मारिए गोली, अंगूठी हमारी है, हमें दे दीजिए पंडित जी।
2: सचमुच भगवान बड़ा दयालु है।
3: अंगूठी उसी की है जिसका ये कचरा है, और वो उसी को मिलेगी जो कचरे की मालकी मंजूर करेगा। बोलिए है कि नहीं ये कचरा आपका?
1: ये कचरा? हाँ भैया हाँ। अरे कौन इनकार करता है कि कचरा हमारा नहीं है? मान लिया साहब कि ये कचरा उतना उतना नहीं, सारा का सारा कचरा हमारा है बस।
4: देख लिया किशोर तुमने? देख लिया पंडित जी, अब ये अंगूठी मैं लूंगा, इन्हें ये कदापि नहीं मिल सकती।
1: अरे छोड़िए भी मजाक मास्टर साहब। पंडित जी, अरे छोटे मोटे रगड़े झगड़े जो है ना, वो तो अड़ोस पड़ोस में चलते ही रहते हैं। अरे लाइए अंगूठी, अंगूठी दीजिए पंडित जी।
3: आपका कैसे हो सकता है मुंशी जी, आप तो बीड़ी नहीं पीते, अंडे नहीं खाते।
4: बिल्कुल ठीक।
1: अरे सब करता हूँ पंडित जी, सब करता हूँ, सब करता हूँ। क्या झूठ बोलूँ अब आपसे, मानव की योनि ली है ना, तो ये सारे जितने पाप हैं, ये सारे पाप करने ही पड़ते हैं। देह धरे को दंड है पंडित जी, सब काहू को होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान ते, और किशोर भैया मूर्ख भुगते रोए। लाओ मास्टर साहब मेरी अंगूठी दे दो, आखिर मनुष्य हूँ ना, मनुष्य हूँ, आखिर पाप तो करता ही रहता हूँ।
4: मनुष्य नहीं पशु हो?
1: पशु ठीक, पशु हूँ।
4: तुम गिनोने जंतु?
1: वो भी ठीक, मेरी अंगूठी। अरे कुछ भी कह लो भैया, किशोर भैया, पंडित जी, मास्टर जी, जो मर्जी है वो कह लो, पशु कह लो, जीव जंतु कह लो, और जो मर्जी है वो कह लो, लेकिन अब ज्यादा न सताओ मेरी अंगूठी।
3: ठीक है, मेरी पर अंगूठी आपको तभी मिलेगी जब आप मास्टर साहब से माफी मांगकर अपने हाथों से ये कचरा उठाकर फेंक देंगे, और फिर कभी ऐसी हरकत न करने की प्रतिज्ञा करेंगे।
4: जी ये क्या प्रतिज्ञा करेंगे, झूठे।
1: माफ करिएगा मास्टर साहब, मास्टर साहब पहली बार गलती हुई है मेरे से। आप तो बहुत भले आदमी हैं, मोहल्ले में आपके जैसा आदमी मैंने तो नहीं देखा। माफ कर दीजिए ना मास्टर साहब, माफ कर दीजिए। अरे भाई डब्बू की अम्मी, ओ मम्मी की डब्बू, अरे ये कचरा उठाओ यहाँ से, फेंको, संभालो इसे, उठाओ कचरा।
2: हाँ तो क्या हुआ, अभी फेंक देते हैं।
1: हाँ, फेंक देते हैं।
0: कचरे का मालिक, विनायक शंकर विनय की लिखी हास्य नाटिका आपने सुनी। निर्देशिका रंजीत अहलुवालिया। हमारे आकाशवाणी इंदौर की यह प्रस्तुति थी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

लाइफ इन अ मेट्रो, ये था फिल्म का नाम। केके और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे, प्रीतम का संगीत। आप सुन रहे हैं चित्रलोक विविध भारती से।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, एजेंट विनोद फिल्म का नाम था। अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा, प्रीतम का संगीत। चित्रलोक में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली। प्रायोजक हैं देवदर्शन।

0: एक नई खुशी। JDL आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

फिल्म टू सेट से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत, और टू स्टेट से ये गीत अभी आप सुन रहे थे।

ये जवानी है दीवानी, ये था फिल्म का नाम और इस गीत को गाया था श्रीराम और शिल्पा राव ने, प्रीतम का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
3: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
4: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोत्स्यूक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

0: फिल्म जूली से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद भक्त ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत था।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है,
2: जरा मैं भी सुनो।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे नहीं।

वक्त, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे। रवि का संगीत था और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए विविध भारती से।

रेशमा और शेरा इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। जयदेव का संगीत था और बाल कवि बैरागी ने इस गीत को लिखा।

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में गाइड फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और एसडी बर्मन का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए।

ये है विविध भारती। ये है विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा। इस अंतराल के बाद होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहते हैं और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आ, आ, आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ, आ, आ होता है। और एक दिन मैं ये आ, आ, आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ कहा, मेम साहब आप कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार एक ऐसे फिल्म जगत के हर फन मौला कलाकार को लिए हुए है जिसने हीरो से लेकर खलनायक तक, चरित्र अभिनेता से लेकर हास्य भूमिकाओं तक, जवां से लेकर प्रौढ़ावस्था के अभिनय का सफर बड़ी ही जीवंतता से तय किया, जिनकी प्रतिभा का लोहा फिल्म जगत से जुड़े लोगों से लेकर दर्शकों तक सभी मानते रहे हैं, मानते हैं।
1: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
2: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

संजीव कुमार एक सफल अभिनेता के रूप में चिन्हे जाते हैं। कई प्रतिष्ठित अभिनय के पुरस्कारों के साथ संजीव कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म थी कोशिश और दस्तक।

संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई को सूरत में हुआ। इनका मूल नाम हरिहर जरीवाला था। अपने फिल्मी नाम संजीव कुमार से इन्हें शोहरत मिली। थिएटर में अभिनय के साथ साथ फिल्मालय एक्टिंग स्कूल से अभिनय की पढ़ाई के पश्चात संजीव कुमार को फिल्मालय की 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी में पहला छोटा सा रोल मिला। इसके बाद 1964 में जॉय मुखर्जी और सायरा बानो स्टारर आओ प्यार करें में संजीव कुमार ने एक छोटा सा और किरदार निभाया। संजीव कुमार की पहली नायक के रूप में फिल्म थी 1965 की निशान।

0: देखा जाए तो पर्दे के माध्यम से संजीव कुमार को 1968 की फिल्म मिली संघर्ष, जो H.S. रावल की फिल्म थी, और ये महाश्वेता देवी की कहानी का फिल्मी रूपांतरण था। संघर्ष फिल्म में संजीव कुमार ने दिलीप कुमार के साथ पर्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
1: तुम कुंदन हो ना?
2: हाँ, तुम कौन हो? यहाँ अंदर कैसे आ गए?
1: द्वार खुल गए स्वागत के लिए। नौबतलाल का बेटा हूँ।
3: द्वार का?
2: अरे भाई, तुम कब आए? कब आए?
1: कुछ देर पहले।
2: काफी आग गए, हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। और भाई, जहाँ ठहराए गए वहाँ कोई
1: पूरा आराम है, सिर्फ एक मुश्किल है, शराब हम अकेले कैसे
2: ये कैसे हो सकता है? हम साथ देंगे, मैं अभी बैठक का इंतजाम करा देता हूँ।
1: इंतजाम हो चुका है।
2: वो नहीं होगा, पहली बार यहाँ आयो, पहली बैठक हमारे ही घर होनी चाहिए। क्यों?
1: दुश्मन के साथ जाते हुए डर लगता?
2: नहीं, दुश्मन का डर नहीं, मुझे मेहमान का ख्याल था। आओ मेरे साथ।
1: घोड़े का ढाई बचो।
3: बड़े शातिर हो भाई, अच्छी चालें चलते हो।
1: वो चाल चलने वाला हूँ कि बचना मुश्किल होगा। बस देखते जाओ मेरे प्यारे किस तरह घेरते हैं तुम्हें।
0: 1968 में ही ऋषिकेश मुखर्जी की आशीर्वाद में इन्होंने एक अहम किरदार निभाया था। संजीव कुमार को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिलवाया था इसी फिल्म ने। इसी साल आशा पारेख और धर्मेंद्र स्टारर शिकार फिल्म आपने की। इस फिल्म में संजीव कुमार ने एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। अब संजीव कुमार को फिल्मों में लीड रोल मिलने शुरू हो चुके थे। बात 1970 की फिल्म खिलौना की है। यही वो फिल्म है जिसने संजीव कुमार को एक स्टार बनाया। इस फिल्म में एक दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति का

0: किरदार बड़े ही विश्वसनीय ढंग से संजीव कुमार ने निभाया था।
1: आदि पे दूं।

0: अनावर्दे अनावर्दे ओहो मिर्जा साहब अनावर्दे अभी आगे मैं तो भूल ही गया था आप तो मुशायरा है हजरात पीछे बैठो नहीं बुरा चले आते हैं हजरात आज के इस मुशायरे में हमने बड़ी मुश्किल से मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब को यहाँ बुलाया है
1: जी हाँ जल्द से
0: अब मैं मीर साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें आइए मीर साहब
1: आइए आइए
0: आइए आइए मीर साहब आइए आइए

खुदा तूने बिल्कुल सच कहा है, ये दुनिया मोहब्बत की है, चाहे मंदिर में गुजारूं चाहे मस्जिद में।

सन 1970 वो साल है जब दस्तक फिल्म के जरिए इन्होंने अपनी प्रतिभा का जानदार प्रदर्शन किया था। पति पत्नी के रिश्तों पर बनी इस फिल्म में इनके साथ थी रेहाना सुल्तान। ये वही किरदार थे जिसके लिए दोनों ही अभिनेता और अभिनेत्री को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ।

1971 की अनुभव, 1972 की सीता और गीता और 1973 की मनचली, इन फिल्मों ने संजीव कुमार के अभिनय के सफर को सुहाना किया।

सन 1972 की परिचय और इसी वर्ष की फिल्म कोशिश ने इन्हें दूसरा फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और अभिनेता के रूप में एक सम्मान दिलवाया। इन फिल्मों के निर्देशक थे गुलजार। अभिव्यक्ति और अभिनय का सर्वोच्च शिखर छू लेता है संजीव कुमार का ये अभिनय।

कहना ना होगा कि गुलजार और संजीव कुमार के साथ ने हिंदी फिल्म दर्शकों को बेहतरीन फिल्मों के तोहफे दिए हैं। 1975 की आंधी, 1975 की ही मौसम और 1981 की अंगूर और 1982 की नमकीन ऐसी ही उम्दा फिल्में हैं।

0: संजीव कुमार के बोलने का अंदाज और किरदार को पूरी तरह से समझकर पर्दे पर उसे जिंदा करने की कला के सभी सिने प्रेमी कायल रहे हैं। संजीव कुमार ने पर्दे पर अपनी स्वयं की छवि से ज्यादा किरदार की छवि, उम्र और अनुभव का ख्याल रखा। तभी संजीव ने कई फिल्मों में अपनी उम्र से अधिक यानी बुजुर्ग भूमिकाओं को भी सहर्ष स्वीकार किया और उनके परफॉर्मेंस के बाद जिसने भी उन्हें पर्दे पर देखा, सराहा और पसंद किया। ऐसी ही फिल्में हैं जिसमें फिल्मों के हीरो की छवि को तोड़ते हुए कैरेक्टर की उम्र को पर्दे पर बड़ी ही सहजता और सफलता से आपने पर्दे पर उतारा है, जैसे फिल्म आंधी, मौसम, शोले, त्रिशूल। और अब शोले फिल्म को ही ले लेते हैं। इस फिल्म में संजीव कुमार जया भादुड़ी के ससुर बने, जबकि कोशिश और अनामिका में जया जी इनकी नायिका थी।
1: मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने।

सहज सरल और हास्य प्रधान फिल्मों में भी संजीव कुमार खूब जंचे, जैसे मंचली, मनोरंजन, पति पत्नी और वो, अंगूर, लाखों की बात, और हाँ 1974 की फिल्म नया दिन नई रात में तो इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती और दक्षता से अनेक किरदारों को एक ही फिल्म में अदा कर दिया, जो इनकी अभिनय क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा का जीता जागता उदाहरण है।

1977 में संजीव कुमार को महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने पहली बार बंगाल के बाहर बनने वाली अपनी फिल्म में, जो कि फिल्म थी शतरंज के खिलाड़ी, इस फिल्म में मुख्य भूमिका प्रदान की, जो संजीव कुमार की अभिनय क्षेत्र में प्रतिष्ठा और कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है। शोले फिल्म के ठाकुर के रोल के लिए संजीव कुमार पहली पसंद नहीं थे, क्या ये आपको पता है? बल्कि पसंद पहली थे धर्मेंद्र, क्योंकि धर्मेंद्र स्वयं वो भूमिका करना चाहते थे, पर निर्देशक रमेश सिप्पी के कहने पर धर्मेंद्र ने वीरू का प्रसिद्ध रोल किया और संजीव कुमार ने अविस्मरणीय ठाकुर बलदेव सिंह की भूमिका अदा की। सन 1976 की फिल्म आंधी और 1977 की अर्जुन पंडित के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला था। अपने एक इंटरव्यू में संजीव कुमार ने अपने सबसे पसंदीदा प्रदर्शन के बारे में बताते हुए कहा था कि कोशिश फिल्म में मेरे पास बोलने के संवाद नहीं थे, ना ही कोई कैमरे की पोजीशन ऐसी थी जिससे मेरे प्रदर्शन में कोई विशेष मदद मिलती। वो एक संपूर्ण रूप से एक कलाकार का दृश्य था। सामान्य रूप से इस तरह के दृश्य करने में बड़ी कठिनाई होती है जब निर्देशक पूरी तरह कलाकार पर निर्भर हो। अगर ये असफल होता तो किसी और की असफलता नहीं बल्कि मेरी ही असफलता गिनी जाती, पर मैं गुलजार साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये दृश्य दिया जिसने मेरे अंदर आत्मविश्वास को जागृत किया। गौरतलब है कि संजीव कुमार खाने के बहुत शौकीन थे। अक्सर या तो वो अपने घर पर ही पार्टियां देते थे या फिर अन्य बॉलीवुड एक्ट्रेस के द्वारा दी गई पार्टियों में बड़े ही शौक से सम्मिलित हुआ करते थे। हरिहर जरीवाला यानी संजीव कुमार ने अपनी गुजराती मीडियम से हो रही पढ़ाई अधूरी छोड़ बॉम्बे के इंडियन नेशनल थिएटर को ज्वाइन किया था। संजीव कुमार लेखक निर्देशक पीडी शिनॉय के शिष्य रहे। ये निर्माता निर्देशक और लेखक सावन कुमार ही थे जिन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर के दिनों में हरिहर जरीवाला को संजीव कुमार का नाम दिया। जब संजीव कुमार 20 वर्ष की आयु के ही थे, इन्होंने अपनी उम्र से बड़े किरदार निभाने आरंभ कर दिए थे, जैसे आर्थर मिलर के ऑल माय सन्स की रंगमंची प्रस्तुति में एक उम्रदराज व्यक्ति का रोल आपने किया, वहीं एके हंगल के नाटक में संजीव कुमार ने 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। निर्देशक अप्सी ईरानी की फिल्म राजा और रंक ही वो फिल्म थी जिसके माध्यम से संजीव कुमार लाइमलाइट में आए थे और ये फिल्म इनके फिल्मी सफर की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है।

चहेता अभिनय सम्राट असामयिक काल का ग्रास बन गया। संजीव कुमार अपनी पहली फिल्म हम हिंदुस्तानी से लेकर उनकी मृत्यु पश्चात प्रदर्शित फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन तक हमेशा अपनी भूमिकाओं और अभिनय के लिए चर्चित रहे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार, जो केंद्रित था संजीव कुमार पर। आलेख और स्वर जी रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम, आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। अपने दिल में मुलाकात की ख्वाहिशों को दबाकर अक्सर उन्हें देखा है, किया है हमने भी उनके आने का इंतजार। ये इंतजार और उस इंतजार में कटती घड़ियां और लंबी होती जाती हैं। दिल सच ही तो कहता है, तुमको पा लेने में वो कैफियत कहाँ, जिंदगी वो है जो तेरी जुस्तजू में कट जाए।

तबस्सुम वो चांदनी रंग उनके लबों का, ऐसा लगता है कि फूल खिल के भी उनका शबाब हो न सका। रंग रात का चढ़ता रहा और उनकी सूरत दिलनशीं होती गई। वो बात, वो तबस्सुम, वो चांदनी रंग उनके लबों का, ऐसा लगता है कि फूल खिल के भी उनका शबाब हो न सका। रंग रात का चढ़ता रहा और उनकी सूरत दिलनशीं होती गई। बड़ा मुश्किल ये अफसाना हो गया, किसी ने देखा एक नजर और दिल उनका हो गया। तेरा

के पैरों में लिपटी पाजेब को देखकर रश्क होता है। ये खनक बेबस ही दिल को धड़का जाती है। माथे की बिंदिया, ये नूर जो बातों से भी छलक जाता है। क्या कहूँ, कितना बेबस दिल को किया जाता है। उठकर तेरी बज्म से जाएं तो अब कहाँ, दिल ने तड़प कर तड़पाया सरे महफिल मुझे।

शम्मा को दिन के उजाले से क्या वास्ता, रातों के अंधेरे में जो जला करती है। मोहब्बत की रवायतों को सीने में छुपाए, खामोशी से प्यार का इजहार किया करती है। कभी सोचते हैं क्यों परवाने शमा से जुदा हो न सके, चांद सितारों की रोशनी में फना हो न सके।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। क्या कहूँ, जख्म दिल के हैं मेहरबानी आपकी, दर्द दिल भी है एक निशानी आपकी, वफा दिल से ज्यादा आपसे की है, चमन के फूलों की हाँ हमने भी आरजू की है, हसरतों की बंदिशें अब जाने भी दो, दिल की सदा मोहब्बत की दीवारों से टकराने भी दो।

कभी तुमने बुलाया नहीं, कभी हम पास आए नहीं। रात मोहब्बत की धड़कनों को सुनती है, बारहा दिल में शबनम की तरह बरसती है। क्या कीजिए शिकवा दूरी का, मिलना भी गजब हो जाता है। जब सामने वो आ जाते हैं, एहसास से अदब हो जाता है।

0: आज के छह गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्न।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा समाप्त होती है। कल सवेरे 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हम आगे दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।